0: रहे आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून 2026। सुबह के 5:53 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। 6 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 6:05 पर समय रहेगा प्रोग्राम सुप्रभात का। लेकर आपके साथ रहेंगी चंद्रानी। हिंदी में समाचार होंगे। 7:05 पर समय रहेगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का। प्रोग्राम लेकर आपके साथ होंगे निखिल कुमार और 8 बजे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आपके साथ रहेंगे चंद्रानी। 9 बजे समय रहेगा प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए गाने निखिल कुमार के साथ। 10 बजे का समय रहेगा

10:05 पर समय रहेगा प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का। निहारिका के साथ आप प्रोग्राम एंजॉय करेंगे। 11:00 समय रहेगा हिंदी में समाचार का। 11:05 पर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ रहेंगी बबीता। और 12:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। 12:05 पर निहारिका के साथ आप वेस्टर्न

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ. एम. नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए।

है। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, एक नई सुबह, एक नया समय, एक नई तारीख, एक नया दिन, एक नया जोश और नई उमंग लिए हम सबके साथ है, जो हम सबको एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित कर रहा है और कह रहा है कि कल जो भी हुआ उसे भूलकर एक नया कदम बढ़ाओ। रात चाहे कितनी लंबी क्यों ना हो, सुबह का उजाला ये संदेश देता है कि हर अंधेरे का अंत तो होना ही है। तो आइए हम सब मिलकर इस नई सुबह का स्वागत करें, अपनी दोनों बाहें फैलाकर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम सुप्रभात में आपके साथ है चांद मुखर्जी।

दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने का पहला नियम है स्वयं पर विश्वास। इसलिए रुकावटों से कभी नहीं घबराना चाहिए। हर रुकावट को एक पड़ाव मानकर कुछ देर वहां ठहरिए, उसे सीख लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए दोगुने विश्वास के साथ। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं ना, तब मंजिल तक पहुँचने का रास्ता बेहद आसान हो जाता है। हर एक नया दिन एक नया अवसर है हमारे लिए।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: दोस्तों सुप्रभात। जी हाँ, यही प्रोग्राम चल रहा है आकाशवाणी रेनबो पर, चांद है आपके साथ। और दोस्तों पता है, जब हम मुस्कुराते हैं ना, तभी हमारी आधी से ज़्यादा परेशानियाँ कहीं गायब हो जाती हैं। इसीलिए जब भी आपको लगे कि जीवन में कितनी बड़ी परेशानी आ गई है, अब क्या होगा, तब आईने के सामने जाइए, कुछ सेकंड्स के लिए खुद को देखिए, और उसके बाद कम से कम 15 सेकंड के लिए खुद को देखकर मुस्कुराइए। और उस 15 सेकंड्स के भीतर या तो आपको अपनी समस्या का हल मिल जाएगा, या फिर आपको उस समस्या से लड़ने का हौसला मिल जाएगा। यकीन रखिएगा इस बात पर।

दोस्तों, जीवन कितना सुंदर है इस गाने में, कितनी खूबसूरत तरीके से बताया गया है। और अब हम आपको आपसे एक बात पूछे दोस्तों, कि ऐसा कौन होगा हम में से जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, सफल नहीं होना चाहता, लेकिन सफल कुछ ही लोग हो पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं है, मेहनत के साथ चाहिए लगन, अनुशासन और धैर्य। रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन हौसले मजबूत हो तो मंजिल ज़रूर मिलती है।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: हमारे स्टूडियो में, स्टूडियो के शीशे से धूप की जो पहली किरण आई है ना, सच में मानिएगा इतना खूबसूरत, इतना प्यारा एहसास है।

ये नई सुबह का जो हमें हर दिन याद दिलाता है कि बीता हुआ कल अब इतिहास है, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज का ये दिन हमारे हाथ में है और यही वो समय है जो हमारे आने वाले कल को और बेहतर बना देगा।

0: दोस्तों, सुबह का ये वक्त बहुत ही प्यारा है और इस प्यारे से वक्त को और खूबसूरत बना दिया है आपके साथ ने, आपके मैसेजेस ने जो आप हमें लगातार दे रहे हैं। लगातार जुड़े रहिए यूं ही हमारे साथ।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों, आपके साथ ये सफर हमने शुरू किया था आज का 6 बजे, और अभी देखिए ना, टाइम हो गया है 6:36 हो रहे हैं, और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि समय की तरह हमें भी निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुबह होते ही छोटे छोटे नाजुक से पंछी भी दाना चुगने के लिए लंबी लंबी दूरी तय करते हैं। नदी को भी एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है समंदर तक पहुँचने के लिए। रात चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, वो सूरज को से नहीं रोक सकती। जो अपने प्रत्येक डर को खत्म कर लेता है, उसे जीवन में कोई नहीं रोक सकता, याद रखिएगा।

0: जो जीवन आपका है इसको आप कैसे डिजाइन करना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: जीवन में सबसे बड़ा धर्म

है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो आपको अपनी परिस्थितियां भी बेहतर दिखाई देने लगेंगी, चाहे वो जैसी भी हो। इसलिए बी पॉजिटिव।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों, बंद आंखों से जो सपने दिखते हैं ना, वो वक्त के साथ धुंधले हो जाते हैं, लेकिन जो सपने हम खुली आंखों से देखते हैं और तन मन धन से उसे पूरा करने में जुट जाते हैं, तो विश्वास मानिएगा आपका वो खुली आंखों वाला सपना एक ना एक दिन पूरा अवश्य होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव

अब पर बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर जोरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलेंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक के साथ में शुरुआत हो चुकी है उस प्रोग्राम की जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आपके दोस्त आरजे निखिल के साथ में। और जब इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में हमने क्या रखा है आपके लिए। तो आपको बताते हैं कि आज है 8 जून, और 8 जून के दिन क्या क्या हो रखा है इतिहास में। आपको बताते हैं कि वर्ष 1658 में आज के दिन ही औरंगजेब ने आगरे के किले पर कब्जा किया था। वर्ष 1936 में आज के दिन ही इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1948 में आज का दिन था जब भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच में हवाई सेवा शुरू की थी। वर्ष 1997 में आज का वो खास दिन था जब पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में भारत के महेश भूपति ने मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीतकर एक इतिहास रचा था। आज के दिन ही आपको बता दें कि वर्ष 2004 में दुबई हवाई अड्डे पर यात्रियों को 30 दिरहम का अतिरिक्त शुल्क भार लगाया गया था। और आज के दिन ही भारत सहित विश्व के कई देशों में 122 साल बाद फिर से देखा गया था शुक्र पारगमन का अद्भुत नजारा। तो ये थे ऐसे प्रमुख घटनाएं जिन्होंने आज के दिन अपनी खास पहचान बनाई हुई है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल 102.6 प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

0: और आइए सुनते हैं हमारी ये खास प्रस्तुति आकाशवाणी के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आज यानी 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा कर रहे हैं, स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। सोलह दिसंबर 2004 को प्रसार भारती ने दूरदर्शन और आकाशवाणी की डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सेवा का शुभारंभ किया। इसे शुरुआत में डीडी डायरेक्ट प्लस नाम दिया गया, जो अब डीडी फ्री डिश बन गया है। इसका उद्देश्य देश के दूरदराज इलाकों तक उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल सिग्नल पहुंचाना था, जहां केबल और अन्य संचार सेवाएं नहीं पहुंच पा रही थीं। इसमें दूरदर्शन के सभी प्रमुख चैनलों के साथ साथ आकाशवाणी के 48 रेडियो चैनल भी शामिल हैं। फ्री टू एयर होने के कारण इस सेवा ने बिना किसी मासिक शुल्क के आम जनता को तकनीक से जोड़ा। तो श्रोताओं, इसी के साथ निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर। और आपको श्रोताओं बता दें कि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड ओशंस डे यानी कि विश्व महासागर दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। आपको बता दें कि समुद्र की बढ़ती महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी गृह नामक फोरम में प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद और वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद यह दिवस मनाया जाने लगा था। और इस दिन को मनाने का जो मुख्य कारण है वो ये भी है कि महासागरों का जो हमारे जीवन में महत्व है और उनके सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है, लोगों के बीच में जागरूकता पैदा होनी चाहिए, ये सारी बातें इससे संबंधित हैं। और श्रोताओं को बता दें कि आज ही हम मना रहे हैं विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। जी हाँ, ये दिन भी प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि हर वर्ष ब्रेन ट्यूमर के कारण काफ़ी लोगों की जान चली जाती है। तो ब्रेन ट्यूमर दिवस पर विश्व के अनेक देशों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें इस बीमारी के लक्षणों, इसके उपचार के बारे में आवश्यक जानकारी और कैसे इससे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में बातचीत की जाती है। हमारे देश में भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इसलिए इस दिन की महत्ता अपने आप में बढ़ जाती है। और जिन लोगों को भी ट्यूमर की या ब्रेन ट्यूमर की समस्या होती है, उन्हें जल्द से जल्द अपने नज़दीकी किसी भी स्वास्थ्य अधिकारी या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि उन्हें इस बीमारी से, इस परेशानी से जल्द मुक्ति दिलाई जा सके। फिलहाल एक और गीत आपके लिए, एंजॉय कीजिए इसे FM रेनबो पर हमारे साथ।

बहुत ही प्यार से ये ट्रैक आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर। श्रोताओं, समय है कुछ जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है मदुरई मणि अय्यर की, जो कि भारत में कर्नाटक संगीत के महान गायकों में से एक माने जाते हैं। वे अपनी मधुर आवाज, स्वरालाप की अद्भुत शैली और रागों की गहन प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने कर्नाटक संगीत को लोकप्रिय बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली गायकी से श्रोताओं को हमेशा मंत्रमुग्ध किया था। विशेष रूप से उनकी कल्पना, स्वर प्रस्तुति और लय पर असाधारण पकड़ की बहुत अधिक सराहना की जाती। उन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया था। और श्रोताओं को बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं टिम बर्नर्स-ली को, जो कि एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक है। यदि आपने इस नाम को पहली बार सुना है तो आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम सभी WWW के नाम से जानते हैं, उसके ये आविष्कारक हैं। उन्होंने 1989 में सर्न में कार्य करते हुए वेब की अवधारणा प्रस्तुत की थी और इसके बाद फिर HTML, HTTP और URL जैसी मूलभूत तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये उन्हीं के प्रयासों का एक हमारे पास नतीजा

सामने है कि उनकी इस खोज ने इंटरनेट पर जानकारी साझा करने और आसानी से हमारी उंगलियों पर उपलब्ध कराने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया था। और इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की स्थापना की थी, जो कि वेब मानकों के विकास और रखरखाव का काम करती है। और उन्हीं के योगदान के कारण आज अरबों लोग वेब के माध्यम से सूचना, शिक्षा, व्यापार और संचार का लाभ उठा रहे हैं। ये ट्रैक आपके लिए है।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: और श्रोता, आपको बता दें कि आज जन्मदिन है डिंपल कपाड़िया का, जो कि भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती है।

थी। उन्होंने मात्र 16 साल की आयु में बॉबी फिल्म से फिल्मी दुनिया में अपना पदार्पण किया और उनके साथ इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब थे और ये फिल्म बड़ी सफल रही थी। आपको बता दें कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। इसके बाद उन्होंने सागर, रुदाली, क्रांतिवीर और दिल चाहता जैसी तमाम कई चर्चित फिल्मों में अभिनय किया था और उन्हें अपने लंबे, गंभीर, भावनात्मक और आधुनिक भूमिकाओं के माध्यम से सजे हुए सिनेमा के लिए भी प्रमुख रूप से जाना जाता है। और श्रोताओं आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी को, जिनका आज जन्मदिन है। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बाजीगर से की थी और इसके बाद उन्होंने मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, धड़कन और फिर मिलेंगे जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया था। 2007 में एक ब्रिटिश रियलिटी शो जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी चर्चा हुई थी और अभिनय के अलावा शिल्पा शेट्टी को हम सभी योग और फिटनेस के लिए भी प्रमुख रूप से जानते हैं। उनकी स्वास्थ्य और जीवन शैली से प्रेरित जो कार्यक्रम होते हैं वो बहुत सारे लोगों को प्रेरित करते हैं। फिलहाल ये ट्रैक आपके लिए, इसके बाद शिवेंद्र आपके साथ में होंगे लेकिन तमाम खेल जगत की खबरों को, तो आप बने रहें रेनबो पर, हम फिर आपके साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टेम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
3: स्पोर्ट्स पल्स
4: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों, शिवेंद्र का प्यार भरा नमस्ते स्वीकार कीजिए। स्पोर्ट्स पल्स का एक और संस्करण लेकर हाजिर हैं हम। खेल दुनिया की हर धड़कन को करीब से, शिद्दत से, बहुत जानो दिल से महसूस करने की हमारी कोशिश का नाम है स्पोर्ट्स पल्स। समय बहुत कम रहता है साथियों, और कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो खेल खबरें जिनके बारे में आपकी जानने और सुनने की इच्छा है उनसे आपको अवगत कराया जाए छोटे से अंतराल में, छोटे से समय में, छोटे से स्लॉट में। और सोमवार का दिन सप्ताह का पहला दिन होता है, लेकिन साथियों साथ ही बहुत सारे सुपर संडेज का भी दिन होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो सप्ताह होते हैं वो खेलों के लिहाज से बड़े अमेजिंग होते हैं, जो बीत गए वो भी, जो आने वाले हैं वो भी। तो पिछला सप्ताह जो बीता है यानी कल का संडे, वो भी कमाल का दिन था, जब हमको फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप में एक नया विजेता में उभर के सामने आया और हमें एक नया चैंपियन मिला पुरुष वर्ग में भी, और उससे पहले शनिवार को महिला वर्ग में भी। तो फ्रेंच ओपन एक ऐसा टूर्नामेंट है साथियों जो साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है मेलबर्न में, मेलबर्न पार्क पर, और उसके बाद बारी आती है रोला गैरू की, लाल बजरी की, पेरिस की, जहां पर फ्रेंच ओपन का आयोजन होता है। सबसे कठिन, सबसे दुरूह, सबसे डिफिकल्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स में इसको गिना जाता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसके बाद बारी आती है ग्रास कोर्ट की, विंबलडन की ओर हम चलते हैं, और उसके बाद आखिर में चलते हैं न्यूयॉर्क यानी फ्लशिंग मीडोज पर, जहां पर यूएस ओपन का आयोजन होता है। तो फ्रेंच ओपन हमेशा से जो बहुत सारे अपसेट्स हैं उनके लिए जाना जाता रहा है, इस बार भी तमाम अपसेट हुए, उनके बारे में जरूर हम बात करेंगे। कौन नया चैंपियन बना उनसे आपकी बातचीत भी करवाएंगे, उनसे उनकी रिएक्शन सुनवाएंगे। भारतीय टीम इस समय अफगानिस्तान टीम की मेजबानी कर रही है, और एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है, वहां पर भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। इसके अलावा कुछ और जो अच्छी खबरें आई हैं, और ये जो टेस्ट मैच है हम आपको जिसके बारे में बता रहे थे वो न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। फुटबॉल का वर्ल्ड कप, जैसे हमने कहा कि अगला सप्ताह भी कुछ अमेजिंग सा, कई बार ऐसा होता है कि पिछला सप्ताह भी बड़ा बेहतरीन था खेलों के लिहाज से, आगे आने वाला सप्ताह भी बड़ा बेहतरीन है। तो इस सप्ताह यानी आज से जो नया हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। इस बार ये टूर्नामेंट संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, और इसकी जो अपडेट है वर्ल्ड कप फुटबॉल की वो लगातार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी पर। कल से यानी 9 तारीख से जिसकी शुरुआत होगी। महिला विश्व कप क्रिकेट का भी आगाज हो रहा है, और 12 जून से इसकी शुरुआत हो रही है। 14 जून को भारत परंपरागत प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से खेलेगा। महिला T20 विश्व कप का आयोजन है, क्योंकि पुरुष T20 में तो भारत चैंपियन है ही, और भारत 50-50 ओवर के संस्करण में महिला वर्ग में भी पिछले साल खिताब जीत चुका है, आप सभी इससे अवगत हैं। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम पर वो दिन कौन भूल सकता है, कोई भी खेल प्रेमी और खासतौर पर कोई भी भारतीय खेल प्रेमी उस दिन को हमेशा याद रखेगा जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 50-50 ओवर के संस्करण के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हरा करके पहला खिताब जीता था, वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम बनी थी 50-50 ओवर के संस्करण में। और T20 संस्करण में भी अब भारतीय टीम खिताब पर दावेदारी पेश करने के लिए इंग्लैंड पहुंच चुकी है। इंग्लैंड और वेल्स में इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा, और इस प्रतियोगिता के जो भारत के पार्टिसिपेशन के मैचेस हैं उनका, और साथ ही साथ सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस का आंखों देखा हाल विवरण सीधा प्रसारण आप तक पहुंचेगा, सीधा विवरण आप तक पहुंचेगा आकाशवाणी के माध्यम से। शतरंज में पिछले सप्ताह बहुत अच्छी खबर आई, आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीता। दुनिया के जो सबसे कठिन चेस टूर्नामेंट है साथियों उसमें इसका शुमार होता है, और थोड़ा सा इसकी वानगी मैं आपके सामने जरूर पेश

0: करना चाहूंगा कि भारत के 5 बार के विश्व चैंपियन, भारत की भारतीय शतरंज के निर्विवाद नायक जिन्हें हम कहते हैं विश्वनाथन आनंद, वो भी बहुत बार नॉर्वे चेस में खेले थे लेकिन नॉर्वे चेस का खिताब नहीं जीत पाए थे। और आर प्रगनानंदा ने वो कमाल करके दिखाया है जब उन्होंने नॉर्वे चेस का खिताब जीता है। मैग्नस कार्लसन जैसे दिग्गज भी वहां पर मौजूद थे, उनको उन्होंने हराया। 4 बाजियां पहले पिछड़ रहे थे प्रगनानंदा, उसके बाद 4 बाजियां उन्होंने लगातार जीती बहुत ही हाई रेटेड प्लेयर्स के खिलाफ और इस टूर्नामेंट का खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की। मडगांव में यानी गोवा में फटोडा स्टेडियम में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हरा करके सैफ का फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता और भारत का सैफ का फुटबॉल टूर्नामेंट में ये 6ठा खिताब है। लेकिन 2019 के बाद ये पहला टाइटल है और पिछले जो 2 टाइटल थे वहां पर भारत खिताब नहीं जीत पाया था। और ये संयोग की बात है कि पिछली 2 बार सैफ का फुटबॉल टूर्नामेंट में बांग्लादेश की टीम चैंपियन बनी थी, इस बार हैट्रिक बनाने की फिराक में थी लेकिन भारत ने उसे हैट्रिक से रोक दिया और 2019 के बाद अपना पहला सैफ का फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने में कामयाबी हासिल की। जापान का एक शहर है काकामिगाहारा, वहां से भी भारत के लिए अच्छी खबरें आईं। हॉकी में वहां पर अंडर-18 एशिया कप खेला जा रहा था महिला और पुरुष वर्ग में, भारत ने मेजबान जापान को 4-1 से हरा करके अंडर-18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता। महिला वर्ग में भी भारतीय टीम खिताब की दावेदार थी लेकिन टीम को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन साथियों इस समय चल रहा है गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में, जहां पर 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होना है और जहां पर कवायद चल रही है 2036 के ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए भी, जिसके लिए भारत ने आधिकारिक तौर पर अपना दावा पेश किया है। और उसी अहमदाबाद शहर में प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है जिसका समापन आज ही होना है, यानी आज कल्मिनेटिंग डे है, आज अंतिम दिन है। कल जब स्पर्धाओं का समापन हुआ था भारत 40 स्वर्ण पदक सहित 50 पदक लेकर के मेडल टैली में पदक तालिका में पहले पायदान पर बना हुआ था। यहां पर 77 देशों के 600 से ज्यादा योग साधक भाग ले रहे हैं और 4 जून को इस योगासन चैंपियनशिप का रंगारंग भव्य उद्घाटन हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के अवसर पर क्या कहा था, आइए सुन लेते हैं।
1: आज पहली वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप शुरू हो रही है। मैं इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आए सभी देशों के एथलीट्स का भारत में स्वागत करता हूं। इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप के लिए सभी प्रतिभागियों को और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जिस तरीके से भारत सारी दुनिया में, इनफैक्ट सारी दुनिया को भारत की योगा एक योग एक अमूल्य भेंट है। हजारों वर्ष पहले इस विधा का प्रादुर्भाव विकास हुआ था और समय के साथ साथ भारत एक योग गुरु के तौर पर उभरा है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि एक स्पोर्ट्स के तौर पर, एक खेल के तौर पर योग का जो विकास हो रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय कदम है। और बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में दुनिया के 77 देशों से 600 से ज़्यादा योग साधक पहुँचे हैं अहमदाबाद में और भारतीय परचम वहाँ पर बुलंद है। भारत ने 40 स्वर्ण 8 रजत और 2 कांस्य सहित 50 पदक जीते हैं। जापान ने कल की जब स्पर्धाएं समाप्त हुई थी 2 स्वर्ण सहित 3 पदक जीतकर अपने पदकों की कुल संख्या 10 कर ली है और तालिका में जापान दूसरे पायदान पर बना हुआ था। सिंगापुर ने 2 स्वर्ण पदक जीते थे, कुल 6 पदक उनके पास थे और वो तीसरे स्थान पर थे। तो आज इस योगासन चैंपियनशिप का समापन होने वाला है। और अब चलते हैं टेनिस की ओर। ऑफकोर्स बैडमिंटन में भी इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट चल रहा था लेकिन वहां पर भारतीय प्रदर्शन उतना सराहनीय नहीं रह पाया जितनी हम उम्मीद कर रहे थे। और फ्रेंच ओपन की बात करें तो वहां पर अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं और उनको साशा के उपनाम से जाना जाता है, वो नए चैंपियन बन गए हैं। ज्वेरेव ने इटली के फ्लाविओ कोबोली को पराजित किया। फ्लाविओ कोबोली जो कि ATP रैंकिंग में 14वें पायदान पर मौजूद थे, ज्वेरेव टूर्नामेंट में 2री वरीयता प्राप्त थे और 4था मेजर फाइनल खेल रहे थे, यानी इससे पहले 3 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में वो हार चुके थे और 3-1 का हेड टू हेड का रिकॉर्ड था उनका फ्लाविओ कोबोली के खिलाफ, जिनसे वो कल फाइनल

0: खेल रहे थे इटली के खिलाड़ी, और 3-1 का जो रिकॉर्ड था उसमें कुल मिलाकर के यानी 4 मैच खेले गए थे, 3 ज्वेरेव ने जीते थे, 1 कोबोली जीते थे। लेकिन संयोग की बात है इस साल यानी 2026 में कोबोली और ज्वेरेव के बीच जो 2 मैच खेले गए थे उसमें मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था, और पिछले दिनों म्यूनिक में कोबोली ने ज्वेरेव को पराजित भी किया था। इसलिए ज्वेरेव की ये जो जीत है न केवल उनके लिए एक पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है, क्योंकि उन्होंने अपना सूखा खत्म किया है ग्रैंड स्लैम खिताब का, बल्कि जर्मनी के लिहाज से एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है। 1937 में हेनर हेंकल आखिरी जर्मन पुरुष एकल चैंपियन बने थे रोलां गैरोस में, पेरिस में लाल बजरी पर। हालांकि आखिरी जो ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता गया था जर्मनी की ओर से वो तो बोरिस बेकर ने जीता था, लेकिन ऑफकोर्स वो फ्रेंच ओपन नहीं था। 1937 में हेनर हेंकल आखिरी जर्मन पुरुष चैंपियन थे रोलां गैरोस पर। और 2024 में यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, उसके बाद ये पहली बार है जब कोई खिलाड़ी अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने में कामयाब हुआ है पुरुष वर्ग में। जी हाँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज की जो एक प्रतिद्वंदिता है उसमें लगातार ऐसा हो रहा था कि ये दो खिलाड़ी ही ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंच रहे थे या खिताब जीत रहे थे, लेकिन इस बार अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना ग्रैंड स्लैम का सूखा समाप्त किया। उन्होंने 5 सेट के कड़े संघर्ष में, मैराथन संघर्ष में फ्लावियो कोबोली को पराजित किया और जीत दर्ज की, एक यादगार जीत उसको शब्द देते हुए ये हैं जर्मनी के नए फ्रेंच ओपन चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव।
1: I was struggling physically a little bit, even though I don't think the cramps were physical. I think they were more mental. I was very, you know, emotional. I was a bit unstable also in the fourth set, but I actually think that the cramps helped me in a way. I let go. I kind of hit my shots a bit more and just let go. Then, of course, the fifth set went my way, and I'm happy about that and happy to be sitting next to this beautiful trophy for the first time.
0: जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी के बगल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव बैठे हुए स्वयं को बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहे थे। और महिला वर्ग में भी साथियों यही कहानी दोहराई गई, तमाम अपसेट्स हुए फ्रेंच ओपन में, अरेना सबलेंका बाहर हुई, मीरा एंड्रेवा फाइनल में पहुंची। और पुरुष वर्ग में भी जैसे अपसेट्स की हमने बात की थी, नोवाक जोकोविच अपना 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब तलाश रहे हैं अभी भी, क्योंकि वे इस टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे। और कार्लोस अल्कराज ने तो हमने आपको पिछले सप्ताह ही बता दिया था, उन्होंने इंजरी की वजह से इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने का फैसला किया था और विंबलडन से भी उन्होंने हटने का फैसला कर लिया है। फिलहाल रूस की मीरा एंड्रेवा, उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता और उन्होंने पोलैंड की माया च्वालिन्स्का को पराजित किया 6-3, 6-2 से। मीरा एंड्रेवा की कोच हैं कोंचिता मार्टिनेज, जो कि स्पेन से आती हैं और 26 साल पहले फ्रेंच ओपन में वो उप विजेता रही थी। तो मीरा एंड्रेवा ने अपनी कोच को भी धन्यवाद दिया, अपनी टीम को धन्यवाद दिया। जीत के दौरान जो विक्ट्री सेरेमनी थी उसमें मीरा एंड्रेवा क्या कह रही थी, आइए सुन लेते हैं।
2: First of all, congrats to Maya for these amazing 3 weeks, passing through qualis, winning so many matches, beating so many great players. Congrats to your team as well. You guys have done an amazing job, amazing work. You're a very tricky opponent. I wouldn't want to play against you one more time. I wish you the best of luck for the rest of the season. And I hope we play many, many more finals together in the future. Very special for me personally. I've been watching Roland Garros on TV since I was very, very young. So it's also a big dream of mine to win this tournament, and I honestly cannot believe that I'm holding this trophy right now. Thank you so much for making such an amazing event.
0: मीरा एंड्रेवा जो कि नई फ्रेंच ओपन चैंपियन हैं, रूस से आती हैं और उन्होंने नया इतिहास रचा है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने नया इतिहास रचा है। क्रिकेट की बात कर लेते हैं और क्रिकेट में भारतीय टीम जैसा हमने कहा अफगानिस्तान की मेजबानी कर रही है। वैसे हमने क्रिकेट की और भी आपसे बात की थी, जो आगे आने वाले इवेंट हैं उनके बारे में जब बातचीत हुई थी, तो इसी सप्ताह से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है इंग्लैंड और वेल्स में महिला वर्ग का, और उसके जो भारत के मैचेस हैं सेमीफाइनल और फाइनल उनका सीधा प्रसारण आकाशवाणी से आप तक पहुंचेगा। और टेस्ट मैच जो चल रहा है न्यू चंडीगढ़ में, वहां पर भारत ने 564 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। शुभमन गिल ने शतक बनाया था और केएल राहुल ने भी सेंचुरी मुकम्मल की थी, और अफगानिस्तान 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना चुके थे। वाशिंगटन सुंदर ने 52 रन बनाए थे, उन्होंने अपनी टीम के प्रदर्शन के बारे में क्या कहा था, ये जल्दी से सुन लेते हैं।
3: I think the wicket is a little slow and obviously has a bit of spin in terms of purchase. In the next couple of days, it'll only start to get even slower and spin a little more as well. Bowling a little up on this wicket would be a little crucial, because to drive or even to sort of drive on the rise would be very difficult. The way Manav bowled and obviously Kuldeep also, and Seamus bowled really well.
0: तो ये टेस्ट मैच अफगानिस्तान के साथ चल रहा है। भारत का अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैचेस में वैसे रिकॉर्ड हमेशा से बहुत ही बेहतरीन रहा है और उम्मीद करेंगे कि टीम यहां पर भी जीत दर्ज करे। न्यू चंडीगढ़ में आज के बर्थडे की बात करते हैं, किम क्लाइस्टर्स टेनिस के खिलाड़ी और उनके साथ साथ एक और टेनिस खिलाड़ी नाडिया पेट्रोवा आज अपना बर्थडे मना रही है। भारत के माउंटेनियर अर्जुन वाजपेयी कल अपना बर्थडे मनाएंगे। देवेंद्र झाझरिया भारत के फॉर्मर पैरा एथलीट और इस समय पैरा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अपना बर्थडे मनाएंगे 10 जून को। प्रकाश पादुकोण का बर्थडे होगा 10 जून को। 12 जून को सबा अंजुम अपना बर्थडे

0: Blues, they go 2-1 up in the series.
1: Sports Pulse.
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग दिल्ली और एनसीआर। दोस्तों, जून की एक और नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। सूरज ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। सड़कों पर रफ्तार बढ़ने लगी है, मेट्रो स्टेशन पर कदम तेज हो रहे हैं और कई घरों में चाय की प्यालियों के साथ दिन की पहली बातचीत भी शुरू हो चुकी है। आकाशवाणी रेनबो पर आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ है चांद, चांद मुखर्जी। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। दोस्तों, हम हिंदुस्तानियों की सुबह का अपना ही अंदाज है। कोई ऑफिस की तैयारियों में है, कोई अपने कारोबार की शुरुआत करने के लिए निकल चुका है और ये भी संभावना है कि कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं अलार्म की बात माने या तकिए की। लेकिन जो भी हो, आज का दिन एक नया मौका लेकर आया है, नई सोच का, नई ऊर्जा का और कुछ नया कर दिखाने का। तो हर घंटे की तरह इस घंटे भी जुड़े रहिए हमारे साथ। बातें होंगी आपकी, आपसे, आपके लिए और साथ ही होगा बेहतरीन म्यूजिक जो है आकाशवाणी की पहचान।

हर मौसम के अपने तेवर होते हैं, अपना अंदाज होता है, और जब हम खुद को मौसम के रंग में ढाल लेते हैं तो हर मौसम खूबसूरत ही लगता है, लगता है ना। गर्मी आए तो लुत्फ उठाइए गर्मी के मौसम का, जाड़ों में जाड़ों के साथ हो जाइए, और बरसात में बारिश के साथ हो लीजिए। बस अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। आज की दुनिया में तो इतनी सुविधाएं हैं कि हमें हर चीज के बारे में पहले से ही पता होता है, जिसमें हम पहले से ही अलर्ट हो सकते हैं। तो चलिए बता देते हैं आपको आज का तापमान, जो कि रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 60% रहने की संभावना है। तो आप जहां भी जाइए पानी अपने साथ रखिएगा और बहुत ज्यादा खुश रहिएगा, तो और इससे आपकी आधी मुश्किलें तो यूं ही खत्म हो जाएंगी।

0: दोस्तों, अगर आपने बिल्डर का प्लान बारिश के मौसम में बनाया है तो छतरी रखना बिल्कुल मत भूलिएगा।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, और आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और आपके साथ हैं हम, हमारे साथ हैं आप, सुनते रहिए हमें।

हर ख्वाब पूरा होता है, बस जरूरत है उसको उतनी ही शिद्दत से उस पे लग जाने की। तो अब हम आपसे बात कर लेते हैं ट्रैफिक अपडेट की। वक्त है ट्रैफिक अपडेट का। तो आज सोमवार है, अगर आप इस समय दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर हैं तो गाड़ी चलाते वक्त धैर्य हमेशा अपने साथ रखिएगा। सुबह का ये वक्त ऑफिस जाने का है, इसलिए कुछ प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव हो देखने को मिल सकता है। घर से थोड़ा समय लेकर निकलिएगा जरूर, जिससे कि आप अगर ट्रैफिक में फंस भी जाएं तो आपका दिल धक धक धक धक धक धक ना करे। और सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। अब गाड़ियों में पीछे वाली सीट पर भी सीट बेल्ट लगी होती है, उसे भी जरूर लगाए, उसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करें। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपके पीछे कोई बैठा है तो उसे भी हेलमेट जरूर पहनाएं। और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से दूर रहें, बिल्कुल दूर। और सुरक्षित सफर कीजिए और अपने साथ मुस्कुराते रहिए और दिल से दिल तक सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: दोस्तों आकाशवाणी रेनबो पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और आज हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली सरकारी आईटीआई एडमिशन 2026 के लिए 8 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी आज से। तो हम आपको बता दें इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय DTTE में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सरकारी आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार के प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सरकारी आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। ये हम आपको बता ही चुके हैं। जो छात्र 10वीं या अन्य निर्धारित योग्यता पूरी कर चुके हैं और किसी तकनीकी या व्यावसायिक ट्रेंड में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 8 जून 2026 से, यानी आज से शुरू होगी। आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक और अन्य और कई दूसरे ट्रेंड्स में ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में कौशल आधारित शिक्षा हासिल कर रोजगार के अवसर बढ़ाने के इच्छुक छात्रों के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद रेगुलर तरीके से आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर जाकर जरूरी अपडेट, तारीखें और अन्य अपडेट्स देखते रहें, जिससे आप खुद को अपडेट रख सके और आगे की जिंदगी आपकी आसान हो सके इन प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद। और अगर आप उनमें से हैं जिनको कोई जल्दी नहीं है, घर में खाना बनाना है और ये सोचना है अरे शाम को मेरे बच्चे आएंगे तो उनको क्या बना के देना है या दोपहर में क्या पैक करके दूं, वो लोग आराम से अपना रेडियो सुनिए और आकाशवाणी रेनबो पर गुड मॉर्निंग दिल्ली सुनते रहिए चांद के साथ।

और दोस्तों चीज़ें ज़िंदगी में बदलती है जब हम उसके लिए कोशिश करते हैं, और कोशिश कैसे कर सकते हैं, कोशिश ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, आयुष मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान MDNIY द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन और अन्य प्रमुख स्थलों पर भव्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। इस वर्ष यानी 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की केंद्रीय थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। इसके बड़े दिन यानी 21 जून के लिए 100 दिन 100 शहर और 100 संगठन नाम का एक विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली NCR के विभिन्न पार्क, सोसाइटी और सरकारी संस्थान शामिल है। योग संगम के माध्यम से लोगों को अपने घरों या कार्यस्थलों से ही सामूहिक अभ्यास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और आपको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो घर बैठ के भी योगा कर सकते हैं। दिल्ली से सटे क्षेत्रों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव के बड़े पार्कों और स्टेडियम्स में स्थानीय प्रशासन और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सुबह के सामूहिक योग शिविरों की तैयारियां की जा रही हैं। यदि आप किसी विशिष्ट क्षेत्र या सोसाइटी में रहते हैं तो स्थानीय स्तर पर होने वाले इन आयोजनों में निःशुल्क भाग ले सकते हैं, अदरवाइज आपका फिट रहने का सपना सपना ही रह सकता है, और सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए आपको तो निकलना ही पड़ेगा। नहीं निकल सकते तो घर में ही करिए योगा, क्योंकि योगा से ही होगा।

0: और दोस्तों अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो उठिए, खड़े हो जाइए, जाड़ा गर्मी बरसात धूप तेज बारिश भूल जाइए, सब भूल कर जुट जाइए अपने काम में।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com।
6: कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: दोस्तों वैसे तो हर दिन खूबसूरत होता है, लेकिन आज का दिन कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आज के दिन में ही चांद तारे सब निकल आए हैं, क्योंकि आज का दिन

वो दिन है जबकि 90 साल पूरे हो गए आकाशवाणी को। आकाशवाणी की गौरवशाली 90 वर्षों की अविस्मरणीय यात्रा के उपलक्ष में आयोजित विशेष सांस्कृतिक संध्या स्पेक्ट्रम आकाशवाणी एट 90 एक संगीतमय यात्रा में आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत सम्मान एवं प्रसन्नता का विषय होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी के कलाकारों द्वारा शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य तथा युवा संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां जाएंगी। और अब आपको बता देते हैं कि आज शाम को 4 बजे से आप यहां आ सकते हैं। स्थान है रंग भवन सभागार, आकाशवाणी संसद मार्ग, नई दिल्ली। आपसे अनुरोध है कि अपनी उपस्थिति में देकर इस विशेष आयोजन की शोभा बढ़ाएं। और अगर आप आते हैं दोस्तों, यकीन जानिएगा आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप क्यों असुविधा कोई नहीं होती और आप आते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा और दूसरे आप बहुत सारे आरजे से मिल सकते हैं जिन्हें आपने कभी नहीं देखा, सिर्फ सुना है।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आई होप एंड आई एम श्योर कि आज का दिन आपका बेहद बेहद बेहद बेहद खूबसूरत होने वाला है। और अब आपको बता देते हैं कि अगले प्रोग्राम्स के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। कुछ ही देर में आपके साथ होंगे निखिल कुमार लेकर के प्रोग्राम दिल की तराने, गाने नए पुराने और आपको बहुत पसंद आने वाले हैं उनकी पसंद के गाने। और अगला उसके बाद जो प्रोग्राम आएगा वेस्टर्न म्यूजिक का मैचलेस म्यूजिक आर, जिसे लेकर आपके साथ होंगी निहारिका जी। और उसके बाद आप न्यूज़ सुनेंगे 11 बजे और 11:05 से आपके साथ होंगी बबीता त्रिपाठी लेकर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। तो दोस्तों आज की इस खूबसूरत सुबह का सफर यहीं तक, उम्मीद है कि गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के साथ बिताए इन पलों में आपके जीवन की शुरुआत को थोड़ा और खुशनुमा बनाया होगा। चाय की चुस्कियों से लेकर मुस्कुराहटों तक, मौसम की बातों से लेकर आपके संदेशों तक आज की सुबह में आपका साथ पाकर सच में बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा। वक्त है कि आपसे आप पूरे दिन की ऊर्जा और अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ आप उसको आगे बढ़ाएं। जो काम आपका इंतजार कर रहे हैं उन्हें मुस्कुराकर पूरा कीजिए और जो सपने आपको बुला रहे हैं उनकी तरफ ये कदम और बढ़ाइए। याद रखिए हर दिन कोई ना कोई कहानी लेकर आता है और हो सकता है आज की कहानी आपके नाम हो, है ना। और मैं यानी हम यानी चांद आपसे इजाजत लेते हैं। और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ। फिर होगी मुलाकात किसी और दिन किसी और पल किसी और वक्त में। तो क्या आपका चांद जाए। बाय।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

और श्रोताओं आपको बता दें, मेरे जाने के बाद आप कौन कौन से प्रोग्राम सुन पाएंगे, तो फिर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 10:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आवर लेकर के आएंगे लिपिका दास और निहारिका भवानिया। उसके बाद फिर 11:05 पर बबीता त्रिपाठी के साथ आप सुन पाएंगे बॉलीवुड ट्रेल्स, और फिर वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम प्ले इट कूल लेकर के आएंगे निहारिका और लिपिका एक बार फिर, और फिर 1:05 पर आप सुनेंगे रेनबो हेल्पलाइन बबीता त्रिपाठी के साथ में, जिसमें आज का टॉपिक है डिजास्टर रिजिलेंट कम्युनिटीज यानी द पावर ऑफ प्रिपेयर्ड सिटीजंस, जिसमें एक्सपर्ट है मिस रीता मिसल जो कि मेंबर है एनडीएमए की। और आपको बता दें कि आशियाना आप सुनेंगे मालो नेगी के साथ में दिन में 2 से, और फिर रेडियो डॉक्टर आज आप सुनेंगे श्वेता शर्मा के साथ में, जो कि आज केंद्रित है स्पेशल ऑन वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए चलने की इजाजत, हम फिर मिलेंगे, बने रहे आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधे

0: नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत शुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की 12 साल की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीब कल्याण और समाज के वंचित वर्ग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रही है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंच सके जो दशकों से पीछे छूट गए थे। कोलकाता के जाधवपुर स्टेशन के पास कल रात अवैध फेरी वालों को हटाने की कार्रवाई के दौरान तनाव बढ़ गया। दरअसल वामपंथी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कार्रवाई का विरोध करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद केंद्रीय बलों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सृजन भट्टाचार्य समेत कई वामपंथी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ साथ देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने आज तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान जताया है। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: And after that very refreshing short break, you're back to the Matchless Music Hour with me, Niharika, and Lipika. You know, Lipika, so

0: आकाशवाणी हो, वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम हो, वी हैव ऑल ग्रोन अप लिसनिंग टू आकाशवाणी. सम हैव बीन फेमस एंकर्स आकाशवाणी से हुए हैं. एक से एक आपके पास धरोहर, एक से बढ़िया. आई हैव नो वर्ड्स अदर देन टू फील प्राउड अबाउट आकाशवाणी. बहुत गर्व है आकाशवाणी पे हमें. आकाशवाणी के सभी सुनने वालों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है. वेरी वेरी हैप्पी 90th बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू यू आकाशवाणी. गॉड ब्लेस यू ऑल.
1: Well, that was quite an upbeat birthday wish indeed this morning. And because the love affair between us and our listeners is going to keep continuing, so let's listen to this very popular track called Aajkal Tere Mere Pyar Ke Charche from the 1968 film Brahmachari. What say, Lipika?
2: Yes, and the singers are Mohammad Rafi and Suman Kalyanpur.

0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे फ्रॉम द फिल्म ब्रह्मचारी एंड दैट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई हैव टू शेयर विद यू लिपिका अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विल नॉट हिस्ट्री इन इट्स एग्जैक्ट टर्म्स
1: सो
0: ऑफ कोर्स सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल इंडिया रेडियो वॉज येट टू बी अ ट्रूली नेशनल नेटवर्क वी हैड ओनली सिक्स स्टेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोकेटेड इन दिल्ली मुंबई कैलकटा मद्रास लखनऊ इन तिरुचिरापल्ली एंड परहैप्स फोर अदर्स इन द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मैसूर ट्रावनकोर हैदराबाद एंड औरंगाबाद टू नाउ वी mapped a journey of 90 years and we've grown by leaps and bounds, right? Yes. Well, that is what faith, that is what the journey of a single step often looks like.
1: Now we have more than 500 stations.
0: Absolutely. And I think all because of the love that we keep receiving from our listeners. And you know what they say, right? The believers are truly blessed. So let's listen to a track of the same name by Anne Murray. Blessed are the believers up next on our playlist.

0: A very quick commercial break before we bring you the last track of this morning session.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने

0: आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
1: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशन का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर हर घंटे एक नई वाणी आपको सुनने को मिलती है और उस वाणी के द्वारा आपको बहुत सारी अपडेट सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलती हैं और बहुत सारी जानकारियों के साथ साथ ढेर सारा मनोरंजन करवाती है वो वाणी। और इस तरह से आकाशवाणी आप सबके दिलों में बसती है और ये दिलों में बसने वाली आकाशवाणी 90 साल से आपके दिलों में जो घर बनाकर बैठी है ना, आज उसका बर्थडे है और इस बर्थडे पर ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको और हम सबको, क्योंकि हम सब के लिए एक तरह से आकाशवाणी हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुकी है। तो आज इस सेलिब्रेशन को दोगुना करते हुए सुनते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ, यानी बीटी विद बीटी ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो। और यस, आपको बता दूं बॉलीवुड की ढेर सारी अपडेट्स, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और साथ में आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जिसका जवाब आप देंगे तो बन जाएंगे बॉलीवुड सरताज।

तो जी आकाशवाणी के प्रति जो हमारा प्यार है ना, वो तो आप सबको पता है। आकाशवाणी का एक एक प्रोग्राम आपके लिए होता है, आपके दिल तक पहुंचता है, और ये आज से नहीं पूरे 90 सालों से होता आ रहा है। और आज जब मौका है सेलिब्रेशन का, आज जब मौका है उत्सव का, और आज जब मौका है कि हम थैंक यू कहें आकाशवाणी को, क्योंकि उसने

हर वक्त हमारा साथ निभाया है। जिस तरह से आपका कई बार मूड ऑफ रहता है तब एक प्यारा सा गाना बज जाता है मोटिवेशन वाला और आपका मूड एकदम ठीक हो जाता है। और या फिर कोई ऐसी बात आरजे कह जाता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और इस तरह से आज से नहीं आज आरजे हुआ करते हैं, लेकिन पहले जब सिर्फ विविध भारती हुआ करता था या कुछ चुनिंदा प्रोग्राम्स ही आपको सुनने को मिलते थे तो उसमें भी आप बहुत ध्यान से सुनते थे। ख़ास तौर पे समाचार सुनने के लिए तो पूरा का पूरा गांव इकट्ठा होता था एक जगह पर एक टाइम पर और मिलकर समाचार सुनता था, और वो जो आकाशवाणी के साथ रिश्ता था ना वो मजबूत रिश्ता आज भी कायम है और हम हमेशा चाहेंगे कि ये हमेशा कायम रहे। मतलब आप खुद देखिए कि जो सफ़र इतने टाइम पहले शुरू हुआ और आज तक अलग अलग रेडियो स्टेशंस के मामले के साथ आप के दिलों से जुड़ा हुआ है। और अगर विविध भारती की बात करें तो पहले इसका कितना खास रोल हुआ करता था, इसके कुछ चुनिंदा प्रोग्राम्स हुआ करते थे और वो इतने हिट थे, इतने ज़बरदस्त हमारे दिलों के करीब थे कि हम उनको सुनने के लिए ना एकदम टाइम को बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखते थे, कोई अलार्म सेट करने की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। जयमाला है, छाया गीत है, भूले बिसरे गीत हैं, ये सभी ना आज तक हमको याद हैं, ना सिर्फ नाम से बल्कि बहुत सारे ऐसे ऐसी बातें शायद हुई होंगी या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस टाइम पर दी गई होंगी जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं। और ये जो प्यार है हम चाहेंगे कि हमेशा बरकरार रहे आकाशवाणी के लिए। आप सबका प्यार और हम सबका प्यार और आकाशवाणी का साथ हमेशा हमारे साथ रहे। तो आज इस मौके पर जब उसका बर्थडे है, 90 साल आकाशवाणी ने कंप्लीट किए हैं, तो हम यही कहेंगे कि हमारा साथ हमेशा यूं ही बना रहे। हजार

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

और आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स बबिता त्रिपाठी के साथ, बोले तो बीटी विद बीटी। और फिलहाल बॉलीवुड की ढेर सारी अपडेट्स लेकर मैं बिल्कुल तैयार हूँ आप सब के लिए। क्या कुछ नहीं लेकर आई हूँ, आप सुनेंगे तो आप जान जाएंगे और साथ में ये भी मान जाएंगे बॉलीवुड सरताज बनना भी कोई आसान काम नहीं है। आपको बस छोटा सा सवाल का जवाब देना है, लेकिन कॉम्पिटिशन तगड़ा है, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, उसमें से कोई एक लकी जो होगा आज बनेगा बॉलीवुड सरताज हमेशा की तरह हर दिन। तो आप अपना लक ट्राई करना चाहते हैं तो बस ज्यादा इंतजार नहीं करना है, 11:30 बजे के आसपास उन्हीं बातों को जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ उन्हीं में से एक छोटा सा सवाल पूछूंगी और उसका जवाब अगर आपने दे दिया तो आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। आपको मुझसे बात करने का मौका मिलेगा, अगर नहीं बने तो आपका सौदा तो एकदम घाटे का बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आपका नाम जरूर शामिल होगा अगर आपने सही जवाब या गलत जवाब दिया तो भी। तो बातों को ध्यान से सुनिए। और अभी आपको बता दूं कि 27 साल पुरानी एक फिल्म आई थी, कौन सी? ताल। और बहुत सारी फिल्में आई थी लेकिन ताल की बात कर रही हूँ। सुभाष घई ने एक इंडिकेशन दिया है और जब वो कुछ इंडिकेट करते हैं तो हम समझ जाते हैं। मैं गाना गाती हूँ, निम समझ गई निम समझ गई, ताल फिल्म का ये गाना है ना, तो बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने कुछ इंडिकेट किया और मैं बिल्कुल समझ गई कि ताल फिल्म का सीक्वल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और मैंने तो उनसे कह दिया तुसी सोच रहे हो तो बिल्कुल सोचो, बहुत बढ़िया मूवी है। लेकिन उन्होंने ये राय मांगी है सभी दर्शकों से कि भाई ये जो पुरानी कास्ट थी उसी को रखा जाए या कुछ नया किया जाए, नए लोगों को लेकर आया जाए। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, वैसे पुरानी कास्ट भी बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन नए लोग भी अगर लाएंगे और कुछ अच्छा लेकर आएंगे तो हम ताल फिल्म देखने ज़रूर जाएंगे, आपकी तरफ से मैं बोल देती हूँ। वैसे किसको लेकर आएंगे ये अभी हम नहीं समझ पाए हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर समझ गए हैं कि ताल 2 आने की तैयारी हो चुकी है।

इतने में ये तो समझ गई कि ताल 2 बनने वाली है और आपको बता भी दिया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो एक बायोपिक बनने वाली है ना कर्नाटक की फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस गायिका MS सुब्बलक्ष्मी पर, उसमें जो मेन किरदार होगा वो निभाएगा कौन? बड़ी चर्चा है, गर्मा गर्म चर्चा है, इतनी गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मा गर्म चर्चा अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि निर्देशक गौतम तिन्ननूरी एक बायोपिक फिल्म बनाने जा रहे हैं और वो बायोपिक मशहूर गायिका MS सुब्बलक्ष्मी के जीवन पर आधारित है। और ये अच्छी बात है कि उनके जीवन के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, उनकी बातें हम सब जानना चाहेंगे, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त गायिका हैं, इतनी फेमस गायिका हैं और इन्होंने हमारा इतना नाम रोशन किया है देश विदेश में, तो क्यों ना हम इनके बारे में जानें और इनसे मोटिवेशन लें। लेकिन लें किस हीरोइन को, ये प्रॉब्लम है। रश्मिका मंदाना पर चर्चा इस समय गर्म है कि शायद MS सुब्बलक्ष्मी का जो किरदार है वो रश्मिका मंदाना निभा सकती हैं। कर्नाटक संगीत सीखने की बात भी एक बार खबर आई थी, लेकिन वो कोई और हीरोइन थी। अब ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि साई पल्लवी, रश्मिका या रुक्मिणी वसंत को इस रोल के लिए साइन किया जाएगा, इनमें से किसको साइन किया जाएगा। और जो साई पल्लवी की बात कर रही थी ना मैं, कर्नाटक संगीत उन्होंने सीखना शुरू कर दिया था और अब ये नाम अभी सुनाई नहीं दे रहा है। अभी लग रहा है कि रश्मिका मंदाना इस मूवी में हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रही है। कंफर्मेशन जब तक आती है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि ये मूवी बायोपिक ज़रूर बन रही है और जब तक कंफर्मेशन आए तब तक हम कॉकटेल 2 का इंतज़ार कर लेते हैं। क्यों, रश्मिका उसमें नज़र आने वाली है। 19 जून को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है और

मूवी रिलीज होगी तब हम देखेंगे, लेकिन गाना कॉकटेल का सुन सकते हैं, टू वाला नहीं पहला वाला। आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स के बबीता त्रिपाठी के साथ आकाशवाणी रेनबो

तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि लगभग 11:30 बजे आपके लिए हमेशा की तरह एक सवाल होगा जिसका जवाब आपको देना है, और क्या पता बन जाएं आप बॉलीवुड सरताज और हम आपसे डायल करके फोन बात करें और ऑन एयर आप सबको अपनी आवाज़ सुनाएं, अपनी बात सुनाएं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा, और वो थोड़ा ही होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी उसका जवाब देना है। और बड़ा आसान सा सवाल है जो मैं ऑलरेडी उसका जवाब बता चुकी हूँ। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने बताया कि कर्नाटक संगीत की एक महान गायिका के ऊपर बायोपिक बनने जा रही है, और इस महान गायिका का नाम आपको बताना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम पहले लिखना है और भेज देना है व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए। ये आंसर और नंबर बहुत ज़रूरी है, 9868107070, वही पुराना नंबर 9868107070 पर आपको बताना है कि किस कर्नाटक संगीत की महान गायिका के ऊपर एक बायोपिक बनने की बात हो रही है, और उसके बारे में ऑलरेडी इस शो में मैं आपको बता चुकी हूँ। बस उस गायिका का नाम लिखने से पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि आपका मैसेज शामिल हो जाए, इस बात की गारंटी हो। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर आती हूँ, सुनते रहिए बीटी विद बीटी यानी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com।

और जानते हैं आज का दिन बड़ा खास है बॉलीवुड के लिए। पता है क्यों? क्योंकि आज ना बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही टैलेंटेड दो अभिनेत्रियों का जन्मदिन जो है। और ये बड़ी ही खूबसूरत अभिनेत्रियां हैं कौन? टैलेंटेड तो ऑफ कोर्स हैं, बॉलीवुड में टैलेंट नहीं हो तो भाई टिक नहीं पाता कोई। ये इंसान, कोई भी इंसान कितना भी खूबसूरत हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर टिकना है तो आपके अंदर टैलेंट होगा। और इतनी दमदार मूवीज़ के ज़रिए जब कोई अभिनेत्री टिकती है तो समझ लो कि टैलेंट की कोई सीमा नहीं है। और उन्हीं में से हैं ट्विंकल खन्ना। यस, ट्विंकल खन्ना बेहद खूबसूरत लगी थी जब शुरुआत इनकी हुई थी। ऐसा नाम हुआ था कि वो खूबसूरती की मिसाल है। और ज़बरदस्त उन बोल्ड कैरेक्टर से शुरुआत उन्होंने की थी बॉबी फिल्म से, और उसके बाद उन्होंने जो कैरेक्टर्स निभाए और इस एज तक निभा रही हैं, वो सभी कैरेक्टर्स दमखम रखते हैं। ख़ासतौर से मुझे उनकी एक मूवी रुदाली जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगती है। उसमें जो उन्होंने कैरेक्टर निभाया, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी थी। और एक से बढ़कर एक नाम है, चाहे वो काश हो, दृष्टि हो, लेकिन हो, या फिर रुदाली जिसके लिए नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिला था बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, प्रहार मूवी में देख लीजिए, अंगार, गर्दिश, क्रांतिवीर, एक से बढ़कर एक मूवीज़ है। और आज तक जो मूवीज़ आती हैं, जो उनके कैरेक्टर्स आते हैं, वो दमदार ही होते हैं। तो उनके बारे में क्या ही कहें, हम सब जानते हैं कितनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं। और एक और बड़ी ही खूबसूरत एक्ट्रेस का आज बर्थडे है, उनको भी हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आकाशवाणी के माध्यम से, और वो हैं शिल्पा शेट्टी खुंद्रा। यस, और इनके बारे में, ये चंचल सी, शोक सी, खूबसूरत सी हीरोइन जब दिखी थी 93 में थ्रिलर मूवी बाजीगर में, तो क्या ज़बरदस्त दिखी थी। और लोगों ने तभी झांक लिया था, मान लिया था और भांप लिया

था कि ये आगे जाएगी और बहुत आगे जाएगी और बहुत नाम कमाएगी, हमारा नाम ऊंचा करेगी देश विदेश में, और ऐसा ही कुछ हुआ। और ये खूबसूरत एक्ट्रेस जिसने बाजीगर से बाजी मारी और उसके बाद फिर जब फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का मिल गया, तो फिर मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जानवर जैसी तमाम मूवीज, धड़कन मूवीज मूवी है, इंडियन है, रिश्ते हैं, ऐसे में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए, और या फिर एक ड्रामा मूवी जिसके बारे में जिसमें मैरिटल इश्यूज दिखाते हैं, फिर मिलेंगे, और लाइफ इन अ मेट्रो जैसी ऐसी मूवीज हैं जो जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं, और उनमें ये दिखी, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस दी, 10 मूवी अपने मूवी, और इन सब मूवीज में इनकी जो परफॉर्मेंस की चर्चा है वो गर्म है। साथ में ना सिर्फ परफॉर्मेंस बल्कि उनके जो डांस मूव्स हैं उनकी भी चर्चा है, कई सारी फिल्मों में उनके जो डांस मूव्स की काफ़ी तारीफ हुई, काफ़ी अच्छा डांस भी करती हैं। और अब छोटे पर्दे पर जब कई बार मतलब अगर बड़े पर्दे पर नहीं दिखती हैं तो छोटे पर्दे पर तो एक्टिव रहती ही हैं। तो इन दोनों खूबसूरत हीरोइनों के बारे में जितनी बात की जाए कम है, और टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि हम इनके बारे में लगातार बात करते रहें, लेकिन हाँ इनको दिल से खूब सारी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट हमेशा से लाती रही हैं और उम्मीद करते हैं ऐसे ही लाती रहेंगी। सुनते हैं ये गाना और आगे बढ़ते हैं, और सुनते रहिए बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ। और अगर आपको लगता है कि सवाल दोहरा देना चाहिए जो आपको बॉलीवुड से ताज बना सकता है, तो आपको बता दूं किस कर्नाटक की सुप्रसिद्ध गायिका पर बायोपिक आने वाली है, वही तो बताना है आपको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 9868107070 पर एकदम फ्री।

तो आज बर्थडे हमने विश किया किसको, दो मशहूर अभिनेत्रियों को, यानी डिम्पल कपाड़िया और शिल्पा शेट्टी। और गलती से मैंने शायद ट्विंकल खन्ना भी बोला ट्विंकल खन्ना डिम्पल कपाड़िया की बेटी का नाम है, आप सबको पता है। लेकिन हाँ, ये दोनों ही बहुत ज़बरदस्त अभिनेत्रियाँ हैं। फिलहाल डिम्पल कपाड़िया का आज बर्थडे है। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं कि कल की शूटिंग बड़ी बड़ी तेज़ी से शुरू होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, ऐसा नाग अश्विन ने खुलासा कर दिया है। और कल किस सीक्वल की बात कर रही हूँ, इस पर अपडेट आ गया है। और टीम ने इसी महीने एक बड़ा हिस्सा शूट करने का प्लान पूरा बना लिया है और ये 2027 में सिनेमा घरों पर भी रिलीज होने की तैयारी में है। यानी 2 दिसंबर 2027 तक ये मूवी आ सकती है। अभी लग रहा था कि बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं तो अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यस, कल की टू पर काम ज़बरदस्त चल रहा है। और आप सबके मैसेजेस भी आ गए हैं तो उन सब मैसेजेस को लेने का समय बस जल्द आने वाला है। इस गाने के बाद लौट कराती हूँ आप सबके जो मैसेजेस आए हैं, देखती हूँ किसके मैसेजेस हैं, वो शामिल करती हूँ। फिर बॉलीवुड से आज का टाइम।

और आप सबके प्रीत यानी आप सबके प्रेम का की ओर इशारा करती है ये मैसेजेस जो ढेर सारे आए हैं और सही जवाब के साथ आए हैं। मैंने जो सवाल पूछा था कि मशहूर अभिनेत्री मशहूर गायिका के ऊपर एक मूवी बनने वाली है, बायोपिक बनने वाली है, और उस मशहूर गायिका का नाम क्या है कर्नाटक की मशहूर गायिका के ऊपर, बस आपको यही बताना था और आप सब ने बता दिया है। अपना नाम, अपने शहर का नाम सबसे पहले बताना था और अगर आपने बताया है तो नाम जरूर शामिल होगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मैसेज मुझे दिख रहा है बसंत तोमर मेरठ से, और उसके बाद शिवा लक्ष्मी तनुजा महाराष्ट्र से, और नेक्स्ट मैसेज प्रवीण चौहान का मध्य प्रदेश से,

मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर से, और आशुतोष नोएडा से लिख रहे हैं, मिसेस धर्म भाटिया को शायद मैसेज सुनाई नहीं, समझ में नहीं आया क्वेश्चन। उसके बाद पंकज का महाराष्ट्र से, तरुण कोहली का मेरठ से, मोहम्मद इम्तियाज का जवाहर कैंप कीर्ति नगर से, और सुकल बाला नाम है वेस्ट बंगाल से, ये नाम दिख रहा है मुझे। उसके बाद सुनील कुमार का भी मैसेज दिख रहा है, लेकिन कहाँ से ये नहीं दिख रहा। रश्मि गुन्नौर यूपी से, दानिश खतौली से, और सलीम मलिक मेरठ से लिख रहे हैं, मोहम्मद इम्तियाज, सलमा बेगम जवाहर कैंप से, और नेक्स्ट मैसेज है किसका, शालू का शादीपुर से। नेक्स्ट मैसेज किसका दिख रहा है, ये है सुखदीप सिंह का। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन आपने अपना नाम शायद पहले नहीं लिखा, तो मिस होने चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है। सलीम सैफी का मैसेज भी दिख रहा है, निकिता का मैसेज पुणे से, ऋषु कटारिया, पवन कटारिया का भी मैसेज पंजाब से, इरशाद अशरफी राजस्थान से लिख रहे हैं, अमीर कहाँ से लिख रहे हैं, कोकिला उमेश, और ये सारे बहुत सारे जब नाम लिख देते हैं तो सब मिक्सअप हो जाते हैं। आसिफ सैफी का मैसेज भी मुझे दिख रहा है, और नेक्स्ट मैसेज किसका दिख रहा है, भाई इतने सारे मैसेजेस हैं कि कहाँ से ढूंढूं। कार से मोहम्मद फरकान, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी का भी मैसेज दिल्ली से, श्याम सुंदर गोवा से लिख रहे हैं, और पूनम का दिल्ली से मैसेज दिख रहा है, और ये इतना लंबा मैसेज किसका है भाई, बहुत शो की तारीफ में इतना लंबा लिख दिया इन्होंने कि नाम ही नहीं दिख रहा है। जसप्रीत का भी मैसेज दिख रहा है, जशनप्रीत, ये भटिंडा से लिख रहे हैं। और भी जो मैसेजेस है ना, अगर आपने नाम पहले नहीं लिखा तो मिस हो रहे हैं, क्या करूं, सो सॉरी। अब टेलीफोन की घंटी आपकी बज सकती है, तो नेटवर्क में रहिए, क्या पता बॉलीवुड सरताज बनाने के लिए आप ही को कॉल जा रही है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: यह आकाशवाणी रेनबो और आप सबका इंतजार हुआ खत्म। हमारे साथ हैं आज के बॉलीवुड सरताज। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: गुड
0: मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं आशुतोष शर्मा और नोएडा से बोल रहा हूँ।
0: आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: थैंक यू।
0: और आकाशवाणी रेनबो के 90 साल पूरे हो गए हैं। आशुतोष, आप कितने सालों से सुन रहे हैं?
1: मैं एक्चुअली आई वुड से कि मैं ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए होंगे जब से मैं ये सुन रहा हूँ, क्योंकि बाय द टाइम मैं नोएडा शिफ्ट हुआ तो दिल्ली नोएडा में ही ये कल्चर था।
0: अच्छा।
1: पहले तो एफएम तो मतलब बहुत मतलब मुश्किल ही होता था, नहीं सुन पाते थे
0: बिल्कुल तो, और बहुत पहले तो था भी नहीं, लेकिन जब से एफएम आया, एफएम कल्चर आया, लोगों की पहुंच जो शहरों में है वो एक एक पर्सन तक पहुंच गई अलग अलग से, है ना, मोबाइल्स के माध्यम से।
1: हाँ जी।
0: हाँ, तो आप भी आकाशवाणी रेनबो सुनते रहते हैं, एफएम सुनते रहते हैं खासतौर से इस टाइम पर? जैसे आपने बताया कि ऑफिस से भी आप सुन सकते हैं,
1: तो मैं एक्चुअली ट्रैवल ही कर रहा था तो आई नॉर्मली टेक 10 to 15 minutes टू रीच टू माय ऑफिस।
0: अच्छा।
1: एंड देन बैक होम आल्सो इन इवनिंग लाइक 10 to 15 minutes, सो
0: उस टाइम पर सुनते हैं।
1: मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्यून इनटू 1 or 2.6 ओनली।
0: ग्रेट।
1: तो
0: चलिए, अच्छी बात है, आकाशवाणी के साथ रिश्ता जुड़ना चाहिए, कैसे भी जुड़े, और दिल से ही जुड़ा हुआ है तभी आप सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है आकाशवाणी रेनबो सुन सकते हैं, है ना?
1: श्योर मैम, श्योर।
0: तो आशुतोष, मैंने सवाल पूछा था कि कर्नाटक की एक मशहूर गायिका है और उनके ऊपर बायोपिक बनने की बात चल रही है, तो उन गायिका का नाम मैंने ऑलरेडी बताया था, आप बताइए अब आंसर क्या है।
1: हाँ जी, उनका नाम है MS सुबलक्ष्मी।
0: बिल्कुल सही जवाब, MS सुबलक्ष्मी पर ये बायोपिक बनने वाली है। तो यही आज का सवाल था, इसी तरह से आपने सही जवाब देकर बन गए हैं आप आज के बॉलीवुड सरताज। तो कैसा लग रहा है आशुतोष?
1: बहुत बढ़िया।
0: पार्टी वार्टी नहीं करेंगे ऑफिस में?
1: नहीं, श्योर, अभी लंच टाइम होता है तो फिर पक्का प्लान करते हैं।
0: बिल्कुल प्लान करिएगा और मैं पता करूंगी आपने पार्टी की है नहीं की।
1: जी, श्योर मैम।
0: करें या ना करें, लेकिन आकाशवाणी के साथ इसी तरह से दिल से रिश्ता बनाकर रखें, ठीक है?
1: बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच।
0: वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू, बाय।
0: और इसी के साथ मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को भी अभी दीजिए इजाजत, क्यों? क्योंकि लौट कर जो आना है अभी एक घंटे बाद, 1 से 2 बजे तक आप रहिएगा मेरे साथ एक बार फिर से, क्योंकि रेनबो हेल्पलाइन में एक एक्सपर्ट

जुड़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किस पर बात करेंगे, डिजास्टर रेजिलिएंट कम्युनिटीज, बात करेंगे द पावर ऑफ प्रिपेयर्ड सिटीजंस पर। और कौन बात करेगी, हमारे एक्सपर्ट मिस रीता मिसल जो कि मेंबर हैं एनडीएमए में। तो इस शो में आपके जो सवाल हैं वो भी आप अपनी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल के लिए बबीता त्रिपाठी से बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की

0: विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जांच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: And we're back to the music after that very refreshing and short and simple and sweet commercial break. You're with us, Niharika and Lipika on Play It Cool this afternoon. You can write to us on 9868107070 for any thoughts you may have and for any songs you may want to request.
5: Or dedicate,
4: as Lipika said. And up next, we've got a lovely track, which Lipika will tell you about.
5: This is for all our beautiful listeners, and the song is by Ed Sheeran. It's titled Beautiful People.

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: Welcome back, dear listeners. This is Played Cool on AIRFM Rainbow 102.6 MHz, and you're with me, Lipika.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को

0: वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: और ये आकाशवाणी है और आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन। रेनबो हेल्पलाइन में मैं आपके साथ बबीता त्रिपाठी, और रेनबो हेल्पलाइन में हमेशा की तरह कुछ खास होता है और आज क्या खास है आपको बताऊंगी बस थोड़ी ही देर में। आपको कहीं नहीं जाना, ऐसे ही सुनते रहना है आकाशवाणी रेनबो। फिलहाल आपको बता दूं कि रेनबो हेल्पलाइन में हमेशा की तरह हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, वो आ चुकी हैं, और आज का जो टॉपिक है मैं पहले ही बता चुकी हूं, लेकिन उस टॉपिक पर और बात करेंगे बस थोड़ी देर बाद। पहले ये गाना सुनते हैं।

0: रेनबो हेल्पलाइन सुन रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी। और जैसा कि मैंने बताया कि रेनबो हेल्पलाइन में हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ी हैं, तो आप सबको जानना होगा कि किसी खास टॉपिक पर, किसी खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं हमेशा की तरह। तो आज का मुद्दा हम सब से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई आपदा आती है तो हम कितने तैयार होते हैं, नागरिकों की तैयारी कितनी होती है और उसकी ताकत कितनी होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप सब भी अपनी राय जरूर रखिएगा। आज बात कर रहे हैं डिजास्टर रेजिलिएंट कम्युनिटीज पर, द पावर ऑफ प्रिपेयर्ड सिटीजंस पर। यस, हमारे साथ एक्सपर्ट इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ी हैं, मेंबर हैं एनडीएमए में, और वो हैं मिस रीता मिसल। तो रीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत धन्यवाद, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। ये मेरी सौभाग्य है आज आकाशवाणी की 90th बर्थडे में इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, और आपदा के बारे में और नागरिक की सुरक्षा के बारे में बात करने के लिए बुलाने के बहुत धन्यवाद।
0: तो मैम, बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, क्योंकि जब आपदा आती है तो बताकर नहीं आती, खासतौर से प्राकृतिक आपदा की हम बात कर रहे हैं। तो ये किस तरह की होती हैं और क्या तैयारी हम कर सकते हैं, जैसे तमाम बातें हैं जो हमारे दिमाग में होती हैं, हम इनके बारे में कई बार सोचते भी नहीं हैं, और सोचना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ सोचना बल्कि अपने लोगों में बात करना भी, अपनी कम्युनिटी में अपनी बात रखना भी ज़रूरी है, ताकि हम तैयार रह सकें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो रीता जी बताने वाली हैं। लेकिन आप क्या कहने वाले हैं, आपके सवाल क्या हैं, आप बता सकते हैं 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करके, या फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए 9868-107070 ये है हमारे नंबर, 9868-107070। तो सबसे पहले रीता जी से पूछते हैं इस टॉपिक के बारे में, आपदा प्रतिरोधी समुदाय होते कौन है, और आज का जो ये विषय है इसका महत्व क्या है?
1: देखिए, भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ आबादी में रहते हैं, जिसमें हमारे एक साइड में इंडियन ओशन है, दूसरी साइड में अरेबियन सी रहता है, फिर उसके बाद हिमालय है, और हिमालय के जितने प्रदेश है, अराउंड 8 states, 9 states सब हिमालय में रहते हैं। तो ये तो होना ही है कि आपदा ज़रूर होगा, लेकिन ये नहीं कि आपदा होने से वो बड़ी एक डिज़ास्टर बन जाती है, क्योंकि जब तक हमारी घरों और जब तक हमारी रास्ते, जब तक हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड हो, तब तक आपदा की कोई भय नहीं। अगर हम लोग रॉन्ग जगह में रहते हैं, अब लोग हम लोग रिवर की फ्रंट में रहते हैं, अगर हम लोग हिल स्लोप में रहते हैं, तो तभी आपदा को हमको डरना है, नहीं तो नहीं डरना है। क्योंकि जब तक हमारी शक्ति सामर्थ हो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने लाइवलीहुड को सेव करने के लिए, तब तक आपदा कोई भय नहीं है।
0: ओके, तो आपने कहा कि आपदा की भय नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन जो जिस समुदाय की बात कर रहे हैं, जिस तरह से सिटीजन्स की बात कर रहे हैं कि उनको तैयार रहना चाहिए, तो ये किस तरह के सिटीजन्स होते हैं उनको, मतलब जो हम ही लोगों में से एक होते हैं, या फिर कुछ खास वर्ग की बात आप कर रही हैं जिनको इस तरह की तैयारी करनी है, और किस तरह की तैयारी करनी है उस पर आते हैं?
1: नो, वो तो आपने सही कहा कि हमारे लोगों में बहुत सारे लोग हैं जिसके इतने शक्ति सामर्थ्य नहीं है। वो है लोग जो बिल्कुल रिवर फ्रंट में रहते हैं, या कच्चे घरों में रहते हैं, या उनका दूसरा कोई तरीका नहीं इनकम करने का, वो जाके बाहर माइग्रेंट लेबर करते हैं, सिटीज में झुगड़ी झोपड़ी में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, वो सब लोग बहुत ही मतलब वनरेबल जिसको बोलते हैं, जिसके पास कोई शक्ति सामर्थ्य ना हो अपने रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए, वो लोग बहुत वल्नरेबल हो, चाहे वो हीट वेव हो, या बाढ़ में हो, या साइक्लोन में हो, या भूकंप में हो, ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए, और सरकार को भी, अपने आप को भी, नागरिक लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि इन लोगों को कैसे सुरक्षा होके रहे उस हाजार्ड से बचने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
0: मैम, जरूरी क्यों है नागरिकों की, किसी भी प्राकृतिक आपदा से अगर निपटना है नागरिकों को, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आम नागरिक तैयार रहे। क्यों तैयार रहे, मतलब हम कई बार भरोसे रहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो करेगी, उनका काम है ये सब करना, तो सबसे ज्यादा आपको क्यों जरूरी लगता है कि आम नागरिकों को पहले तैयार रहना है?
1: इसीलिए कि आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले और अपने परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये तो पहली बात हुई।
0: हाँ
1: दूसरी बात है, सरकार को पहुंचने में भी थोड़ी देर लगती है वहाँ, तो अपने खुद के सुरक्षा लेके आपको पहले से ही एक्शन लेना चाहिए। ये हजार डिजास्टर होने के बाद नहीं, उससे पहले लेना चाहिए। जैसे कि मैं कल उड़ीसा में थे, उड़ीसा में काल बैसाखी का एक दिन में सडन एक स्टॉर्म आया और रास्ते में से बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ गिर गए, और पेड़ गिरने के बाद वहाँ तो ट्रैफिक इतनी जम गई कि आने तक वो रेस्क्यू सर्विसेज बहुत देर हो गई। तो लोकल जो नागरिक थे, लोकल दे यूथ जो थे, वो ही लोग जाके अपने घरों से इंस्ट्रूमेंट्स ला के वो रोड्स को क्लियर करे। तो ये आम जनता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते ये सब काम करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सरकार अकेले नहीं कर सकती। हर हजार में, हर डिजास्टर में सबका इसमें एक रोल निभाना होता है, और उसी रोल एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की भी होती है कि वो भी प्रिपेयर रहे एक कोई भी डिजास्टर में। पहले अपना, अपने सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के सुरक्षा के लिए, अपनी कम्युनिटी के सुरक्षा के लिए, फिर आम जनता की सुरक्षा के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये तो हमारी बड़ी एक NDMA की एक बहुत बड़ी बड़ी प्रयास है, जो हमने एक बड़ा प्रोग्राम रखा है आपदा मित्र करके, जिसमें 3 लाख अभी तक वॉलंटियर रहे हैं। उस वॉलंटियर्स गाँव में काम करते हैं, गाँव में ट्रेनिंग लेते हैं, अपने गांव लोगों को वो लेटली हेल्प करते हैं जब डिजास्टर होती है। तो ये सबसे हमारी स्ट्रेंथ है कि अपने लिए, अपने लोगों काम करना, इसीलिए कम्युनिटी, कम्युनिटी वॉलंटियरिज्म प्रमोट करते हैं बहुत NDA में।
0: बिल्कुल, हमें ये तो आप समझ में आ गया कि किस तरह से आम जनता अगर जागरूक रहेगी, तैयार रहेगी, तो अपने परिवार की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा वो अपने लेवल पर काफी हद तक कर सकती है, लेकिन वो किस तरह की तैयारी करें उस पर हम बात करेंगे। मैं सोच रही हूँ एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और लौट कर आते हैं कि आम नागरिकों को किस तरह से तैयार रहना है, अपने लेवल की किस तरह की तैयारियां हैं वो कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। इस बीच आप सबके सवाल भी आने चाहिए, आपको अगर कुछ पूछना है तो फटाफट नंबर्स डायल कीजिए, या तो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉल करने के लिए ये नंबर्स हैं 2342-1080 या 2342-1084, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। दिल्ली NCR के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 इन नंबर से पहले जरूर लगाइए, और अगर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो फटाफट अपना सवाल लिखिए, अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए और भेज दीजिए इस नंबर पर 9868107070, 9868107070। रेनबो हेल्पलाइन में आपके साथ हूं मैं, बबीता त्रिपाठी, और मेरे साथ मिस रीता मिसल, मेंबर NDMA, जो आज

बात कर रही हैं डिजास्टर रेजिलिएंट कम्युनिटीज पर, द पावर ऑफ प्रिपेयर्ड सिटीजंस। इस पर हम और चर्चा करेंगे बस थोड़ी ही देर में। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: यह आकाशवाणी रेनबो और रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है शो। आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी। मेरे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट मिस रीता मिसल, जो कि एनडीएमए में मेंबर हैं, और आज हम बात कर रहे हैं डिजास्टर रेजिलिएंट कम्युनिटीज द पावर ऑफ प्रिपेयर्ड सिटीजंस पर, यानी आपदा प्रतिरोधी समुदाय, नागरिकों की तैयारी की ताकत, यानी नागरिक तैयार रहें तो किस तरह से किसी भी आपदा से हम निपट सकते हैं मजबूत तरीके से। आप सबके सवाल भी आ रहे हैं, और अगर अभी तक आपके दिमाग में कोई सवाल है और आपने नहीं पहुंचाया है तो आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। कॉल करने के लिए आपको ये नंबर्स डायल करने 2342-1080 या 2342-1084, व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए 9868-107070। वैसे तो बहुत सारे मैसेजेस आने भी शुरू हो गए हैं और मुझे लगता है मेरे सवालों की फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबके बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं। जो मेरे पास एक लिस्ट आई है, मुझे लगता है इससे तो पूरा का पूरा शो कंप्लीट हो जाएगा। एक सवालों की लिस्ट आई हुई है मेरे पास, लेकिन नाम के सिवा उन्होंने कहाँ से लिखा है ये नहीं लिखा। कोई बात नहीं, अनिंदिता सिन्हा की बात कर रही हूँ। इन्होंने पहला जो सवाल किया है, जिस पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा और गाइड करें। इन्होंने लिखा है, व्हाट डज द टर्म डिजास्टर रेजिलिएंट कम्युनिटी मीन एंड व्हाई इज कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस इम्पॉर्टेंट बिफोर अ डिजास्टर अकर। तो इस पर मैम कुछ कहिएगा प्लीज, छोटा सा, क्योंकि आप ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनकी जो सवालों की लिस्ट है वो बहुत लंबी है।
1: थैंक यू अनिंदिता वो प्रश्न के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है
0: जी।
1: एक बात बोलनी है, डिजास्टर रेजिलिएंट कम्युनिटी की, डिजास्टर रेजिलिएंट हाउसहोल्ड जो बोलते हैं उसको एक बात माननी है कि मेरी फर्स्ट होनी चाहिए उनकी अपनी, घर जो रहते हैं, घरों को सुरक्षित होना चाहिए, चाहे ये भूकंप से, चाहे ये साइक्लोन से, चाहे ये फ्लड से, बाढ़ से, ये सारी हाउसेस जो अपनी अगर एक शेल्टर खुद हो जाएगी अपने आप में कोई भी डिजास्टर से, तब तो एक रेजिलियंस की वो मार्क हो सकती है। दूसरी बात है कि आपकी अपने जो जीविका है, उस जीविका को जैसे भी किसी भी डिजास्टर में जैसे वो रुक ना जाए, जैसे जो आम आदमी काम करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में, अगर बाढ़ आए तो उनकी तो उस समय तो बहुत डिसरप्ट हो जाती है उनकी लाइवलीहुड्स, लेकिन अगर कोई नौकरी करते हैं तो यू नो लाइवलीहुड्स रहता है, वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं डिजास्टर के बाद। इसलिए लाइवलीहुड्स

0: ये अपनी ऐसी होनी चाहिए जहाँ वो सुरक्षित हो और डिजास्टर उसको डिसरप्ट ना करे। तीसरी ये बात है, अपने जितने सारे घरों के परिवार, शायद वो एजेड लोग हो, डिसेबल लोग हो, विमेन हो, उनके भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनके भी सुरक्षित होने चाहिए। अगर बाढ़ आए तो उनको हाई ग्राउंड में ले जाए, अगर भूकंप होए ठीक जगह में आप उनको सुरक्षित जगह में रख सके, ये एक बात भी रखनी चाहिए मन में। तीसरी चौथी बात यह है सकते आप भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस भी अपने लिए कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस करेंगे, अपने जितने एसेट्स से इंश्योरेंस करेंगे। भारतवर्ष में हाउस इंश्योरेंस बहुत कम होती है, एक बड़ी इंश्योरेंस की बात वो भी करनी चाहिए। ये तीन चार विषय करने से हम अपने आप को, अपने परिवार को रेजिलियंट समझ सकते हैं।
1: तो ये तो हुई परिवार की बात और कम्युनिटी की। आपने बोला कि जिस तरह से किस तरह से डिजास्टर रेजिलिएंट कम्युनिटी का मतलब क्या होता है और किस तरह से तैयारियां कर सकते हैं, और भी तैयारियों की बात हम करेंगे। और इनका जो सवाल है उसमें इतने सारे सवाल हैं कि मैं सोच रही हूँ कि एक साथ इन सवालों को लेती हूँ, उस पर हम बात करते हैं। व्हाई इज इट सेड दैट कम्युनिटीज आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ड्यूरिंग एनी डिजास्टर? एक लाइन में
0: मैंने तो अभी उड़ीसा
1: आपने
0: की
1: बताया।
0: एग्जाम्पल मैंने
1: जी
0: बताया कि देखिए, जब तक एक इमीडिएट इंसिडेंट होती है, जैसे स्टॉर्म होती है कि फ्लैश फ्लडिंग होती है, वहाँ सरकार की फोर्सेस आने में थोड़ी देर टाइम लगती है।
1: हाँ, तो इसलिए
0: इसीलिए सामने जो रहते हैं लोग, इमीडिएटली विसिनिटी में जो वो लोग अवेयर होकर इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करते हैं, उसलिए कम्युनिटी को फर्स्ट रेस्पॉन्डर बोला जाता है। और यही हमारी उम्मीद है कि हमारी ये फर्स्ट रेस्पॉन्डर लिस्ट बहुत बढ़ जाए भारतवर्ष में, ताकि हम और सुरक्षित हो सके।
1: जी, तो एक सवाल इन्होंने और लिखा है कि हाउ कैन कम्युनिटीज प्रिपेयर वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज चिल्ड्रन, एल्डरली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड प्रेग्नेंट वेमेन?
0: बहुत अच्छे सवाल है। एक तो हम लोग भारतवर्ष में बहुत ही मशहूर है हम लोगों की कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस जो बोलते हैं। कम्युनिटी एक डिजास्टर पहले अपने कम्युनिटीज में क्या क्या आपदा आते हैं उसको एक लिस्ट बनाते हैं, उसके तहत एक प्लान बनाते हैं कि इस प्लान में कौन क्या करेगा आपदा आने से। ये रोल सब बंटा जाता है अपने कम्युनिटीज में। यूथ को देते हैं सर्च एंड रेस्क्यू की काम, किसी और एक ग्रुप को देते हैं, यूथ ग्रुप को देते हैं मेडिकल फर्स्ट एड की काम, किसी और को देते हैं शेल्टर जब जाते हैं उसको उसको वहाँ काम करने के लिए। ऐसे करके हम अपने कम्युनिटी प्लान जब बनाते हैं, सो जो लोग सब रहते हैं, जिसको आप वनरेबल ग्रुप करते हैं, जो हमारी डिसेबल्ड है, जो प्रेग्नेंट वीमेन है, जो लैक्टेटिंग वीमेन है, और जो एजेड है, वृद्ध, सब उनके एक लिस्ट बनाया जाता है कम्युनिटी प्लान में। और लिस्ट के हिसाब से जब अर्ली वार्निंग आती है, जब IMD की जब सूची आती है कि बाढ़ आने वाली है, ये साइक्लोन आनी तूफान आने वाली है, इन्हीं लोगों को पहले ध्यान देते ये कम्युनिटी उनको ले जाती है पहले साइक्लोन शेल्टर में, ताकि वो सुरक्षित हो और उनकी जो स्पेशल नीड्स है, स्पेशल नीड्स को अटेंड करने के लिए उनकी मेडिसिन चाहिए हो, उनकी जो पौष्टिक खाना जो बच्चों के लिए होना चाहिए, वो सब तैयार करके रखते हैं साइक्लोन शेल्टर में, ताकि कम्युनिटी उनको अटेंड कर सके। तो इसी तरफ से हमारी वेनरेबल कम्युनिटीज जो हैं उनके ध्यान बहुत देते हैं, ताकि बाढ़ में उनकी जो सुरक्षा ज़्यादा हो सके।
1: तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें पहले से लेने चाहिए? जो
0: तो इनकी जो लिस्ट है सब वल्नरेबल फैमिलीज की, वल्नरेबल लोग की, आप चाहे आपकी हेल्थ वर्कर को दे सकते हैं, वो गवर्नमेंट में लिस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि उनका ध्यान होना चाहिए कि आपदा के बाद उनकी क्या सर्विस चाहिए, क्या मेडिसिंस लेते हैं। कभी कभी लोग होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, उनकी भी मेडिसिन चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चाहिए। ये सब पहले से ही तैयार करके आपकी आशा वर्कर हो या आंगनबाड़ी वर्कर हो, इन सबको लिस्ट देना चाहिए और लिस्ट आपके पास में रहना चाहिए। इन कि जो सामग्री जो चाहिए होगी बाढ़, ये बाढ़ होने के बाद या आपदा होने के बाद, उनको पहले से ही पहुंचाने के और स्टॉक पाइल करके रखना होता है। पहले से ही स्टॉक पाइल, ये राशन स्टॉक पाइल करके रखते हैं, मेडिसिन स्टॉक पाइल करके रखते हैं, एसेसिस डिवाइस स्टॉक पाइल रखते हैं, वो एक बात करते हैं। फिर बीच बीच में कम्युनिटीज एक साथ होकर एक मॉक ड्रिल करते हैं, मॉक ड्रिल कहते हैं, जिसमें वो सिनेरियो बेस्ड एक प्लानिंग करते हैं, जिसमें जितने वल्नरेबल लोग हैं उनको लेके उन लोग एक प्लान करते हैं, उनको कैसे इवैक्यूएट करें समय पर, उनको कैसे घर से बाहर निकाल के उनको साइक्लोन शेल्टर में या किसी भी अच्छे बिल्डिंग में पहुंचाए जहां की बाढ़ या साइक्लोन की इफेक्ट ना पड़े उनके ऊपर। यही स्टेप्स पहले ही से लेना है। और कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयरनेस प्लान पहले से ही तैयार करना है, उसका एक टेम्पलेट दिया।

0: हुआ है एनडीएमए की तरफ से और राज्यों इसको करते हैं और आप भी उसमें शामिल हो जाइए।
1: एक सुखलाल बाला वेस्ट बंगाल से एक मैसेज कर रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि जब ये 6th फ्लोर पे रात में जब सोते हैं तो भूमि कंपन होता है, तो इस टाइम इनको क्या करना चाहिए?
0: देखिए, भूमिकंपन जो जब होता है, आप 3 स्टेप्स लेते हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉप, कवर और होल्ड। मतलब आपको ऐसे एक स्टडी बहुत ही मजबूत वाला बिस्तर या टेबल के नीचे आपको जाके अपने सर को ढक करके उसके नीचे रहना है जब तक शेकिंग बंद ना हो जाए। ये अपने घर में आप कर सके। आप प्लीज अपने घर में जितने सारे सामान हैं जो गिर सकती है उसको कैसे सिक्योर किया जाए, आप अगर जानते हैं, भूकंप एरिया में आप रहती हैं तो प्लीज उसको कीजिए पहले, क्योंकि ये ही आपकी इंजरी के कारण हो सकती है। तो और इमीडिएटली जितने इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है उसको निकाल दें ताकि फायर की कोई गुंजाइश ना हो। आपकी जो अपनी सुरक्षा के लिए मैंने बोला, कोई भी एक बड़ी मजबूत सा टेबल या बड़ा सा बेड के नीचे जाए और उसको अपने सर के ढक के वहां रुके जब तक आपकी शेकिंग कम ना हो जाए। दैट इज
1: कभी
0: वेरी
1: भी कोई
0: इंपॉर्टेंट।
1: भी अगर भूकंप के लिए भूकंप के झटके महसूस करें तो क्या अपने घर में, जैसे आपने कहा कि इस तरह से हम किसी भी चीज के नीचे जाकर बैठ सकते
0: यस
1: हैं, लेकिन क्या जिस देखने को क्या मिलता है कि कभी भी झटके थोड़े से शुरू हुए तो सारे लोग बिल्डिंग से नीचे उतर आते हैं
0: जी
1: और वो उतरने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो वो सही है या इस तरह से अपने घर में ही कोई जगह ढूंढ के
0: देखिए,
1: रुकना?
0: ये 6वीं फ्लोर में रहते हैं, कभी कभी लोग 10वीं फ्लोर 18 फ्लोर से,
1: हाँ,
0: तब से
1: सोसाइटीज
0: नीचे
1: में, हाई राइज
0: बहुत हाई
1: सोसाइटीज में,
0: राइजेस है,
1: और वो
0: हाई
1: नीचे
0: राइजेस
1: उतरते
0: में
1: हैं।
0: नीचे उतरने से एक टाइम बहुत ही मुश्किल है। अगर पीपल को प्रैक्टिस नहीं है 18वां मंजिल से कैसे नीचे आए तो वो जल्दी भी नहीं आ सकते। आप कोई अगर ओल्ड हो वहाँ, वो कैसे आएंगे? इसीलिए अगर आप जानते हैं भूकंप एरिया में आप रहते हैं, प्लीज ऐसे एक पहले से एक प्रिपेयर कीजिए, एक स्टडी जो फर्नीचर आपकी हो उसके नीचे जाने के लिए। हम लोग स्कूल में ऐसा एक्सरसाइज करते हैं बच्चों को टेबल के नीचे जाने के लिए, वैसे एक्सरसाइज घर में करें। और सबसे बड़ी प्रिपेयर्डनेस हो सकती है कि आपकी जितने फर्नीचर है जो गिरने की संभावना है उसको कैसे आप बांध करके रख सकते हैं। यू हमारे देश में इतने कॉमन नहीं है, लेकिन जापान जैसे देश में भूकंप होते ही रहते हैं और उसी में मैंडेटरी है। और प्रिपेयर्डनेस के लिए आप प्लीज बिल्डिंग कोड्स जो है इंडिया के, वो बिल्डिंग कोड्स के अनुसार अपने घर बनाएं। और जब घर खरीदते हैं, हम लोग अपार्टमेंट्स खरीदते हैं, आप पहले से ही पूछ लीजिए बिल्डर से आपकी अर्थक्वेक साइस्मिक कोड्स जो इंडिया में है उसको फॉलो करके आपने घर बनाए कि नहीं। अगर वो बनाए हैं तो वो तो अच्छी बात है, कुछ होनी नहीं चाहिए एटलीस्ट 7 पॉइंट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक तक।
1: राजेश कुमार चौहान जालंधर से बोल रहे हैं, पिछले कुछ सालों से देश के पहाड़ी इलाकों में बरसात से बहुत घर धराशायी हो रहे हैं, भवन धराशायी हो रहे हैं, इसके लिए आम लोगों को क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहली बात ये है कि आम लोगों को जानना चाहिए कहाँ रहते हैं, क्या वहाँ नदी के किनारे रहते हैं जहाँ बाढ़ होने की संभावना है, जहाँ से भूकलन हो सकती है, वहाँ रहने से तो हमने देखे हैं हिमाचल एरिया में, उत्तराखंड एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे
1: हेलो
0: रास्ते के ऊपर रहते हैं, हिल की स्लोप रहते हैं,
1: हेलो
0: 45 डिग्री इंक्लाइन के
1: जी
0: में घर बना लेते हैं। ऐसी जगह में घर बनाने थे तो जैसे भी किसी भी बाढ़ आएगा, ये भूकलन आएगा, जरूर वो घर टल जाएगा और निकल जाए वो, इसीलिए वो
1: होगा
0: एक करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप अपने घरों जगह में जितने सारे पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, जंगलों हैं, उसको ना काटें, क्योंकि जितने आप पेड़ और जंगलों को काटते हैं उतनी वो सॉइल लूज हो जाती है और थोड़ी सी बारिश में वो सब नीचे आ जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आम नागरिक की बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है कि कैसे हम प्रिवेंट करें कि पेड़ पौधा सुरक्षित रखें और भी प्लांट करें।
1: एक सवाल आ रहा है हमारे लिसनर का, बात करते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश शिमला से।
1: जी राकेश जी, बताइए आपका सवाल क्या है?
2: जी, मेरा सवाल ये, अगर जैसे कि बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं, अगर स्कूल में स्थिति बाढ़ की आ जाती है तो तो उनको, उन बच्चों को किस तरह से जो है तैयार किया जाता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है।

0: मेरा ये सवाल है
1: जी, सुनिए
2: जी। बच्चे अगर स्कूल में हो, इस स्कूल का एक स्कूल तैयारी, एक प्रिपेयरनेस प्लान होती है फ्लड के लिए। आपके जो टीचर्स हैं आपके स्कूल करिकुलम में बाढ़ के बारे में बोलते हैं और स्कूल में वो लेसन में अपने होते हैं। एक बात होती है कि स्कूल टीचर की वहाँ जिम्मेवारी होनी चाहिए सब सारे बच्चों को एक साथ रखने के लिए, जबकि अपने पेरेंट्स ना आए तब तक अपने साथ रखें और उसकी व्यवस्था, उनके खाने पीने का रहने का व्यवस्था करें। हालांकि हमारी स्कूल बिल्डिंग्स मोर और लेस सब बहुत ही अच्छे इमारत है, स्कूल बिल्डिंग्स बाढ़ में नहीं कुछ नहीं होती है। जब भूकलन होती है तब तो जब थोड़ी मुश्किल हो जाती है, पानी नीचे आ जाती है, लेकिन बाढ़ के लिए बिल्डिंग का कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए वो स्कूल में रहे, टीचर के साथ रहे, टीचर की इंस्ट्रक्शन सुने और बाकी वो सुरक्षित वहीं रहेंगे और वहाँ बाढ़ के पानी में निकलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। वो लोग सोच रहे होंगे तो कम पानी है हम घर चले जाएंगे, वैसे नहीं है, पानी की गति तेज होती है और बच्चे फिसल जाएंगे, इसीलिए स्कूल से बाहर, उस कंपाउंड से बाहर नहीं निकलना चाहिए।
1: तो इस पर हम और चर्चा करेंगे। सरकार भी बहुत सारे स्टेप्स है जो ले रही है और क्या उनके बारे में आपको पता है, किस तरह से उसका फायदा आप उठा सकते हैं, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है जिस पर हम तुरंत फोन करके किसी भी आपदा की जानकारी दे सकते हैं? अगर ये सब भी आप जान जाएंगे तो और प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस सुनते रहना इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो। रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है इस वक्त। हम मिस रीता मिसल जो कि मेंबर एनडीएमए है, वो बता रही हैं कि आपदा प्रतिरोधी जो समुदाय है, नागरिकों की तैयारी की ताकत है उसके बारे में। तो आप अपने सवाल कब बताएंगे, अपने सवाल अभी लेकर आइए 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करके अपना सवाल इन तक पहुंचाइए या फिर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पूछ डालिए 9868107070। ये हमारा व्हाट्सएप करने का नंबर, तो फटाफट इस नंबर का लाभ उठाइए। सुनते रहिए रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ मैं बबीता त्रिपाठी।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी और शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। आज हम डिजास्टर रेजिलिएंट कम्युनिटीज, द पावर ऑफ प्रिपेयर्ड सिटीजंस पर बात कर रहे हैं। मिस रीता मिसल मेंबर NDMA हमारे साथ हैं। तो हम बहुत सारी ऑलरेडी बातें कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारी बातें

0: भी गई हैं, जो हम चाह रहे हैं कि आप सबके मैसेजेस के जरिए जो आई हैं एटलीस्ट वो बिल्कुल ना छूटे। पैंथर तोमर बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं, उनमें से एक है, आकाशीय बिजली भी एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है। इस आपदा के खतरों से सुरक्षित बचने के लिए आम नागरिकों को कौन से व्यावहारिक उपाय अपनाने चाहिए? जी मैम,
1: थैंक यू। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाइटनिंग अभी एक इंडिया की नोटिफाइड डिज़ास्टर है। नोटिफाइड डिज़ास्टर के मतलब इसमें राहत भी गवर्नमेंट दे सकती है, अगर लाइटनिंग से स्ट्राइक हो फैमोस की दे सकती है। अपनी लेवल में आप क्या करें कि जब लाइटनिंग आए आप दया प्लीज़ जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उससे दूर रहे, उसको अनप्लग कर दे पहले। घर में अगर होंगे तो अनप्लग करें सारे इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर हो, टेलीविज़न हो, आपकी मिक्सी हो और दूसरे जिस भी अप्लायंसेस हो, उसके पावर सर्ज होने के कारण यू नो खराब हो सकती है, पहले उनको अनप्लग करें। आपकी अगर कंक्रीट डोर्स है, विंडोज है, उसके पास ना जाएं। और आप अपने जो कॉर्डलेस फोन हो उसको यूज करते, लेकिन कॉर्डेड फोन हो यूज करें। अगर बाहर हो तो ये बड़ी ही मुश्किल कारण है। आप एक काम करें, अगर बाहर हो तो बहुत ही एक खुली जगह में हो तो आप देखें जहां की डिच की एक नाला हो उसके अंदर जाए और खूब अपने आप को हग करके नीचे रह जाए, ताकि यू नो लाइटनिंग आपके थ्रू से ना जाए। जितने छोटे हो सके बच्चों जैसे बैठकर, पूरा बैठकर, अपने हील के ऊपर बैठकर, जितनी छोटे हो सके उतने क्राउच करके आप रहें। फिर उसके बाद ट्रीज के पास, बड़े बड़े पेड़ के पास ना जाए। आप सोचते होंगे बारिश हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, ट्रीज के पास जाए, नहीं। ट्रीज एक बड़ी लाइटनिंग की रॉड, नेचुरल रॉड होती है, इसीलिए पानी के पास ना जाए बिल्कुल। स्विमिंग पूल, बीचेस, पॉन्ड्स, लेक्स, इसमें से दूर चले जाए। मेटल ऑब्जेक्ट्स जो है, पावर लाइंस, ऑफ कोर्स आप तो दूरी रहेंगे, लेकिन हमारे तार की जो फेंसेस होते हैं उसमें से भी ज़्यादा दूर रहे। मेटल स्ट्रक्चर्स जितने हो सके उसमें से दूर रहे। और बड़े ग्रुप से अगर आप ट्रैवल करते हो, प्लीज़ आप ग्रुप को सेपरेट करके सब एक जगह में ना रह के 50 फीट 100 फीट दूरी रह के आप वो क्राउचिंग की पोजीशन नीचे एकदम बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे छुपते हैं वैसे पोजीशन आप ले ले, ताकि आप सेफ रहे।
0: ओके, एक सवाल इन्होंने ये भी लिखा है कि हिमालयी क्षेत्रों में जो भूस्खलन है और नदियों में आने वाली अचानक बाढ़ें हैं, ये लगातार बढ़ती क्यों जा रही हैं, और इनको कम, इनके प्रभाव को कम करने के लिए आम नागरिकों को क्या करना चाहिए?
1: मैं पहली इस बारे में जिक्र कर चुकी हूँ कि हिमालय रीजन में आप जब घरों बनाते हैं बड़ी बड़ी स्लोप में और उसके लिए पेड़ काटते हैं, जंगलों क्लियर कर देते हैं रहने के लिए, हाँ। वो सब अपने नेचुरल टॉप सॉइल जो होते हैं वो काफ़ी लूज हो जाते हैं, उसके कारण जब थोड़ी भी बारिश हो जाती है जो मिट्टी पकड़ के रखती थी ज़मीन को वो ढीला हो जाता है और सारे जितने थोड़े बारिश होने से भी वो नीचे आ जाती है। इसीलिए हमारी जो रोल है एक नागरिक की तरफ से, हमको जितने भी हो सके हम पेड़ और भी प्लांट करें, वो एक बड़ी चीज है। आप प्लीज नदी के किनारे जो पानी आ सकती है, 2 साल के आगे नहीं आई, 5 साल के आगे नहीं, ये नहीं है। नदी का कोई एक सिस्टम नहीं है कि आज इस साल में इसमें जाएगा, और एक बड़ी बैंक होती है नदी का, और उस नदी के किनारे ना रहे, घर ना करे। और तीसरी बात यह है कि आप अपनी स्लोप को, जो अपने घरों के स्लोप को आप देख के वहाँ तैयार किए, जिसमें विभिन्न तत्व होते हैं जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो स्लोप प्रोटेक्शन के भी उपाय आप देख के करें घर जब बनाएंगे अपने घर।
0: तो एक वो सवाल एक और इसी में से आता है कि हम अपनी तरफ से ये सारे प्रयास कर सकते हैं, और आज हम बात भी इसी बात पर कर रहे हैं कि जो आम नागरिक है वो किस तरह से तैयार रहे, लेकिन सरकार ने कई बार ऐसे कुछ चीजें बनाई हुई हैं, कुछ ऐसी बातें बोली हुई हैं जो हमें ही नहीं पता है, आम नागरिकों को नहीं पता है कि उनका फायदा कैसे उठाया जाए, या अवेयर नहीं है उनके बारे में। तो कुछ उसके बारे में भी हमें बताइए कि किस तरह से सरकार की तैयारी होती है।
1: बस देखिए, जब डिज़ास्टर आती है, जैसे अभी बाढ़ आने वाली है, ये बाढ़ की सीज़न है, जून से सितंबर तक बाढ़ आती है, उससे पहले भी सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सारे लाइन डिपार्टमेंट्स को बुला के एक प्रिपेयरनेस मीटिंग करते हैं, मॉनसून प्रिपेयरनेस मीटिंग में हर साल में ये होती है।
0: अच्छा।
1: और हर साल में जब ये मीटिंग होती है, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एक डायरेक्टिव होती है कि क्या करना चाहिए। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट को जितने सारे महिलाएँ हैं जो प्रेग्नेंट है, जिनके लिए मेडिसिन तैयार करना, वैक्सीन तैयार करके रखना, उनके लिए खाना तैयार करके रखना, वह रोल है। जो CWC की रोल है, उसको टाइमली वार्निंग देना है। जो डैम की रोल है, पानी जब छोड़ते हैं जिसमें बाढ़ आ जाती है, उसको पहले से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को खबर देना है कि हम इतने समय में इतने घंटे में पानी इतना छोड़ रहे हैं, आप प्लीज जो लोग रहते हैं पानी के नीचे नदी के किनारे, उनको वार्निंग दीजिए। ऐसे करके सारे डिपार्टमेंट्स की एक एक रोल होती है, वो रोल के बारे में डिस्कस किया जाता है, प्रिपेयरनेस बना जाता है। और दूसरी बात है, आम नागरिक को यह जानना चाहिए कि बाढ़ होने के लिए आप अपनी मौसम विभाग की जितने सारे टीवी हो, रेडियो है, एक सचेत ऐप करके है, सचेत ऐप को डाउनलोड करके आप बाढ़ की वार्निंग सुन लीजिए। आपको 3-4 दिन से पहले ही मालूम पड़ जाता है धीरे से इतना बारिश पड़ेगा, इतनी तेज से बारिश होगी।
0: अच्छा।
1: और बारिश होने से क्या क्या करना चाहिए वार्निंग में सब बोला जाता है। और अभी अभी May 2 में गवर्नमेंट ने एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, जिस SMS मैसेज से सारे नागरिकों को मैसेज जाते हैं कि
0: अच्छा।
1: किस क्षेत्र में बाढ़ होने आने वाली है, कितनी तेज से बारिश आने वाली है और उसके लिए क्या तैयारी करने वाले, उस कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल सचेत ऐप से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और टाइमली आपको अगर वार्निंग मिल जाए तो आपके लिए जो स्टेप्स लेना है वो कर सकते हैं।
0: बहुत सारे सवाल के बीच में एक जो सवाल है वो मैं अभी छेड़ रही हूँ, टाइम बहुत कम है लेकिन इम्पोर्टेंट लग रहा है। पैंथर तोमर का ही सवाल है, किशनगंज दिल्ली से, इन्होंने लिखा है कि एक आम नागरिक अपने मौजूदा पुराने घर को कम बजट में ग्रीन होम में कैसे बदल सकता है और इस तरह से इसकी मदद से ग्लोबल वार्मिंग कैसे रोक सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में ग्रीन होम्स को के ऊर्जा प्रबंधन को पूरी तरह से नियंत्रित क्या कर सकता है।
1: पहली सवाल तो ये अच्छी बात सुनकर अच्छा लगा कि आपका पुराना घर है। मैं समझ रही हूँ पुराना घर का मतलब है आपके घर में वेंटिलेटर स्काईलाइट है, जो आजकल के अपार्टमेंट्स में नहीं होते हैं, और बड़े बड़े घर, बड़े बड़े दीवार होते हैं, बड़ी ऊंची घर होते हैं, इसीलिए वो हीट ज्यादा नियंत्रण करता है, गर्मी नियंत्रण ज्यादा करती है, वो एक बात। दूसरी बात है, आपको आपकी कूल रूफिंग की जो पैसिव मेथड है कूल रूफिंग की, वो एक पेंट मिलती है, वाइट पेंट जो मिलती है, वाइट पेंट सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर लेती है और उसमें से 3-4 डिग्री अपने घर में कम हो जाता है एंड इट इज नॉट, बहुत सारा पैसा नहीं लगता उसमें, वो दूसरी एक है। तीसरी है, आपके जितने सारे पहले से घर में जो जाली का विंडोज था उसको और इंक्रीज कर सकते हैं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। ये तीसरी पैसिव कूलिंग के है। और फिर आप अगर चाहें तो एक इंजीनियर से बात करके घर को रेट्रोफिट कर सकते हैं, हीट के लिए भी रेट्रोफिट कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी हम लोग ये सब पैसिव कूलिंग मेथड्स कर सके। और फिर उसके बाद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाईली डिपेंडेंट होते हैं डेटा, आप अगर अच्छे से डेटा फीड कर सके तो ग्लोबल लेवल में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मॉडलिंग करके दिखा सकती है कि क्या क्या करना चाहिए कूलिंग के लिए, ग्रीन हाउसेस को कैसे बदलाव लाए। फिर अपने घर में भी आप जो रूफ गार्डनिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रीज रखने से टेम्परेचर कम हो जाती है, तो रूफ गार्डनिंग भी एक प्रयास होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने खुद के वाटर स्कैसिटी को डील करने के लिए भी एक ग्रीनिंग की एक स्टेप होती है। ये स्टेप लेने से आपकी कूलिंग हो जाएगी अपने घर में, 4-5 डिग्री तो कम से कम हो जाएगी
0: जी। हेल्पलाइन नंबर हम बात कर रहे थे, कोई हेल्पलाइन इमरजेंसी में कोई नंबर घुमाना हो,
1: 118 नंबर जो हमारी है सरकारी नंबर थी, 118 सारे स्टेट में, सारे राज्य में, सॉरी इट्स 112 सारे राज्य में, 112 नंबर में यूज करके, इस्तेमाल करके आप हेल्पलाइन में रीच सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी में स्टेट्स में कॉल करने से वे किसी भी डिजास्टर में आपकी वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं।
0: समय बहुत कम है, चलते चलते 2-3 पॉइंट्स में क्या कहना चाहेंगी?
1: बस एक है कि नागरिक को अवेयर करना चाहिए, ये हजार्ड इतनी बढ़ गई है, और ये आधे कारण इसके है कि हम अपने आप को जागरूक नहीं करते, हम रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी नहीं कर सकते, हम प्लांट्स को जितने हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हम हमारे लेवल में बहुत सारे चीज़ है, जैसे प्लास्टिक को अवॉइड करें, बहुत सारी चीज़ हो हम कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को नियंत्रण करने के लिए, और उस सब चीज़ करने से। और मैं आपको भी विनती करूंगी कि आप एक आपदा मित्र बने, वात्रा मित्र बनने से आप भी शामिल हो सकेंगे इस एफर्ट्स के।

0: सरकार की एफर्ट्स में आपको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, आपदा की तहत में कैसे आप सबके सहायता कर सकते हैं, और वो हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात होगी। जब 3 लाख केवल नहीं, हमारी आबादी तो 140 करोड़ है, कम से कम 5 लाख 10 लाख उससे ज़्यादा भी हो सके, जो अपनी स्किल्स अपनी कैपेसिटीज उसी में वॉलंटियर कीजिए, ये सबसे अच्छी बात हो सकती है।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी जानकारी मिल रही है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आपने जिस तरह से बताया कि लोगों में आनी चाहिए, और ज़रूर इसका लाभ लोगों को मिलने वाला है, और बहुत अच्छे से। और इतने सारे सवाल अभी भी रह गए हैं, लेकिन क्या करें, समय की बाउंडेशन है, फिर कभी इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। मिस रीता मिसल, मेंबर NDMA, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो आज हमने बात की आपदा प्रतिरोधी समुदाय नागरिकों की तैयारी की ताकत पर मिस रीता मिसल से, जो कि है मेंबर NDMA में। फिलहाल मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को भी आपको इजाजत देनी होगी, क्योंकि माला आ गई है आशियाना लेकर। अभी चलती हूँ, जल्दी लौट कर आऊंगी। ध्यान रखिए, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

वो कहते हैं ना कि हम जिस बात का एहसास अपने मन में कर लेते हैं ना, वो हमारे साथ साक्षात तौर पर होने लगता है। प्रोग्राम आशियाना की शुरुआत आज इस भीगे भागे गाने के साथ, क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी धूप है कि पसीने छूट रहे हैं, और ऐसे में जब पसीने छूटते हैं ना, तो वो जो नमी वाला एहसास जो पसीने के रूप में आपके शरीर से बाहर आ रहा होता है, वो कहीं ना कहीं आपको इस बात की दुआ मांगने को मजबूर करता है कि हे भगवान, बरसा दे बादल और कुछ शरीर को ठंडक पहुंचा दे। तो इसीलिए ये गाना आपको डेडिकेट किया आज मैंने, ताकि आपको कुछ कुछ ठंडक का एहसास हो, और क्या पता बारिश भी हो जाए। आज प्रोग्राम आशियाना में आज हम बात करेंगे उन फैमिली रिलेटेड इश्यूज को लेकर जो अक्सर हमारे सामने आते हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम पेरेंटिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करें, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को लेकर हम इतने सेंसिटिव, इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि कई बार बहुत ज़रूरी काम करना भी भूल जाते हैं। कौन से हैं वो ज़रूरी काम, और क्या है वो ज़रूरी टिप्स जो आपको ध्यान रखना है अपनी एक बेहतरीन पेरेंटिंग को सक्सेसफुल रूप में समाज के सामने लाने के लिए, आपको बताऊंगी। मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला, और आप सुन रहे हैं मुझे आकाशवाणी रेनबो पर।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर,
7: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
8: पता का चाय, गजब का स्वाद।
9: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
10: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
9: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
11: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: 90। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं मेरे यानी मस्त मस्त आरजे माला के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। जरा याद कीजिए आज से 25, 30 या फिर 35 साल पहले की बात, जब हम बच्चे हुआ करते थे या जब हम अपने सामने बच्चों को देखा करते थे, अपने साथ के लोगों के साथ अपने बच्चों को हम इस तरह से जब ढूंढते हैं, देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उस ज़माने के बच्चे और इस ज़माने के बच्चों में बहुत फ़र्क है। और ये फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम ये सोच लेते हैं कि फ़र्क है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर है, क्यों है और उसमें किस तरह के बदलावों की ज़रूरत है, इसके बारे में या तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सोच नहीं पाते या फिर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस ज़माने में हम बच्चे हुआ करते थे, उस ज़माने में हमें ये कहा जाता था कि पढ़ाई पर ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई करो और उसके अलावा बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है लेकिन सब कुछ नहीं है, क्योंकि स्किल्स के बिना आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में अब एक कदम भी नहीं सोच सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, तो यानी कि आपके पास कोई ऐसा सेकेंडरी करियर नहीं है जिसको लेकर आप सोच सकें कि आपका फ्यूचर किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। परेशानियाँ, स्ट्रगल्स हर प्रोफेशन में है, हर जगह है, हर किसी की लाइफ में है। लेकिन जब हम स्ट्रगल करते हैं तो क्या उस समय हम अपना प्लान बी पहले से सोच कर रखते हैं, या जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब सोचते हैं कि अब प्लान बी क्या है? तो मेरा तो कहना यह है, अगर हम बात करते हैं स्किल्स के बारे में, पढ़ाई के साथ साथ वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उन स्किल्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनसे ये कहा जाए कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर आप घर पर हैं तो आप कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे आपके बॉडी में भी फ्रेशनेस रहे, स्फूर्ति रहे, और साथ ही साथ आपका माइंड पढ़ाई से हटके बाकी चीज़ों को लेकर, समाज व्यवस्था को लेकर, समाज में चल रही चीज़ों को लेकर, या समाज में रहने वाले, मेंटेन होने वाले एटिकेट्स के बारे में भी आप जाने, सीखें और उनके लिए कोशिश करें। घर पर अगर आपके मेहमान कोई आ रहा है तो अपने बच्चों को आप ये सलाह ज़रूर दीजिए, उनसे ये करवाइए कि जो भी घर में गेस्ट आता है उनको पानी पिलाने का काम आपका है। घर पर जो भी गेस्ट आते हैं उनसे बात कीजिए, न सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगे रहें बल्कि आपको उनको भी एंटरटेन करना है, उनको भी समय देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम समाज में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने अपनों के बीच में अपना समय उनको देते हैं तो हमें समाज में बातचीत करनी आती है, हमें समाज में उठना बैठना आता है। और आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में एक अकेला इंसान सिर्फ अपनी आर्ट को लेकर तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर समाज में उसे छोड़ा जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल है किसी से सिर्फ बात कर पाना भी। तो ये जो बातचीत का गुण है ना, ये गुण अगर हम बच्चों को अभी से नहीं देंगे तो शायद उनके लिए मुश्किल होगा आगे समाज में अपनी चीज़ों को सामने लेकर आ पाना। और साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सिर्फ ये सीख अब ना दी जाए कि सिर्फ पढ़ाई करो और उसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ और इम्पॉर्टेंट नहीं है। सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ करिए, सब कुछ पर अपना ध्यान दीजिए, और वो ज़रूरी काम जो आपको लगता है कि बच्चों के एटिकेट्स का एक हिस्सा है, वो उसकी जो ट्रेनिंग है वो अभी से देना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं सिखाया तो उसके बाद वो सीख नहीं पाएंगे और आप उन्हें सिखा भी नहीं पाएंगे। कार्यक्रम चल रहा है आशियाना, मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला।

आजकल बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ये कहते हैं कि बच्चे जब देखो मोबाइल फोन पे ही लगे रहते हैं। मोबाइल फोन ही उनका जीवन हो चुका है। कोई भी काम करवाना है मोबाइल हाथ में पकड़ा दो और आपका काम हो जाएगा। जैसे कि अगर बहुत छोटा बच्चा है, उसको खाना खिलाना है, तो हम उसको मोबाइल दे देते हैं, वो मोबाइल देखते देखते खाना खाता रहता है। लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि जब बच्चे का ध्यान खाने पर है ही नहीं, उसका ध्यान उसके हाथ में रखे हुए फोन पर है, तो जिस चीज पर आप ध्यान ही नहीं देते उस चीज का क्या हश्र होता है वो भी आप जानते हैं। तो ये बताने वाली बात नहीं है, ये बहुत क्लियर है कि अगर बच्चा खाना खाते हुए खाने पर ध्यान नहीं दे रहा है, यानी कि वो खाना उसके शरीर को नहीं लग रहा है, यानी कि वो जरूरी पोषण, वो जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चे की बॉडी को चाहिए, वो खाना खाने के बावजूद भी उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम डिजिटल डिटॉक्स की बात जरूर करते हैं, लेकिन डिजिटल डिटॉक्स को लेकर करते क्या है? तो अगर यहां पर एक छोटी सी टिप देनी हो तो मैं यही कह सकती हूं आपको कि कुछ समय आप बच्चे का दिन भर में, आपको लगता है कि आप खुद इतने बिजी हैं कि आप बच्चे को कैसे डिजिटल डिटॉक्स के लिए आप प्रेरित करेंगे, आप अपने बच्चे को अपनी लाइफ का एक दिन का सिर्फ एक घंटा आप दीजिए और उस समय में आप उसके साथ बैठिए और उससे फोन की कोई बात नहीं, फोन आपके और उसकी नजरों के सामने होना ही नहीं चाहिए। पर्सनल वन टू वन टॉक, कुछ भी, किसी भी बारे में आप बात कर रहे हैं, आप उसके साथ खेल रहे हैं या आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं या कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका और उसका न सिर्फ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है बल्कि आप डिजिटल डिटॉक्स की तरफ एक स्टेप फर्दर प्रोसीड कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे आप इस टाइम को बढ़ाते जाइए और धीरे धीरे आपको ये लगेगा कि विदाउट आपकी प्रेजेंस भी बच्चा मोबाइल छोड़ने लगा है और यहीं से शुरुआत होती है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की। अब ये टर्म जो है सुनने में थोड़ी सी नई लगती है, लेकिन अगर आप इसकी तरफ थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपको लगेगा कि इसका कुछ ना कुछ असर जो है वो बच्चे के ऊपर हो रहा है। लेकिन ये तो बात है छोटे बच्चे की, एक बड़े बच्चे के साथ आप ये कैसे कर सकते हैं? उस बड़े बच्चे के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर आप बच्चे के साथ किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, बच्चा अगर इतना समझदार है कि वो किसी मुद्दे पर आपसे बात कर सकता है जो कि उसके इंटरेस्ट का है, तो आप बात कीजिए और उस समय आप फोन की लत से उसको बिल्कुल दूर रखिए और धीरे धीरे जो भी हमने छोटे बच्चे के लिए कंडीशन एक घंटे की रखी है वो बड़े बच्चों के साथ आप 2 से 2.5 घंटे की रखिए और उसके बाद कोशिश कीजिए कि उसके फ्रेंड्स के साथ भी आपका इंटरेक्शन हो, ताकि जब आप फ्रेंड्स के साथ, बच्चे के फ्रेंड्स के साथ आप भी बैठ के बात करते हैं तो सबको मजा आता है और धीरे धीरे बच्चे आपकी कंपनी को इंजॉय करते हैं। तो इससे न सिर्फ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा बल्कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ भी आपका एक स्टेप जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: समय हो चुका है 2:29। कार्यक्रम आशियाना में आज के लिए बस इतना ही। होगी आपसे दोबारा मुलाकात। आऊंगी 4 से 5 तक रहूंगी आपके साथ, लेकर आऊंगी प्रोग्राम अल्फा जेन। लेकिन अभी समय है प्रायोजित कार्यक्रम का।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
3: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट ना हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
3: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
3: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।

0: है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
0: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
0: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर भारत के किस गांव में पड़ता है?
0: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
0: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
0: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया सी आई

0: कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
1: जी
2: प्यारे बच्चों नमस्ते, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: से हमारे वो श्रोता जिन जो आपकी बात सुन रहे हैं वो समझे कि डरना नहीं है, हमें बस इस चीज को समझना है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो भी हम बात करेंगे क्या सिम्टम्स होते हैं, पर पहले हम ये समझ लें कि क्या, जैसे आपने कहा कुछ ऐसे प्रकार हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, तो क्या क्या प्रकार हो सकते हैं?
1: जी, ब्रेन ट्यूमर्स का अगर हम क्लासिफाई करने जाएंगे तो वो तो एक अपने आप में एक पूरा बहुत बड़ा चैप्टर होता है। बट मोटा मोटा देखेंगे तो ब्रेन ट्यूमर्स में जो ब्रेन में आपके सेल्स होते हैं, तो डिफरेंट जैसे ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं, इनके सेल से जो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है जो कि कंट्रोल में नहीं होता है, तो ये एक तरह का ट्यूमर होता है। कुछ ट्यूमर्स वो होते हैं ब्रेन में जो शरीर में कहीं और ट्यूमर होता है जो कि फैल के ब्रेन में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूमर, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। वो ये दो तरीके के मोटा मोटा ट्यूमर्स होते हैं। तो कुछ ट्यूमर्स इसमें से ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेनिन्ज्योमास होते हैं, जिनको अगर हम पूरा तरह से निकाल देते हैं तो पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है और अपनी जिंदगी जैसे बगैर ट्यूमर के लोग जीते हैं वो वैसे ही जीता है। तो मैं फिर से वही कहूंगा कि ट्यूमर का इलाज कराइए, उससे डरिए मत, इलाज
0: जी,
1: संभव है।
0: और बहुत सारे जो प्रश्न होंगे वो आप सबके दिमाग में भी घूम रहे होंगे कि ये क्यों ना पूछ लिया जाए डॉक्टर साहब से, तो बिल्कुल स्वागत है। और हमारे बहुत सारे श्रोता भी जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर भी हमारे साथ हमारे कॉलर्स हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, हेलो।
2: हेलो, नमस्ते शालिनी
0: जी
2: जी।
0: जी नमस्ते मिसेस बेदी, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं
2: शालिनी,
0: आप?
2: वैसे आपके प्रोग्राम में कि हम चिपके ही रहते
0: ये आप ही के शब्द हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप चिपकी रहती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रहें।
2: मैं अपनी योगा क्लास का टाइम बदल रही हूँ कि मेरा ये प्रोग्राम मिस हो जाता है।
0: हाँ, पर योगा क्लास रखिए जरूर, क्योंकि बहुत
2: नहीं
0: सारे
2: नहीं
0: लोगों
2: नहीं
0: को
2: नहीं
0: आप
2: वो तो
0: लाभान्वित कर रही हैं।
2: 2500 साल है मेरे को।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए आज का जो
2: और
0: विषय
2: डॉक्टर
0: है।
2: साहब को बहुत नमस्कार।
1: नमस्कार
2: डॉक्टर
1: जी।
2: साहब बहुत नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक तो मैं जानना चाहती हूँ, कुछ वार्निंग सिग्नल आते हैं हमें? दूसरी बात कि मेरी नीस है, उसको कई बार सिर में बहुत दर्द उठता है, वो माइग्रेन भी नहीं निकला, उसको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए कि पता लगे कि क्यों दर्द उठती है?
1: देखिए, सर दर्द के कारण बहुत सारे होते हैं, उसमें से ट्यूमर भी एक कारण होता है। बट हर ट्यूमर सर दर्द, मतलब ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो ब्रेन ट्यूमर है। और माइग्रेन जहां तक है कि जी, जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं माइग्रेन में, जनरली वो टेस्ट सब नॉर्मल ही आते हैं। माइग्रेन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है जो कि डॉक्टर बनाता है। और सर दर्द का कारण क्या है उसके लिए तो आपको बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि क्या क्या आप टेस्ट करा सकते हैं और इसका कैसे इलाज संभव है।
2: और
1: जी,
2: डॉक्टर साहब कोई वार्निंग सिग्नल होते हैं?
1: वार्निंग सिग्नल तो देखिए ऐसे तो नहीं होते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये है तो आपको ट्यूमर हो
2: जी
1: सकता है। बट ये है कि हाँ, ट्यूमर के कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं बट आपके ऐसी लोकेशन पे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जहाँ बोलने का सेंटर होता है, जहाँ आपको चीजों को समझने का सेंटर होता है, तो वो छोटा सा ट्यूमर सिम्टम प्रोड्यूस करेगा तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो काफी बड़े हो जाते हैं और आपको मेजर सिम्टम नहीं आएंगे तो फिर आप डॉक्टर, आपको लगता है मेरा ऐसे ही सर में दर्द हो रहा है, या ठीक है आदमी इग्नोर कर देता है, बट बाद में जब आप स्कैन कराते हो पता चलता है कि आपके ब्रेन में बहुत बड़ा ट्यूमर है। तो डिपेंडिंग
2: ठीक।
1: अपॉन कि कौन सी लोकेशन पे है उस पे आपके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं।
2: थैंक यू सो
0: बहुत
2: मच
0: बहुत
2: डॉक्टर।
0: धन्यवाद मिसेस
1: थैंक यू।
0: बेदी कॉल करने के लिए और ये प्रश्न पूछने के लिए जो हम सबके दिमाग में थे। डॉक्टर साहब, आपने बोला बहुत एविडेंट सिम्टम्स नहीं है, तो किस तरह से, जैसे मिसेस बेदी ने भी जानना चाहे, कब वो सचेत होने की जरूरत है? क्योंकि सिर दर्द एक बहुत बहुत ही कॉमन सी समस्या है कि आए दिन होती है और बहुत कैजुअली भी हम उसको ले लेते हैं, तो वेन
1: देखिए
0: इट बिकम्स अ वार्निंग साइन।
1: देखिए सर दर्द के 90% केसेस में तो मैं बोलूंगा कि ऐसा कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है जिस कारण सर दर्द होता है। अमूमन टेंशन हेडेक्स होते हैं, क्लस्टर हेडेक्स होते हैं, आपको माइग्रेन होता है आपको, ये एक अपने आप में बीमारियां जरूर है बट ये ट्यूमर के कारण है, जनरली इस टाइप के हेडेक्स नहीं होते हैं। बट आप ये मान के चलिए कि आपका बहुत लंबा सर दर्द रहता है, सर दर्द के साथ कई बार उल्टियां होती हैं, इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं कि उल्टियों के साथ आपको सर दर्द में आराम पड़ेगा, और भी बहुत एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर होता है, दिमाग का प्रेशर जब बढ़ता है ट्यूमर के कारण, तो उसके कारण भी और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। अगर वो सारी चीजें अगर आप में डेवलप हो रही हैं तो आपको सचेत रहना पड़ेगा कि कहीं आपके ब्रेन में कुछ है तो नहीं।
0: जी, एक और हमारे कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो।
3: पहले तो शालिनी मैम को बेहद शालीनता से ही नमस्कार।
0: जी, नमस्कार।
3: और डॉक्टर साहब को भी लगे हाथों नमस्कार।
1: धन्यवाद जी, नमस्कार आपको भी।
3: सर, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा से।
0: जी राजेंद्र जी, समस्या क्या है, आप प्रश्न पूछ लीजिए।
3: पहला सवाल तो है कि अगर मान लीजिए किसी को पता चल जाए या मालूम हो जाए कि ट्यूमर है, तो अगर आपकी

0: आए तो उसका इलाज आप मेडिसिन से ही कर लेते हैं या सर्जरी ही करनी पड़ती है? पहला सवाल तो मेरा ये है, और दूसरा सवाल ये है कि मुझे अतीत में सिर में जो है ट्रिगर जिला में बॉल लगी और मेरी बाएं कान के नीचे गिल्टी भी है, तो ये कुछ अगर अतीत में सिर में चोटें लगी हो तो क्या उससे भी प्रेजेंट एट प्रेजेंट जो है सिर में ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं? स्लीप एपनिया और स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो मेरे सिर में दर्द तो खैर नहीं है सर, हाँ। तो मुझे मानसिक थकावट जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे लोग आधा एक घंटा काम करते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, चाय वाय पीते हैं, ठंडा खाने पीते हैं,
1: जी जी जी,
0: तो मेरे को शोर शराबा जो है ना और हो हल्ला वो और जो है ये प्रदूषण की जो होते हैं ये मुझे बर्दाश्त नहीं होते, मुझे गुस्सा जो है जल्दी आ रहा, दिमाग मेरा गर्म जल्दी।
1: जी जी राजेंद्र जी, हमने सब आपके प्रश्न नोट कर लिए हैं, एक एक करके डॉक्टर साहब से पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए जी। डॉक्टर साहब, मेडिसिन या सर्जरी ही इलाज है ये जानना सबसे पहला इनका ये प्रश्न था राजेंद्र जी का, कि इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। वैसे ये मेरा क्वेश्चन भी था ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे बात करने में।
2: ट्यूमर्स के लिए मैं जहां तक आपको बात करूंगा कि एस सच मेडिसिन तो अवेलेबल नहीं है, मैं जो आपको बोलूंगा कि जो आप मेडिसिन खाइए और आपका ट्यूमर चला जाएगा, बट हाँ मेडिसिन के अलावा और भी बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, ये कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो रेडिएशन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत जब साइज में छोटा होता है तो वो रेडिएशन से रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे ट्यूमर आपका जा सकता है, बट काफी मेजोरिटी ऑफ जो ट्यूमर जो होते हैं उसमें सर्जरी आपको करानी पड़ सकती है
1: जी। और मेडिसिन कोई नहीं है?
2: मेडिसिन बेसिकली सपोर्टिव मेडिसिन होती है कि अगर आपको ट्यूमर के कारण मिर्गी के दौरे आ रहे हैं तो आप उसके लिए दवाई देते हैं, या ट्यूमर के कारण आपके ब्रेन का प्रेशर बढ़ रहा है या इसमें सूजन आ रही है तो आप उसकी दवाई देते हैं,
1: सिम्टोमेटिक ही होता है।
2: बट कुछ मेडिसिन आजकल ये आई है कि मतलब रिकरेंस होता है ट्यूमर का, मतलब ट्यूमर को आपने निकाल दिया दोबारा ना हो इसको डिले करने के लिए कुछ आजकल मेडिसिन निश्चित तौर से आती है, बट एज सच मेडिकेशन ऐसे कोई नहीं है कि मैं आपको ये दे दूं कि आपको ये ट्यूमर है तो आपको ट्यूमर चला जाएगा।
1: जी जी, और ये डॉक्टर ही बता पाएगा कि क्या करना है,
2: क्या इलाज है, वो डॉक्टर से ही संपर्क करना है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये इन्होंने एक प्रश्न किया था कि कभी बचपन में या लंबे समय पहले चोट लग गई हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो कारण बन जाए?
2: नहीं, अमूमन ये ऐसा नहीं होता है कि चोट का कारण से आपको ट्यूमर हो, ऐसा संभव नहीं है।
1: तो क्या कारण होता है फिर, एक्चुअल रीजन क्या है?
2: ट्यूमर्स के आज तक देखिए कारण तो स्पेसिफिकली पता नहीं चल पाए हैं, बट कुछ मैं बोलूंगा कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं कि जिन पेशेंट्स में देखा गया है कि जिनको ट्यूमर हुआ है, जैसे आप रेडिएशन एक्सपोजर आपका अगर बहुत ज्यादा होता है तो उसमें उन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि उनको ट्यूमर डेवलप हो। दूसरा जेनेटिक बहुत बड़ा फैक्ट, कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो जेनेटिक होते हैं कि आपके पुश्तों में किसी को ट्यूमर हो, जीन्स में कुछ खराबी हो, इस कारण आपको ट्यूमर हो सकता है। तीसरा होता है जो कि आपके शरीर में कहीं और ट्यूमर हो वो फैल के आपके दिमाग में आ जाए, तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे ब्रेन ट्यूमर होते हैं, बट एज सच स्पेसिफिक क्या कारण है ये अभी तक नहीं पता चले।
1: जी, और कान के नीचे अगर गिल्टी है जैसे उन्होंने कहा है तो उसका भी चेकअप कराना जरूरी है?
2: जी बिल्कुल, अगर आपको एक लॉन्ग स्टैंडिंग आपको कुछ लग रहा है कि कुछ सूजन है कान के नीचे हड्डी में कुछ है तो एक बार डॉक्टर को निश्चय
1: दिखा लीजिए। और थकावट और स्लीप डिसऑर्डर्स ये भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं क्या?
2: देखिए अगर कुछ हिस्से के ट्यूमर्स होते हैं जिसमें नो डाउट ये सब चीजें होती है, बट जैसे इनकी बातों से मुझे लग रहा है कि इट्स मोर ऑफ साइकोलॉजिकल, इनको थोड़ा सा है, इनको एक साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट करिए और ठीक हो जाएगा इनका।
1: तो चलिए, सारे प्रश्न जितने आपने अभी पूछे थे हमने ले लिए राजेंद्र जी, और उम्मीद है आपको जवाब मिल गए। हमारे एक और कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो
3: हेलो
1: जी,
3: प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शालिनी मित्तल जी को और गोविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
1: जी चट्ठा जी, आप अपना प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय हमारे साथ हैं।
3: डॉक्टर राहुल को भी मेरा सादर प्रणाम।
2: जी नमस्कार जी।
3: डॉक्टर साहब, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है
2: जी,
3: उनको ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा हो सकता है? नंबर टू, अगर किसी को डिटेक्ट हो जाए तो उसको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? नंबर तीन, ये ब्रेन ट्यूमर कभी कैंसर का रूप भी ले सकता है? कृपया बताने का कष्ट करें, धन्यवाद।
2: देखिए ब्लड प्रेशर से ट्यूमर का तो ऐसा कोई सीधा लेना देना नहीं है, बट मैं आपको ये कहूंगा कि ब्लड प्रेशर से दूसरी बहुत कॉमन बीमारी होती है जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा हो रहा है तो ब्रेन हेमरेज का रिस्क जरूर बढ़ जाता है, तो मेरी यही सलाह है कि ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल में रखिए, डॉक्टर को दिखाइए और जो भी वो सलाह देते हैं उसको फॉलो करिए। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं ब्रेन में कि जो आपको आप निकाल देते हैं बट वो पूरी तरीके से नहीं जाते हैं, वो उसमें रिकरेंस होता ही होता है, तो उसका कुछ ऐसा इलाज नहीं होता है। आप लाइफ स्पैन आपका बढ़ जाएगा बट क्योर नहीं होता उसमें, कुछ ट्यूमर निश्चय ऐसे भी होते हैं ब्रेन में आपके।
1: और ट्यूमर जैसे कैंसर की बात करते हैं तो ट्यूमर भी मैलिग्नेंट नॉन मैलिग्नेंट कैटेगरीज में होते हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, ब्रेन में भी ऐसा ही होता है कि कुछ ट्यूमर

0: होते हैं कि जो कि बिनाइन होते हैं, आपने इसको एक बार निकाल दिया, आप नॉर्मल हो गए हैं, आप नॉर्मल जिंदगी जिएंगे अपनी। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसमें आप सर्जरी भी करा लेते हैं, रेडिएशन भी करा लेते हैं, आपकी लाइफ स्पैन तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट वो रिकरेंस होता ही है उन ट्यूमर्स में। तो
1: जी
0: या फिर जो आपके शरीर में कहीं और से ट्यूमर जो आते हैं, वो थोड़ा सा खराब ग्रेड में समझा जाता है, उसका भी इलाज होता है, बट वो पूरी तरीके से क्योर संभव नहीं होता उनका।
1: तो ये आप बता रहे हैं कि रिकरेंस काफी होता है, तो
0: डिपेंडिंग अपॉन ट्यूमर का क्लास क्या है, उस
1: अच्छा
0: पर कुछ ट्यूमर में रिकरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ ट्यूमर्स में निश्चित तौर पर रिकरेंस होता है, कुछ ट्यूमर ऐसे भी होते हैं कि डिपेंड कि आपको किस लोकेशन पर ट्यूमर है, आप अगर उसको हम पूरा नहीं निकाल पाते हैं तो उसमें रिकरेंस का चांस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर पूरा निकालने जाएंगे तो क्षति ज्यादा हो जाएगी आपको, उसमें थोड़ा रिकरेंस का चांस निश्चय होता है।
1: और डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सर्जरी ज्यादातर की जाती है क्योंकि आप उसको रिमूव करते हैं और फिर टेस्ट करते होंगे कि मैलिग्नेंसी है कि नहीं है। कितना सक्सेस रेट है? बिकॉज पीपल आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ दिस टाइप ऑफ
0: देखिए,
1: ऑपरेशंस।
0: परसेंटेज में क्लासिफाई करना तो मुश्किल है, बट
1: अच्छा
0: मैं आपको ये बोलूंगा कि सर्जरी एज सच में अगर आप जाएंगे, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ कि 90-95% जो पेशेंट्स होते हैं सर्जरी सक्सेसफुल होती है, क्योर नहीं होता, हो सकता है ट्यूमर का आपका, बट ऐसा नहीं होगा कि आपने सर्जरी कराई और आपको वेंटिलेटर पर चले गए या आपकी मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं होता। तो इलाज जरूर कराएं, और किस टाइप का ट्यूमर है इस पर आपका इलाज और इस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आपको कितना मतलब सही रहेंगे आप।
1: जी जी बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य यही है कि आज जो भी प्रश्न ब्रेन ट्यूमर से संबंधित आप जानना चाहें, जिनका समाधान आप जानना चाहें, वो इस कार्यक्रम से आपको मिल जाए। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, आप रेडियो डॉक्टर में हैं एफएम रेनबो पर। हेलो
2: नमस्कार जी। सर
1: जी, नमस्कार।
2: को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
2: सर मैं यामिन भाई, रेडियो वाला, किरोड़ी लोनी जिला।
1: जी यामिन भाई, प्रश्न करें,
2: सर
1: डॉक्टर साहब सुन रहे
2: मैं
1: हैं।
2: सर से ये जानना चाह रहा था, जैसे कि दिमाग में ट्यूमर हो जाता है सर के अंदर, तो उसको निकलवा देते हैं, जैसे ऑपरेशन करके निकाल देते
1: जी,
2: हैं,
1: बिल्कुल। हाँ
2: उसके बाद शरीर में क्या चेंजिंग आ जाती है, जैसे कि आवाज भी चली जाती है या हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं, ऐसा भी हो जाता है कि हमारे रिलेटिव को ऐसा हो चुका है।
0: देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका ट्यूमर की लोकेशन क्या है। अगर आपका ट्यूमर उस हिस्से के पास में है जिसे आपके बोलने का कंट्रोल होता है आपके दिमाग में, या ट्यूमर उस हिस्से में है जिसमें आपका हाथ पैर का कंट्रोल होता है, तो निश्चय तौर पे कभी ऐसा होता है कि आप सर्जरी कराते हैं तो ये सब चीजों में आपको आज जैसा बता रहे कि आवाज चली जाना, हाथ पैर में कंट्रोल आना, बट आज की डेट में जो टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस हो गई है कि इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं कि आप अगर उस सर्जरी में अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो इन सब चीजों की संभावना होने की मैं जीरो तो नहीं बोलूंगा, बट काफी कम हो जाती है। आप पहले से पता चलता है कि आपका बोलने का सेंटर है, ट्यूमर से कितना दूर है, तो आपको कितने दूर तक जाना है, ये सब आप सर्जरी से पहले प्लान कर सकते हो आप।
1: और अगर सर्जरी सक्सेसफुल होती है तो क्या ये जो चीजें बॉडी में इफेक्ट कर चुकी हैं ये वापस ठीक हो जाती हैं?
0: कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैडम ठीक हो जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक बार खराब हो गई तो
1: हो
0: फिर
1: गई
0: वो
1: तो
0: खराब रहेगी।
1: जो कोई नर्व्स रिलेटेड चीजें हैं वो
0: जी
1: ठीक
0: जी
1: नहीं हो
0: जी
1: पाती हैं।
0: जी
1: एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और फिर हम लौटेंगे और बात करेंगे डॉक्टर राहुल वाशने से।
3: हाँ।

0: जी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आइए बात करते हैं हमारे एक और कॉलर से। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार,
1: डॉक्टर सर को भी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
0: जी नाम बताइए अपना।
1: मेघा राणा।
0: मेघा जी, जी बताएं क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से।
1: ये है कि मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको राइट साइड में सर में दर्द होता है, उसी के साथ साथ राइट आई में भी होता है,
0: राइट थाई में और राइट साइड ऑफ द हेड होता है। जी
1: पहला तो ये, दूसरा ये कि ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को हो गया तो आंखों पे उसका कोई असर पड़ता है आई साइड में।
0: अच्छा ठीक है, आपके प्रश्न हम डॉक्टर साहब ने सुन लिए हैं। जी
2: देखिए, ब्रेन ट्यूमर अमूमन मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा कि दो तरीके, अगर मान लो आंखों की नस का ट्यूमर है, ठीक है ना, तब तो आपकी आंखों पे निश्चय तौर पे असर पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि आपकी ये ट्यूमर अगर दिमाग में कहीं पे भी है तो वो आपका जो एक दिमाग होता है, दिमाग में तीन चीजें होती हैं, एक खून होता है, एक दिमाग होता है और एक दिमाग में पानी होता है जिसको हम CSF बोलते हैं। तो एक ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो एकदम कांस्टेंट रहता है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। जैसे कि अगर आपका दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है तो दिमाग अपने जगह से हिल जाता है, सरक जाता है, जिसको हम हर्निएशन बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर आपके दिमाग में कोई ट्यूमर हुआ तो वो उसने एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया तो आपका जो ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है, ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है तो सबसे जो ज्यादा इफेक्ट होती है वो आपकी देखने की नस इफेक्ट होती है, तो उसमें भी आपकी रोशनी जा सकती है। तो या तो रोशनी के नस का ट्यूमर हो या ब्रेन का प्रेशर बढ़े, दोनों चीजों में आपका इफेक्ट हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हर ट्यूमर में आपका आंखों की रोशनी में इफेक्ट आए। डॉक्टर को ही दिखा के वही डायग्नोस कर पाएगा कि आपको क्या हो सकता है।
0: जी, और बहुत सारी आपकी जो जिज्ञासा है वो उस कार्यक्रम में हम कवर करेंगे, तो आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहिए। 4 बजे तक इस कार्यक्रम को हम आप सुन सकेंगे रेडियो डॉक्टर को, जैसे प्रतिदिन सुनते हैं। और एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और लौट कर आएंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम आज बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर से जुड़ी हुई जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली हमारे साथ स्टूडियो में। हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौटेंगे। आप हमें इसी तरह से फोन करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। व्हाट्सएप के माध्यम से भी बहुत सारे प्रश्न

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और रेडियो डॉक्टर में आज का विषय है ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क ट्यूमर पर बात हो रही है। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय, प्रोफेसर इन हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने काफी बातें की, हमारे काफी सारे श्रोता कॉलर्स हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर अपनी अपनी समस्या के साथ, तो बहुत सारे मैसेज भी आ चुके हैं, तो मैं एक एक करके ये मैसेज भी लेना चाहूंगी। ये पहला जो मैसेज हमको लिखकर भेजा है, ये लिखा है रिया ने हरिद्वार से, और लिख रहे हैं कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ ब्रेन ट्यूमर एंड क्या कुछ खाने पीने से भी हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो जाए। जैसे स्पेसिफिकली इन्होंने कहा है कि कभी कभी कहा जाता है कि कैबेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे ट्यूमर हो सकता है, और अगर ये सच है तो हम कैसे इसको अवॉइड करें और कैसे डिटेक्ट करें, क्या ये सच है?
2: कॉजेस तो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, दोबारा बताऊंगा कि ऐसे कॉजेस तो ब्रेन ट्यूमर के अभी तक नहीं पता चले हैं, बट कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे रेडिएशन एक्सपोजर आप में ज्यादा हो, जेनेटिक अगर आप मतलब कुछ ट्यूमर्स होते हैं तो जिनमें जेनेटिक बहुत पेरेंट्स में ट्यूमर है या जेनेटिक आई मीन कुछ आपका डिरेंजमेंट हो जाता है, इस चक्कर में ट्यूमर हो सकते हैं, बाकी कॉजेज ऐसे नहीं हो। जहां तक कैबेज की बात है तो मेरी जानकारी में तो ऐसे नहीं है, बट हाँ जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उनको भी उसमें से भी माना गया है कि कुछ कुछ जो हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं वो ट्यूमर के कारण हो सकते हैं।
1: जी, और विक्रम सिंह हमसे पूछ रहे हैं जम्मू से, रेडियो परिवार को नमस्कार, मैं ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करा चुका हूं 2017 में, और पहले मुझे एक साल में एक ही सीजर आता था, अब 3-4 बार सीजर आता है, दवाई मैं खा रहा हूं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? दवाई तो इन्होंने लिखी है पर दवाई का हम नाम यहाँ नहीं ले रहे हैं, पर इनको नंबर ऑफ सीजर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है।
2: देखिए, जो भी आपको सीजर्स आ रहे हैं पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आपका ये जो ऑपरेशन है ये किस ट्यूमर के लिए हुआ था, और दूसरा ये है कि कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिसमें जैसे मैंने पहले भी कहा था रिकरेंस का चांसेस होता है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका आपको स्कैन कराना पड़ सकता है। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि एक बार आप डॉक्टर को दिखाइए जिन्होंने आपको ऑपरेशन किया था, दोबारा से स्कैन कराइए, अगर कुछ रिकरेंस होगा तो उसका इलाज होगा, और नहीं तो कई बार ऐसा होता है तो आप दवाइयाँ खा सकते हैं, इसकी दवाइयाँ लंबी चलती हैं सीजर्स की, तो उसको खाइए और सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इनको दोबारा से जाना चाहिए चेकअप कराने, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे एक बार ब्रेन ट्यूमर का इलाज शुरू हो गया या जो भी सर्जरी है हो गई, तो कितना फॉलो अप टाइम रहता है, कितनी बार जाना पड़ता है उसके बाद?
2: नहीं, फॉलो अप तो आपको फिर मैं कहूंगा कि डिपेंडिंग अपॉन किस ट्यूमर की आपकी सर्जरी हुई थी, वो आपको फॉलो अप कब आना है और कितने दिनों बाद आना है, ये जो आपका रिस्पेक्टिव डॉक्टर है वही बेहतर बता पाएंगे कि हर ट्यूमर का अपना फॉलो अप होता है। या आप में कुछ, मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कुछ भी अबनॉर्मल महसूस होता है जो आपके नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा हट के है, तो एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट दोबारा जरूर करिए आप।
1: जी, और श्याम मित्तल जानना चाह रहे हैं, रोहिणी में रहते हैं, 74 एज है, कि डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए अलग अलग प्रकार के सीजर्स के बीच में, जैसे एपिलेप्सी का है या लो शुगर के कारण हो गया है कि ट्यूमर के कारण है?
2: सीजर का कारण क्या हो सकता है यह तो आपको एक डॉक्टर ही बेहतर बताएगा, बट सीजर्स हाँ बहुत तरह के सीजर्स होते हैं भाई, ट्यूमर के कारण भी आपको सीजर आ सकते हैं और कुछ मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज होती है उसके कारण भी सीजर आ सकते हैं, बट कारण क्या है ये तो आप डिस्टिंग्विश, आपसे बेहतर मैं आपको बोलूंगा डॉक्टर को दिखाइए, वही कारण पकड़ेगा कि आपको सीजर्स क्यों आ रहे हैं। कुछ में ट्यूमर हो सकता है, कुछ में एपिलेप्सी इसको अपन बोलते हैं, सीजर वैसे ही आते हैं, वो डॉक्टर का डायग्नोसिस है, आप उनको दिखाइए जाके।
1: जी जी, और एक हमारे साथ इस समय कॉलर भी जुड़ गए हैं। हेलो
3: हेलो
1: हेलो जी,
3: हाँ नमस्कार सर।
1: जी
3: आपको
1: नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी
3: सर, क्वेश्चन है कि 2014 से ये ट्राइजमिनल न्यूरोलॉजिया है ये सिर में, अब ये दवाई इतनी हार्ड दे रहे हैं कि चक्कर आने लग जाते हैं।
1: जी जी जी,
2: देखिए ट्राइजमिनल न्यूरोलॉजिया का जो पहला ट्रीटमेंट तो दवाइयों से ज्यादा कंट्रोल हो, बट अगर नहीं होता है तो बहुत सारे इलाज होते हैं।
3: नहीं हो रही सर,
2: तो जैसे आपको बताया रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन होता है, वह उससे भी काफी कंट्रोल हो सकता है। आपकी जो नस होती है जो ट्राइजमिनल नर्व, उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उससे भी दर्द में आराम पड़ सकता है, और किसी किसी केस में आपको सर्जरी भी करनी पड़ सकती है आपको।
1: जी
3: तो वो 78 एज है, 78 ईयर तो बोलने इस एज में नहीं करते हैं।
2: तो आप रेडियो फ्रिक्वेंसी एक बार ट्राई करिए।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ने बता दिया।
2: देखिए आज की डेट में ऐसा तो कोई भी चिकित्सा नहीं है जिसको आप बोलोगे 100% सेफ होगा, बट हाँ

0: रिस्क कम होता है इसमें।
1: चलिए डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, आप कुछ ऐसा गाइड कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप ऐसा फॉलो करें। यहां पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और आपके जो प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं उनको भी शामिल करेंगे, आपके फोन कॉल्स को भी शामिल करेंगे। तो आप इसी तरह से रेडियो रॉक के साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम जो हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन FM रेनबो पर।

0: बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। ये देवदत्त पारसोलिया जी हमें लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, नाइस टॉपिक, हमें बहुत अच्छा लग रहा है प्रेजेंटेशन, और बहुत सारा जानकारी भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें मिल रही है। तो कोशिश यही होती है प्रतिदिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लाएं कि आपको भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां जो मिलती हैं यहां से, वो कुछ ऐसी चीज मिले जो आपको नहीं पता हो, कोशिश यही होती है। और किरण सोनी हमको लिख रही है नागौर राजस्थान से, डॉक्टर साहब कि मेरी उम्र 40 वर्ष है और कान में पस आता था जिससे कि पर्दा और पीछे की हड्डी गल रही थी, इसके कारण मेरे ब्रेन में ट्यूमर निकाला गया और कान का ऑपरेशन हुआ, मेजर ऑपरेशन था और ब्रेन में ट्यूमर भी था। 4 साल हो गए हैं इस बात को। मेरा सवाल है कि उस ऑपरेशन से मेमोरी पर इफेक्ट हुआ है ऐसा लगता है, तो ये मेरा वहम है कि सच में मेमोरी में इफेक्ट होता है इस तरह के ऑपरेशंस में?
1: देखिए, जहाँ तक मुझे इनकी बातें सुन के लग रहा है, ट्यूमर नहीं होगा, एब्सेस होगा इनको, मतलब मवाद जमा हो गया कान का, मवाद जो कि दिमाग में फैल गया होगा। डिपेंड करता है कि आपका ये मवाद दिमाग के किस हिस्से में था। लेफ्ट साइड में जनरली आपका देखा गया है कि आपका जो एक दिमाग का हिस्सा, इसको हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं, वहाँ पे मेमोरी का भी सेंटर होता है आपका, अगर वो जो कि कान के पास होता है, अगर उसमें आपको मवाद था तो चांसेस हैं कि आपको मेमोरी पे भी इफेक्ट हो सकता आया हो उससे।
0: और ये प्रश्न हमें भेजा है परिधि ने दिल्ली से कि अगर किसी को ट्यूमर हो तो कितने चांसेस हैं कि उनके बच्चों को और आगे आने वाली जनरेशन्स को भी ट्यूमर हो, और अगर दोनों पेरेंट्स को ट्यूमर है तो ये चांसेस कितने बढ़ जाते हैं, और क्या इसका कोई बचाव है, क्योंकि आपने बताया जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले अ रोल।
1: देखिए, हर ब्रेन ट्यूमर जेनेटिक नहीं होता, ये आपको समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी पेरेंट को ये ब्रेन ट्यूमर है तो बच्चों को होगा ही होगा। कुछ ब्रेन ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिसमें जेनेटिक का रोल देखा गया है, बट इसको क्लासिफाई करना, और कुछ में परसेंटेज ज्यादा होता है ट्रांसफर का, कुछ में बहुत कम ही होता है। तो आप पर्टिकुलर एक ट्यूमर की बात करेंगे हम तो वो डिफरेंट होगा, बट इन जनरलाइज देंगे तो जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स को ट्यूमर है तो बच्चों को भी ट्यूमर हो।
0: जी, कारण लोग जानना चाह रहे हैं। वैसे आपने बताया कोई ऐसा स्पष्ट कारण नहीं है, लेकिन सिडेंट्री लाइफस्टाइल कारण हो सकता है क्या, ये जानना चाहते हैं। अमित विश्वकर्मा देहरादून से लिख रहे हैं कि आईटी प्रोफेशनल हूं, बहुत देर बैठे बैठे ऑन स्क्रीन काम करना पड़ता है, तो एक मन में एक जिज्ञासा है जानने की।
1: अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, बट सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ब्रेन के साथ साथ जो दूसरा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हार्ट, उस पर इफेक्ट आ सकता है आपको।
0: अच्छा,
1: तो जितना ब्रेन जरूरत है उतना दिल का भी ख्याल रखिए, दिमाग के साथ
0: कहीं ना कहीं नुकसान तो आएगा।
1: जी,
0: है ना? तो इसके लिए क्या आप एडवाइस करते हैं कि बीच में ब्रेक्स लिए जाए?
1: ब्रेक्स लीजिए, एक्टिविटीज रखिए, वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, आपका दिल दौड़ेगा तो आप भी दौड़ेंगे।
0: जी, देवेंद्र इंगती हमें लिख रहे हैं कार्बी अंगलोंग से, डॉक्टर साहब और शालिनी मैम को नमस्कार, मेरा सवाल यह है कि ब्रेन के अलावा कहाँ कहाँ ट्यूमर्स हो सकते हैं?
1: देखिए, अगर हम देखेंगे तो ब्रेन के अलावा बॉडी का कोई भी हिस्सा है आपको उसमें ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर कुछ नहीं होता है कि आपके सेल्स की, बॉडी के सेल्स होते हैं, अब नॉर्मल ग्रोथ होना चालू हो जाती है जो कि रुकती नहीं है। तो ब्रेन के अलावा कहीं भी ट्यूमर हो सकता है और कहीं का भी ट्यूमर फैल के ब्रेन में जा सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक जिज्ञासा मेरी है कि बहुत सारे एडवांसमेंट्स होते हैं मेडिकल फील्ड में, खास तौर पर जब कोई बीमारी होती है, और ये एक ऐसा फील्ड है, यहाँ पर भी निश्चित तौर पर बहुत एडवांसमेंट हो रहे होंगे, और मैंने कहीं पढ़ा कि जरूरी नहीं है कि आपको टोटली एनेस्थीसिया देकर कंप्लीट एनेस्थीसिया में ही ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाए, कितना सच है?
1: बहुत अच्छा सवाल किया शालिनी जी आपने। आजकल हम एक सर्जरी बोलते हैं इसको, आजकल तो नहीं, काफी टाइम से प्रैक्टिस हो रही है, अवे क्रेनाटोमी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट पूरी तरीके से होश में रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो ट्यूमर है, जैसे एक सज्जन ने प्रश्न भी किया था, जो कि बोलने के हिस्से के बिल्कुल पास पास में ट्यूमर है, या आपका जहां से हाथ पैर कंट्रोल होते हैं उसके पास में ट्यूमर है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि पेशेंट बेहोश नहीं रहता है, हम पेशेंट होश में रहता है, हम उसकी सर्जरीज करते हैं, और जैसे ही हम उस ट्यूमर के हम निकालते हैं तो हम उसको बोलेंगे, आप बोल के दिखाइए या आप हाथ हिला के दिखाइए। तो अगर थोड़ी सी भी एक्टिविटी में हमें कमी लगती है तो हमको समझ जाते हैं कि हम एकदम उस सेंटर के पास में है, तो हम उसको आगे नहीं जाना है।
0: अच्छा।
1: तो ये एक बहुत अच्छा एडवांसमेंट है, और इसके साथ साथ आजकल तो रेडियोलॉजी में, इमेजिंग में इतना एडवांसमेंट आ गए हैं कि आप पहले सब लोकलाइज कर सकते हो कि आपके सेंटर्स कहाँ पे हैं और वो ट्यूमर से कितनी दूर है। तो रोबोट्स आजकल डेवलप हो रहे हैं सर्जरीज के लिए, एंड दे आर वेरी गुड।
0: तो सर्जरी से पहले जो आप टेस्ट कराते हैं वो कौन से, एमआरआईज होते हैं?
1: एमआरआईज कराते हैं, एमआरआई के भी अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि हमको ऑपरेशन में हमारी मदद करते हैं। कई बार सीटी स्कैन की जरूरत पड़ जाती है, तो सबको हम देख के समझ के फिर हम प्लान करते हैं कि किस टाइप से ऑपरेशन करना है।
0: जी, और ये प्रश्न हमें भेजा है गुलाम रब्बानी जी ने पटना से कि मेरे नेक में 8 साल से दर्द है, क्या इसका कारण हो सकता है और इसका इलाज क्या है? तो मुझे लगता है इन्होंने कहीं तो टेस्ट कराए होंगे, कुछ लिखा नहीं है, आप क्या कहेंगे?
1: नेक के कारण तो अमूमन सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा मोबाइल होता है, जो आप झुक के मोबाइल देखते रहते हैं उसको कम करिएगा। और अगर नेक का दर्द आपके हाथों में जा रहा है तो सर्वाइकल हो सकता है, तो इसके लिए आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो बेहतर बता पाएंगे आपको किस कारण से दर्द है।
0: सैयद दानिश मोहम्मद शाकिर फ्रॉम पुरानी तहसील जामा मस्जिद रामपुर से हमारे कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और लिख रहे हैं कि वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, नाइस टॉपिक, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच सैयद दानिश और मोहम्मद शाकिर, आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। और हमें कुछ श्रोता है जो हमें फोटोज और वीडियोज और मेडिकेशन की पूरी लिस्ट भेज रहे हैं, तो हम वो चीजें यहां शामिल नहीं कर सकते हैं, सॉरी। सिर्फ आप समस्या शॉर्ट में हमें लिखेंगे तभी हम इस कार्यक्रम में शामिल कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं शामिल कर पाएंगे। और ये मैसेज हमको लिखकर भेजा है तरुण कुमार जी ने अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, डॉक्टर साहब मेरी मम्मी को ओवरी में गांठ थी जिसको वैक्यूम से निकाल दिया गया है, गांठ में कैंसर की शिकायत बताई गई और किस डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने शरीर में कैंसर 4 स्टेप से कैंसर हो चुका है, यदि हम गांठ नहीं निकलवाते तो कैंसर नहीं बढ़ता, मतलब काफी कंफ्यूज सा इनका मुझे समझ नहीं आया, पर ये ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड तो नहीं लग रहा है प्रश्न, पर आप कुछ कहना चाहें, इन्हें बताना चाहें?
1: देखिए ऐसा नहीं है कि आप देखिए ट्यूमर का तो आपको इलाज कराना होगा, कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो इलाज के बावजूद भी फैलते हैं, अगर आप नहीं कराएंगे तब तो निश्चय ही हार्मफुल इफेक्ट आएगा ही आएगा, बट कराएंगे तो हो सकता है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिले और थोड़ा लाइफ प्रोलॉन्ग हो उसकी।
0: जी, और हमारे साथ हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो
2: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
2: मैं पीपी गौतम बोल रहा हूँ जी मेरठ से।
0: जी जी,
2: और मेरा पूछना है कि क्या डिमेंशिया, मेमोरी लॉस और एगोनाइज पेन ये ब्रेन ट्यूमर के प्राथमिक लक्षण है या मिथक है?
1: देखिए फिर मैं बोलूंगा कि ट्यूमर के लक्षण जनरलाइज नहीं कर सकते, ट्यूमर के लक्षण उस डिपेंड करता है कि किस हिस्से का आपको ट्यूमर हो सकता है। डिमेंशिया जनरली ट्यूमर्स में नहीं देखा जाता है, ये अगर ओल्ड पेशेंट्स में हो रहा है तो ये सिनाइल डिमेंशिया हो सकता है, अल्जाइमर्स हो सकता है, तो ये भी आपको डॉक्टर ही देख के बता पाएगा कि डिमेंशिया का क्या कारण हो सकते हैं।
0: तो कारण भी जानने के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा, सिम्टम्स भी बहुत क्लियर नहीं होते हैं। तो डॉक्टर साहब इससे पहले कि हम चलें, थोड़ा सा हम जरूर ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है, जैसे आपने बताया कि अगर बहुत बार उल्टी भी आ रही है तो क्या कोई खास समय होता है जिस समय ये दर्द और उल्टी ज्यादा होती है जो ये सिग्नल दे कि ब्रेन ट्यूमर की तरफ कुछ शक किया जा सकता है?
1: देखिए जो अपन बोलते हैं कि आदमी जब सो के सुबह उठता है उसको उल्टी होती है, तो वो एक, मैं ये नहीं बोलूंगा प्लीज इसको दिमाग में मत बैठाइए कि सुबह सो के उठ के उल्टी हो रही तो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। बट देखा जाता है कि जनरली ट्यूमर्स में होती है ऐसी उल्टी है। और उल्टियों से हेडेक में रिलीफ होता है, ये नॉर्मल माइग्रेन में भी देखा जाता है, ब्रेन ट्यूमर में देखा जाता है, बट इसके साथ साथ अगर ऑल भी एसोसिएटेड सिम्टम आ रहे हैं तब आपको सचेत होने की आवश्यकता है।
0: जी, और किस तरह के डायग्नोसिस के क्या तरीके हैं, किस तरह से ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरह के पेशेंट के साथ क्या प्रोग्नोसिस बनता है?
1: देखिए प्रोग्नोसिस तो पेशेंट का डिपेंड करता है कि किस टाइप का ट्यूमर है उसको और किस हिस्से का ट्यूमर है। अगर हम जैसे आप MRI कराते हैं, ट्यूमर निकलता है, आपकी सर्जरी होती है, फिर उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, बायोप्सी की क्या रिपोर्ट आती है उसके बाद उसमें क्या और चिकित्सा संभव है, क्या हम रेडिएशन दे सकते हैं, क्या हम इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका आगे क्या प्रोग्नोसिस रहेगा।
0: जी, तो आज जितने प्रश्न आए हैं हमने कोशिश की है शामिल करने की, और हमारे भी बहुत सारे आज प्रश्न थे वो भी हमने शामिल किए हैं। और कुछ प्रश्न डॉक्टर साहब हमारे पास आए हैं जो कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, इस स्कोप पे नहीं आते हैं, तो आपसे यही अनुरोध है कि आगे भी अगर आप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पहले विषय सुन लें और हमारे विशेषज्ञ के बारे में जान लें और फिर उस पे प्रश्न करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे श्रोता होते हैं जो लाइन में होते हैं और अपने प्रश्नों को जानना चाहते हैं, उनके सवाल जानना चाहते हैं। आज बात करी हमने मस्तिष्क ट्यूमर या ब्रेन ट्यूमर की, हमारे साथ रहे डॉक्टर राहुल वार्ष ने। चलते चलते डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहें हमारे श्रोताओं को, आपका कोई संदेश देना चाहें?
1: मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि देखिए ट्यूमर होना है ठीक है, ये मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, बट ट्यूमर का इलाज कराना आपके कंट्रोल में है। ट्यूमर होने से घबराइए नहीं, इसका इलाज जरूर कराइए। अब ये मत सोचिएगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, अब मैं नहीं बचूंगा, बहुत से ट्यूमर ऐसे होते हैं, इलाज कराएंगे आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिएंगे। तो डॉक्टर के पास जाइए और इलाज जरूर कराइए, बी पॉजिटिव।
0: बिल्कुल बी पॉजिटिव, और इलाज जरूर कराना है, उस चीज को समझना है और डॉक्टर के पास पहुंचना है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए कि डॉक्टर साहब इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, तो डॉक्टर साहब का यही कहना है कि आप जब सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो आपको सब चीजें डॉक्टर समझा देंगे, लेकिन पहुंचिए जरूर, उसको इग्नोर मत करिए। तो इस कोशिश इस में हम सफल हुए हैं।

0: नहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें जरूर बताइए। हमारे ईमेल आईडी पर आप लिख सकते हैं इस कार्यक्रम का फीडबैक और हमारे अन्य कार्यक्रमों का फीडबैक, और इस कार्यक्रम में और क्या सुनना चाहते हैं, क्या विषय आप चाहते हैं कि हम आगे लें, वो भी आप हमें बता सकते हैं healthaiadelhi@gmail.com पर। तो आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय को, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला है इस कार्यक्रम के लिए, आप यहां आए हैं, हमारे श्रोताओं कि इतने सारी समस्याओं का समाधान आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को।
0: और इसी के साथ आज का इस कार्यक्रम को समेटने की और खत्म करने की, फिनिश करने की इजाजत दीजिए आप अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को। पर जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ, क्योंकि हम प्रतिदिन एक नया एपिसोड लेकर आपके साथ जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान आपको यही मिले, जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर। सुनते रहिए FM रेनबो पर ये कार्यक्रम।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
3: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
2: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गरीबों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास, जनधन, मुद्रा और प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसे कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सांसद पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री रॉय ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति हिंसा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित सरकार ने चुनावी वायदों के अनुसार राज्य में विकास और पुनर्निर्माण के कार्यक्रम लागू करने शुरू कर दिए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश, भाष्यम रामकृष्ण और चिंतकायला विजय ने आज अमरावती में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। तीनों उम्मीदवारों ने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं की उपस्थिति में चुनाव अधिकारी आर वनीता रानी को अपने नामांकन पत्र सौंपे। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित हुआ है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल और प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उसने कहा कि ऑपरेशन के दौरान इसराइल के वायुसेना केंद्रों नेवातिम और तेल नोफ पर हमले किए गए। मीडिया की खबरों के अनुसार इसराइल के हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच में पारी और 300 रन से हरा दिया है। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जवाब में अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 152 रन पर सिमट गई। इसके बाद फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में अफगानिस्तान 112 रन ही बना सकी और भारत ने मैच जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर रहे मानव सुथार को मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और आप इस समय जिसकी वाणी सुन रहे हैं वो हूँ मैं, आपकी मस्त मस्त आरजे माला लेकर आ चुकी हूँ प्रोग्राम अल्फा जेन यूथ स्पीक्स। और आज का दिन है बेहद खास। बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज का दिन सच में बहुत खास है। अब देखो, आपको लग रहा है देखो कैसे कैसे पहेलियां बुझा रही हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली सच में आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए हैं आज। और ऐसे में जब 90 सालों का इतना लंबा इतिहास हो, इतनी लंबी विरासत हो, इतनी सारे एक्सपीरियंसेस, कहानियाँ, स्ट्रगल्स और इतने सारे इनोवेशंस और नए नए कॉन्सेप्ट्स पर काम करने की बात हो और 90 सालों का ये सफ़र पूरा हो जाए तो कितनी खुशी होती है। और वो खुशी है आज हम सबको साथ, मैं ये भी कहूँगी कि हमको तो है ही है, साथ में आप लोगों को भी बहुत खुशी है क्योंकि आप हमेशा से हमारे साथ ही रहे हैं और हमारे हर एक प्रोग्राम को, हमारे हर एक दिन को, हर पल को, हर मोमेंट को आप खास बनाते रहे हैं। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज का दिन आकाशवाणी के 90 सालों को पूरा करता हुआ एक स्पेशल डे है और स्पेशल डे पर स्पेशल शो होना चाहिए। यूथ स्पीक्स पर आज हमारे साथ हैं आज की स्पेशल गेस्ट, और ये स्पेशल गेस्ट कितनी ज़्यादा स्पेशल हैं और कितनी इनोवेटिव और क्रिएटिव हैं इसका आपको अंदाज़ा इस पूरे प्रोग्राम के दौरान लगता रहेगा। चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं अपनी आज की इस खास गेस्ट को। हाय समृद्धि, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू मैम।
1: अच्छा समृद्धि, इतनी खूबसूरत हो तुम और साथ ही साथ आज इतनी खूबसूरत दिन पर आई भी हो, आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं, तो कैसे अपने एक्साइटमेंट को बयां करोगी?
2: मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे इस स्पेशल डे का हिस्सा बनने का मौका मिला और मैं आप सबसे आज बात कर पाऊंगी और अपने थॉट्स आपके सामने बता पाऊंगी।
1: डेफिनेटली, वी ऑल आर सो एक्साइटेड। अच्छा ये बताओ, जब मैं शो स्टार्ट कर रही थी तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और साथ में थोड़ी सी नर्वस थी, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मतलब एक्साइटमेंट तो ठीक है पर थोड़ा नर्वस होना भी ज़रूरी है? अरे रेडियो पर हम मस्ती से आराम से बात करते हैं, मज़ेदार बात है।
2: अच्छा, ये बहुत बढ़िया, और मेरी थोड़ी धीरे धीरे नर्वसनेस कम हो रही है आपसे बात करते हुए।
1: क्या बात है। देखिए अदिति की बात अगर हम करें, पिछले हफ्ते आपने अदिति को सुना, आज इस हफ्ते आप समृद्धि को सुन रहे हैं और हर हफ्ते आप यूथ स्पीक्स पर किसी न किसी स्पेशल गेस्ट को हमारे साथ ज़रूर सुनते हैं और जानते हैं कि युवाओं को जो मंच प्रदान करता है हमारा ये शो जिसका नाम है अल्फा जेन, उसमें कितना मौका मिलता है युवाओं को अपनी बातें सामने रखने का और कितना अच्छा मौका होता है सभी लोगों का ये जानने का कि युवा आज के समय में अलग अलग चीज़ों के बारे में अपनी क्या सोच रखते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते चलेंगे। फिलहाल एक बहुत ही बेहतरीन गाना जो मुझे और समृद्धि दोनों को बहुत पसंद है, इसे इंजॉय करते हैं और फिर आते हैं वापस।

0: अगर हम पुराने जमाने से आज के जमाने को कंपेयर करते हैं तो देन ऑफ कोर्स हमें लगता है कि आज की डेट में तो वाकई बादल पे पांव है। इतना जमाना बदल चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बदल चुकी है और आज के समय में हर एक चीज का सोल्यूशन हमें टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं दाएं बाएं मिल ही जाता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूथ स्पीक्स अल्फा जेन के तहत। इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं हर सोमवार को और आज हमारे साथ है समृद्धि गोयल साथ में। और समृद्धि, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखो अगर हम आज की जेनरेशन की बात करें, आप जेन जी हैं, तो ऐसे में आपको क्या फर्क लगता है तब से अब में, जब स्टार्ट हुआ था आकाशवाणी तब से अब में कितना फर्क है और ये फर्क कितना पॉजिटिव है?
1: अब तो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो गई है सब चीज़ों की। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हम तुरंत इंटरनेट खोल लेते हैं और फिर उसका यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लोग तब इन्फॉर्मेशन, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का सबसे बड़ा सोर्स, सबसे महत्वपूर्ण और भरोसेमंद सोर्स ही हमारे पास रेडियो था। 90 साल पहले जब आकाशवाणी स्टार्ट हुआ उस दौर में रेडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं था, सीखने के लिए, दुनिया से जुड़े रहने का सबसे भरोसेमंद माध्यम था। लोग प्रेजेंटर्स को देख भी नहीं पाते थे लेकिन उनकी आवाज से पहचान जाते थे और उनका इंतजार भी करते थे। शायद यही वजह थी कि रेडियो इतनी जल्दी लोगों के दिलों का हिस्सा बन गया।
0: या यू आर सो लवली, मतलब जब तुमने कहा ना कि लोग देख भी नहीं पाते थे और सिर्फ आवाजों से पहचान जाते थे, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है जब मैंने आकाशवाणी में अपना करियर स्टार्ट किया था उस समय तक भी ऐसा ही था। अब तो खैर सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा चलन है कि लोग देख भी पाते हैं, यहाँ नहीं देख पाते लेकिन वहाँ डेफिनेटली हमें देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा हम जो रेडियो पे शो करते हैं तो हम कैसे दिखते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये उस ज़माने में इतना ज़्यादा छुपी हुई चीज़ थी कि लोग वाकई आवाज़ सुन के इतने ज़्यादा दीवाने हो जाते थे और उन्हें लगता था कि यार ये कौन है और इनसे हम मिलना चाहेंगे। तो वो दौर मैंने देखा है, वो ज़माना मैंने देखा है और उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली लगता है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों से जुड़ने का ज़्यादा अच्छा माध्यम आ चुका है, हम लोगों से जुड़ते हैं। लेकिन जब आप बाहर से देखते हो रेडियो के प्रेजेंटर्स, जब सोशल मीडिया पर आपको दिखते हैं, तो आपको कैसी फीलिंग होती है?
1: वो फील मतलब बहुत ऐसे फैसिनेटिंग लगता है कि अब तक तो हम सिर्फ उनको रेडियो पे सुनते थे या पॉडकास्ट, अब ज़्यादा पॉडकास्ट चल गए हैं, हमारी जनरेशन रील्स और पॉडकास्ट ज़्यादा सुनती है। तो जब इन सब लोगों को हम पहले सिर्फ आवाज़ें सुन पाते थे और फिर एकदम से हम उन्हें सामने देखते हैं तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि वो हमारे सामने मौजूद हैं और हम उनसे मिल पा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया रहता है वो।
0: क्या बात है, आज मैं हंस हंस के पागल हो जाऊँगी, कुछ तो हो जाएगा मुझे। चलो एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग प्ले कर रही हूँ अभी, इंजॉय कीजिए इस गाने को सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला और इस शो को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ है समृद्धि गोयल। मनवा लाइक्स टू फ्लाई, सो आई वुड

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
7: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
8: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: चुका है 4:20 और ठीक 10 सेकंड।

0: हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला प्रोग्राम जो आप अभी इंजॉय कर रहे हैं वो है आपका फेवरेट वाला अल्फा जिन यूथ स्पीक्स। और आज हमारे साथ हैं युवाओं का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए समृद्धि गोयल। समृद्धि, आप जो बातें कर रही हो ना, सीरियसली मुझे उस ज़माने में लेके जा रहा है जब वाकई इमोशंस जो है ना वो बिल्कुल पीक पर आ चुके हैं। मतलब मुझे कई बार ऐसा एहसास हो रहा है कि आंखों में ना आंसू, थोड़ी सी नमी सी आ गई, आंसू टपकने वाले। हमारे लिसनर्स को बताओ तो मुझे क्या क्या बता रही हूँ।
1: मैंने ना अक्सर ही अपने घर में अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को देखा है रेडियो के बारे में बहुत बातें करते हुए। एक अलग ही स्माइल आ जाती है उनके फेस पे जब वो रेडियो के बारे में बताते हैं, क्योंकि रेडियो उस टाइम में सिर्फ एक मशीन नहीं थी बल्कि हर घर का हिस्सा था। आकाशवाणी हर सुबह की शुरुआत भक्ति संगीत से होती थी, कभी समाचार, कभी गीत संगीत, कभी कोई नाटक या विशेष कार्यक्रम। जयमाला, हवा महल, बिनाका, गीतमाला और भी बहुत सारे नाम मैंने अपने दादा दादी के मुंह से सुने हैं। उस समय लोग अपने पसंदीदा गाने को सुनने के लिए पोस्ट कार्ड लिखते थे, इनलैंड लेटर लिखते थे, लेकिन अब आप तो व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर दीजिए और आपकी फरमाइश जो है आकाशवाणी तक बहुत आराम से पहुंच जाती है।
0: पता है, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो बात की अब मुझे कनेक्ट करना है। पता है, अब इससे मेरी उम्र का लोगों को पता लगता है तो लगे, लेकिन मैंने वो दौर देखा है जब मुझे पोस्ट कार्ड्स आते थे। हाँ, सच में पोस्ट कार्ड्स आते थे और सीरियसली मतलब बहुत अच्छा लगता था। और मैंने कहा ना कि तुम इतनी इमोशनल बातें कर रही हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम अपनी लाइफ का कोई एक लेवल अचीव कर लेते हैं, जैसे मैरिज के 25 इयर्स हो गए, 50 इयर्स हो गए, या आपकी एज जो है वो 75 इयर्स हो गई, तो उस टाइम पर जब प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स, फैमिली फंक्शंस वगैरह, तो वहाँ पर ना ऐसे वीडियोज़ दिखाए जाते हैं या ऐसी कुछ वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं जिसमें उस पुराने दौर को याद करते हुए आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं और फिर आप उस दौर में खो जाते हैं और आप इतने इमोशनल हो जाते हैं एंड यू फील लाइक कि यार यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और बहुत बहुत बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है, वो फीलिंग आज तुम मुझे याद दिला रही हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम श्योर हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो इस बात से ज़रूर कनेक्ट हो पा रहे हैं। समृद्धि, आज तुमने बहुत स्पेशल बना दिया इशू। 90 ईयर्स सेलिब्रेशन ऑफ आकाशवाणी एंड वी आर हैविंग समृद्धि गोयल विद अस। थैंक यू सो मच यार, ऐसी और बातें करती रहो और मैं बहुत ही खूबसूरत गाने जो है ना, जो मुझे और समृद्धि दोनों को पसंद है, वो प्ले करती जा रही हूँ। सो एंजॉय दिस वन।

0: हेलो नमस्कार सभी को, आप सुन रहे हैं अल्फा जेन और मैं हूँ समृद्धि गोयल आप लोगों के साथ। अगर रेडियो की बात हो और संगीत की बात ना हो तो मुझे लगता है थोड़ा अधूरा ही लगेगा, क्योंकि संगीत का रेडियो में हिस्सा हमेशा से इतना खास रहा है ना। लेकिन एक दौर ऐसा था जब रेडियो हमें सरप्राइज कर देता था, अचानक कोई भी गाना बज जाता था और जैसे पूरा मूड ही बदल जाता था। और तो और कोई कोई गाना ऐसा होता था जो ऐसा लगता था मानो अभी मेरे दिमाग में चल रहा था और उसी फीलिंग से बहुत रिलेटेड एकदम ही गाना बज गया, पूरा मूड ही बदल देता था। तो इसी यही वजह है कि कुछ गाने सुनते ही लोग अपने बचपन या किसी खास याद में पहुंच जाते हैं। शास्त्रीय संगीत हो या कर्नाटक संगीत हो या सुगम संगीत हो और यहाँ तक कि फिल्मी गीतों तक, आकाशवाणी ने भारतीय संगीत को घर घर तक पहुंचाया और यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।
1: बिल्कुल सही कहा समृद्धि तुमने। और जिस तरह से अब मैं बताती हूँ, अगर हम कंपेयर करें, बिकॉज हम दो अलग अलग जनरेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं अगर बात करूँ, मुझे वो दौर याद है जब अगर आप उदास हो ना तो आप उसी मूड के गाने प्ले करना शुरू कर दोगे और आप और उदास हो जाओगे, और अगर आप खुश हो तो आप ऐसे मतलब भांगड़ा टाइप्स गाने और ऐसे हिप हॉप नंबर्स और पार्टी सॉन्ग्स प्ले करोगे और सुनोगे, आपको ऐसा लगेगा कि वाओ आज तो बस कुछ हो ही जाएगा, बहुत ही बढ़िया मजा आ रहा है। क्या आज के दौर में भी ऐसा करते हैं यूथ? क्या उनको गानों से वाकई फर्क पड़ता है?
0: हाँ, जैसे आप अरिजीत सिंह के गाने सुनेंगे, अब उन्होंने बहुत ऐसे बहुत फास्ट नंबर्स डांसिंग म्यूज़िक बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पहले सारी बॉलीवुड फिल्मों में बहुत इमोशनल और रोमांटिक गाने बनाते थे वो। तो उनसे सारे जो जेंजी हैं वो बहुत रिलेट कर पाते हैं ऐसे ब्रेकअप के टाइम पे या फिर कुछ भी, तो बहुत इमोशनल गाने हम भी सुनते हैं जब हम डाउन फील कर रहे होते हैं। और फिर जब पार्टी हो, बर्थडे हो, कि कोई भी सेलिब्रेशन हो, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हो, बहुत अच्छे मार्क्स आए हो, तब हम भी बहुत बढ़िया बढ़िया बॉलीवुड के लेटेस्ट गाने, धुरंधर के, रॉ के, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने सुनते हैं।
1: यानी कि जैसे कहते हैं टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, जेन ज़ीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं, बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर संगीत के बारे में बात की जाए तो आज भी आपकी फीलिंग्स को पीक पर ले जाने के लिए और अपने दिन को खुशनुमा बनाने के लिए या किसी पर्टिकुलर फीलिंग में और खो जाने के लिए म्यूज़िक का इस्तेमाल आज भी होता है, और आकाशवाणी इसमें आपका हमेशा से साथ देता आया है, दे रहा है और देता रहेगा। 90 साल हमारे पूरे हुए हैं और आज का ये स्पेशल शो डेडिकेट हमने किया है अल्फा जेन का आकाशवाणी के 90 सालों को। आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में तो आप भी तो हमें कुछ कह सकते हैं ना, मैसेज लिख सकते हैं, तो हमें जरूर मैसेज लिखकर बताइए 9868107070 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला और साथ में है
0: समृद्धि गोयल।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
6: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
7: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
6: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
6: म्यूजिक मस्ती।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हाय, मैं हूँ समृद्धि गोयल और आप सुन रहे हैं अल्फा जेन।
2: और समृद्धि, ये तो बताओ कुछ अपने बारे में। हम तो मतलब बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपके बारे में बात करें तो कुछ बताओ हमारे लिसनर्स को।
1: मैं अभी बीटेक की पढ़ाई कर रही हूँ और मैं सेकेंड ईयर में जा रही हूँ इस साल।
2: और
1: मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है और मुझे क्रिकेट देखना भी बहुत पसंद है।
2: तो अगर क्रिकेट की तुमने बात करी है तो क्रिकेट का जो संबंध है वो सिर्फ तुमसे ही नहीं कनेक्ट होता है, वो भारत की हर एक जनता का कनेक्ट होता है आकाशवाणी के साथ। कैसे होता है तुम्हें पता होगा पक्का।
1: हाँ जी, तो अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बिना भारत की कोई कॉन्वर्जेशन पूरी ही नहीं होती, और वो है हमारा प्यारा क्रिकेट। आज हम भले ही मैचेस HD क्वालिटी में देख लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब करोड़ों लोग पूरा मैच सिर्फ सुनते थे और उतने ही एक्साइटेड होते थे जितने आज हम होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमेंट्री एक कला थी। कॉमेंटेटर्स केवल मैच नहीं बताते थे, वो पूरी पिक्चर बना देते थे लोगों के दिमाग में। और रेडियो आपको पिक्चर नहीं देता बल्कि पिक्चर बनाने का मौका देता है, और यही उसकी यूनिक बात है। कई लोगों के लिए क्रिकेट कॉमेंट्री सिर्फ खेल नहीं थी बल्कि इमोशन थी, और इस पूरी जर्नी में आकाशवाणी ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। सच माने ना तो दोस्तों, तो आकाशवाणी की पहचान सिर्फ उसकी आवाज़ नहीं है, उसके कार्यक्रम भी है। युवाओं के लिए युवा वाणी जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए थे जहाँ पर युवा लोग अपनी बात रख सकते थे। कहानी, नाटक, चर्चा और संगीत कार्यक्रम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। और खास बात यह भी थी कि देश की अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों को सबको आकाशवाणी पर बराबर जगह मिली, और यही वजह है कि इतने सालों बाद भी, 90 सालों बाद भी लोग आज भी इन कार्यक्रमों को इतने अच्छे से याद रखते हैं।
2: मुझे ऐसा क्यों लग रहा है समृद्धि कि तुम्हारी और मेरी एज एक ही है? मतलब जिस तरह से तुम उस जमाने की बात कर रही हो। खैर, कमेंट्री की अगर हम बात करें तो वो आज भी लोग सुनते हैं आकाशवाणी पर। और जिस तरह से बताया आपने कि पहले किस तरह से लोग सुनते थे, मॉर्निंग में रेडियो चालू हो जाता था।
1: हाँ, हाँ।
2: और उसके बाद दिन भर उनको पता थे, प्रोग्राम्स भी पता थे, युवावाणी में भी प्रोग्राम सुनते थे।
1: हाँ।
2: कितने सारे युवाओं को मंच मिलता था, वो प्रोग्राम्स करते थे।
1: हाँ।
2: मन भावन करके प्रोग्राम कई लोगों ने किए हुए हैं।
1: हाँ।
2: और इस तरह से लोग जुड़े हुए थे। तो मतलब तुम जैसे बता रही हो ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये तो मेरे सामने हुआ है, तो तुम्हारी और मेरी एज सेम ही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू। लेकिन बहुत सारे लोग, ये वाकई बात बिल्कुल सच है कि जब हम क्रिकेट को रेडियो पर सुनते हैं ना, तो हम एक क्रिकेटर का पूरा चेहरा जो है वो अपनी आंखों में बना लेते हैं, एक इमेज जो है वो हमारे दिमाग में छप जाती है। और ऑफ कोर्स फिर हमको ये लगता है कि हाँ, ये क्रिकेटर हमारा फेवरेट है, या इस क्रिकेटर ने अगर छक्का मारा है या चौका मारा है तो बॉल कैसे गई होगी, क्या हुआ होगा। वो एक्साइटमेंट जो देखने से ज़्यादा सुनने में होता है, वो डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जेन, मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला, और ऐसी और भी बहुत सारी मस्त बातों के लिए हमारे साथ है समृद्धि आज स्टूडियो में। बने रहिए हमारे साथ।

0: समृद्धि, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी पापा ने कभी कहा हो, डांटा हो किसी बात के लिए और तुम्हें डांट के भगा दिया हो, कभी ऐसा हुआ है?
1: हमेशा तो बहुत होता है, मैं तो बहुत शैतान हूँ घर में, मुझे तो सारे टाइम ही डांट पड़ती रहती है।
0: किस बात पे भाई?
1: फ़ोन ज़्यादा चला रही है या सो ज़्यादा रही है, पढ़ाई नहीं कर रही है, आजकल तो इसी सब पे चल रहा है। और अभी हमारा समर ब्रेक चल रहा है तो अभी भी इधर उधर मैं घूमती रहती हूँ घर में, तो उस पर कहते रहते हैं कि हमारे साथ काम करवाओ और ये सब।
0: तो तुम्हें बुरा लगता है?
1: हाँ मतलब बुरा थोड़ा तो लगता ही है कि भाई मुझे चल करने दो, मैं घर में हूँ, अब मुझे पेपर दिए मैंने, मुझे चल करने दो।
0: और जब कहते हैं कि भाई अभी तुम्हें समर ब्रेक्स मिली हुई हैं, तुम्हारे पास अभी टाइम है, फ्री टाइम है, तो थोड़ी हमारी मदद करवा दो, तो तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि मतलब ये क्या बात बोल दी, ये तो मेरा कोई काम ही नहीं है, ये मेरे को क्यों कह रहे हैं करने के?
1: हाँ आप करो अपना काम, आपका है, मैं क्यों करवाऊँ? लेकिन वही फिर करना पड़ता है, वरना फिर और ज़्यादा डांट पड़ती है।
0: ओके, तो अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, क्योंकि आज के युवाओं को टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जैसे आपने कहा कि फ़ोन देखते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ फ़ोन, तो इसलिए भी डांट पड़ती है। तो अगर हम आपकी टेक्नोलॉजी वाली जर्नी के बारे में बात करें, तो ये जर्नी कैसे आपके रही, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक पहुँची है?
1: टेक्नोलॉजी तो हमेशा से ही बदलती रही है। जब मैं छोटी थी तब रेडियो बहुत रेलेवेंट था, रेडियो से फिर टेलीविजन हुआ, टेलीविजन से इंटरनेट हुआ, अब इंटरनेट से हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी ने अपना मकसद नहीं बदला। आज भी आकाशवाणी का मकसद है लोगों तक पहुँचना, उन्हें जोड़ना और उनका भरोसा जीतना। यकीन मानिए दोस्तों, रेडियो की सबसे बड़ी ताकत यही है कि लोगों के साथ दिल से दिल तक का कनेक्शन बनाना, जैसा कि आज तक 90 साल हो गए और आज भी FM रेनबो यही कर रहा है, और आज इस दिल से दिल तक के रिश्ते का हिस्सा बन गई हूँ मैं।
0: अरे वाह क्या बात है, देखो कैसे कनेक्ट कर रही लड़की है। ये चेयर ना बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाली है, मैं गेस्ट चेयर पर और ये RJ चेयर। अच्छा समृद्धि, लेकिन अगर हम आज के युवाओं के बारे में बात करें, तो रेडियो को लेकर उनके मन में किस तरह की फीलिंग है, क्या किस तरह से वो अपने आप को रेडियो से कनेक्ट करते हैं या नहीं कनेक्ट करते हैं, क्या ऐसा भी है?
1: रेडियो डेफिनेटली आजकल हमारी वाली जनरेशन तो बहुत कम ही सुनती है, लेकिन हम रेडियो को दूसरी फॉर्म में सुनते हैं, हम सुनते हैं पॉडकास्ट्स में।
0: अच्छा।
1: लेकिन दोनों की ताकत एक ही है, आवाज़ के जरिए कनेक्शन बनाना, किसी की कहानी सुनना, किसी के विचार सुनना और कुछ देर के लिए उस बातचीत का हिस्सा बन जाना। शायद यही वजह है कि ऑडियो कंटेंट तो हमेशा से पॉपुलर है, बचपन में मेरे रेडियो चलता था, अब पॉडकास्ट चलते हैं, लेकिन आज भी ज़रूरी इन्फो तो रेडियो से ही मिलती है। पॉडकास्ट तो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसे सेंसिबल चीज़ें करनी हो तो हम रेडियो के पास आ जाते हैं वापस।
0: क्या बात है, तो देखिए अगर आपको एंटरटेनमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और ऐसी

इन्फॉर्मेशन जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आकाशवाणी के साथ आपका जुड़ाव हमेशा से रहा है, आज भी और आगे भी रहेगा, ये हमें पता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जेन और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 साल। आज के दिन 8 जून के दिन पूरे हो चुके हैं आकाशवाणी के 90 साल, इसीलिए हम सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अभी एक बहुत ही बेहतरीन गाना इस सेलिब्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और फिर वापस आती हूँ समृद्धि के साथ कुछ और ख़ास बातें करने के लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, समय हो चुका है 4:50 और ठीक 34 सेकंड। मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला और मेरे साथ में है समृद्धि गोयल, आज की हमारी यूथ गेस्ट। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जेन यूथ स्पीक्स, और ऐसे में युवाओं की आवाज को मंच देने का काम जब ये प्रोग्राम करता है तो बहुत सारे युवा हमसे जुड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे जो युवा लिसनर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, अपने मन की बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ तो अभी समृद्धि है, तो हम समृद्धि से जानना चाहेंगे युवाओं के मन की बात। समृद्धि, आपसे जानना चाहती हूँ, अभी क्योंकि हमने लगातार आकाशवाणी के बारे में बात की, हम उस जमाने में उस दौर के बारे में भी हमने बात की जब आकाशवाणी को ही लोग सुनते थे और कोई माध्यम था नहीं उनके पास इन्फॉर्मेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। और आज की डेट में जब बहुत सारे साधन हो गए हैं, ऐसे में भी आकाशवाणी को किस तरह से और किस रूप में लोगों ने एक्सेप्ट किया है और किस तरह उसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाया, हमने इस बारे में भी बात की।

0: चाहेंगे कि अगर आपको कोई तीन टिप्स देनी हो, अब आपका जो भी एज ग्रुप है उसमें बहुत सारे बच्चे जो हमें सुन रहे होंगे वो ये जरूर चाहेंगे कि समृद्धि आज पहुंची, अगली बार हमारा नंबर आना चाहिए. तो समृद्धि की तरफ से उनके लिए क्या टिप है, कोई तीन टिप्स?
1: आप बहुत क्रिएटिव होने चाहिए कि आप बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर लें. फिर दूसरी चीज़ की बात करना आना चाहिए कि फ्लो में यहाँ पर हम इतना बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं तो आप बीच में अपने थॉट्स ला पाएँ बहुत आराम से. और तीसरी चीज़ तो यही कॉन्फिडेंस हो आप.
0: बहुत कॉन्फिडेंटली कहा इसने कि मतलब ना आप कॉन्फिडेंट आप होना बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना कि हम बोल कुछ रहे होते हैं और हमारे मुंह से निकल कुछ और जाता है. मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऐसा होता है हमारे साथ.
1: हाँ, हाँ.
0: और कई बार लोगों को लगता है कि ये कितना मतलब पक पक पक पक पक पक बोलते चले जाते हैं एंड विदाउट एनी ब्रेक विदाउट एनी फंबल. एक्चुअली फंबल्स होते हैं डियर, फंबल्स होते हैं, लेकिन हम उसको इस तरह से घुमाते हैं कि सामने वाले को पता नहीं लगने देते हैं और वहां पर काम आता है आपका कॉन्फिडेंस. तो जो तीन चीजें आपने कही हैं आई टोटली अग्री विद दैट, क्योंकि ये तीन चीजें अगर आपके अंदर हैं, लोग कहते हैं हमारी आवाज अच्छी नहीं है, हम कैसे रेडियो पे आएंगे, हमारी तो आवाज अच्छी नहीं लगती हमें सुनने में, मुझे भी अच्छी नहीं लगती मेरी आवाज, लेकिन समृद्धि ने कहा कि आपकी आवाज मुझे अच्छी लगती, मुझे समृद्धि की आवाज बहुत अच्छी लगी. तो ऐसा मत सोचिए कि आवाज का उस तरह से कोई रोल है कि आप आ सकते हैं कहीं या नहीं आ सकते हैं. आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए और वो जज्बा भी होना चाहिए कि करना है तो करना है और करके ही रहेंगे. और आप आज की अल्फा जेनरेशन है, आप जो चाहेंगे वो ज़रूर कर पाएंगे, वो ज़रूर कर सकते हैं. तो बस इस जज्बे के साथ कि आपको जो काम करना है वो आप करके रहेंगे, आगे बढ़ते चले जाइए और यकीन मानिए कोई रोक नहीं सकता आपको.

0: भी सोच रहे हैं हम दोनों मिलके कि अब मैं क्या करूं। समय हो चुका है 4:54 और यह समय हमें कह रहा है कि अल्फा जैन का समय बहुत जल्द पूरा होने वाला है। लेकिन चलते चलते समृद्धि, क्या कहना चाहती हो?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज इस पूरे प्रोग्राम का, आज 90 साल 90th बर्थडे है आकाशवाणी का और मैं इसका पार्ट बन पाई। तो मैं उन सभी लोगों को थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और इस जश्न का हिस्सा बनने का मौका दिया। साथ ही उन सभी लोगों को मेरा नमन जिनके मेहनत और जुनून ने आकाशवाणी को आज इस मुकाम तक पहुँचाया। और चलते चलते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आकाशवाणी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक स्तंभ है, ये एक पिलर है। और अभी तो 90 साल पूरे हुए हैं, शतक तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। उम्मीद करती हूँ आकाशवाणी का ये मनोरंजन और जानकारी से भरा सफर यूं ही जारी रहेगा और नई पीढ़ी का मार्गदर्शन यूं ही करता रहेगा।
0: और जैसे कि समृद्धि ने कहा कि अभी तो 90 साल ही हुए हैं, यानी कि ये बिल्कुल वही डायलॉग है, कुछ अलग अंदाज में उन्होंने कहा, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये पिक्चर बाकी है, यूं ही चलती रहेगी आपके साथ, इसी तरह से जुड़ाव आपको फील करवाती रहेगी, समय समय पर आपका नेतृत्व करती रहेगी और आपके समस्याओं का समाधान जो है वो आपके लिए लेकर आती रहेगी। फिलहाल आज अल्फा जेन में मुझे यानी मस्त मस्त आरजे माला को दीजिए इजाजत, साथ में
1: समृद्धि गोयल को भी
0: दीजिए इजाजत। नमस्कार, जुड़ते हैं आपके साथ बहुत जल्द और फिर आपके साथ जब जुड़ेंगे तो फिर और बहुत सारी ढेर सारी ऐसी बातें करेंगे, ऐसे गाने आपको सुनवाएंगे कि आप पूरी तरह से एंटरटेन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, अलविदा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहे।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर खेद व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रमीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सांसद पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री रॉय ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति हिंसा और शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था में विफल रहने का आरोप लगाया है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी नेता सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कुछ विपक्षी दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि बैठक में 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हरा दिया है। न्यू चंडीगढ़ में भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पारी घोषित की थी। जवाब में अफगानिस्तान की पहली पारी 152 रन पर सिमट गई। इसके बाद फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में भी अफगानिस्तान 112 रन ही बना सका। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 146 रन बना लिए थे। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बिल्कुल, आपकी वाणी आकाशवाणी। और इस आकाशवाणी के आज जो है 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं हूँ आपके साथ आप ही की अपनी मस्त मलंग आरजे श्वेता। और दोस्तों, आपको मैं बता देती हूँ कि आज प्रोग्राम सिटी लाइट्स में है आपके लिए कुछ खास, और वो हमेशा ही खास रहता है वैसे तो, पर आज क्या क्या चीज़ें और खास होने वाली हैं ये जानना चाहते हैं तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए एफएम रेनबो पर, जिसे आप सुन रहे हैं दिल्ली एनसीआर में 102.6 मेगाहर्ट्ज के जरिए, और पूरे भारत में और अलग अलग देशों में भी हमारी न्यूज़ ऑन एयर ऐप के थ्रू भी। तो बस जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम सिटी लाइट्स।

बिल्कुल, और हमारी तरफ से जो है आकाशवाणी पर आज 90 वर्ष पूरे हो गए हैं 8 जून, और ये बहुत बहुत खुशी की बात है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि हम सभी के लिए, हम यानी कि आप और हम। अगर आप ना होते तो फिर किस तरह से हम यहाँ पर होते, आप हैं तो हम हैं। ये जो वाणी है ये हमारी और आपकी दोनों की वाणी है। FM

पे चल रहा है प्रोग्राम सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में जहाँ पर हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में आखिर कहाँ क्या हलचल हो रही है और आप क्या क्या कर सकते हैं अपने शहरों में भी। वैसे आपके अपने शहरों में भी गर्मी तो हो ही रही होगी, कहीं कहीं मौसम थोड़ा सा ठीक होगा तो कहीं पर मौसम ऐसा लग रहा होगा कि उफ़ क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आता है ना, ऐसा ही होता है ना। तो बस आपको बता देती हूँ दिल्ली एनसीआर वालों को कि अगर दिल्ली में ही आपको मिल जाए नैनीताल जैसा मज़ा, झील में बोटिंग के साथ ले ठंडी हवाओं का आनंद, बच्चों की छुट्टियाँ बनेंगी यादगार और आपका टाइम भी होगा बेहतरीन पास। आपने सुना ही होगा पुराना किला, संजय लेक, बलसवा झील और दमदमा झील, इन सबके नाम तो सुने ही होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो आज जान लीजिए कि आखिर इन सब के नाम मैं क्यों ले रही हूँ। दिल्ली में पुराना किला है, संजय लेक है दिल्ली में, बलसवा झील है, तो यहाँ पर आप बस बहुत ही कम मात्र कुछ ही रुपयों में आप आराम से राइड कर सकते हैं, बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। गर्मी और वीकेंड पर फैमिली आउटिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस जगह हैं ये। अगर आपको लगता है कि बोटिंग का मज़ा लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको नैनीताल या पहाड़ों में जाना पड़ता है तो अब ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ या ऑफिस कोलीग्स के साथ बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। खासकर गर्मी और वीकेंड के दौरान यहां पर बहुत से लोग आते हैं और यहाँ पहुँच कर आप सुकून और मस्ती दोनों की ही तलाश जो जारी कर रही हुई है ना आप लोगों ने, वो आपको मिल जाएगी। और ना सिर्फ वहाँ पर आपको मस्ती और मज़ा मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, वैसे आपके तो पैर जो हैं वो इस टाइम बादल पर होंगे, क्यों? क्योंकि अब मैंने आपको ऐसे ही बता ही दिया है। यहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं और यहाँ पर आपको कौन कौन सी नाव मिल सकती है, कैसी राइड होगी, ये सब बताऊँगी इस गाने के उस बाद। स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो।

0: और एक बहुत ही बेहतरीन सी बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ आकाशवाणी एट 90 एपिसोड 68। जरा ध्यान से सुनिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आज यानी 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा कर रहे हैं, स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। अगस्त 2005 को नए प्रसारण भवन का शुभारंभ किया गया। नव प्रसारण भवन अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो उन्नत तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित था। समाचार सेवा प्रभाग यानी न्यूज सर्विस डिवीजन और बाह्य सेवा यानी एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो श्रोताओं, इसी के साथ निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स, मजमरंग आरजे श्वेता के साथ और आकाशवाणी एट 90 का जो ये आपने सुना, कितनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर की जा रही हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप भी जान सके अपनी आकाशवाणी को। और हम तो गुनगुनाते हुए यहाँ पर आ ही जाते हैं अपने स्टूडियो में आपके लिए नई नई खबरें लेकर। तो आज की जो पहली खबर है वो मैं आपके साथ यहीं पर यही शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप अपनी गर्मी में भी, इतनी गर्मी में भी अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको लगता है बोटिंग का मज़ा लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहीं बहुत ज़्यादा दूर दिल्ली के बाहर? तो ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी आप बोटिंग का आराम से मज़ा ले सकते हैं। पुराना किला यानी कि पुराना किला इन ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं उस किले को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर अब एक प्यारी सी झील है और उस झील का आप आनंद ले सकते हैं। 15 मिनट की राइड होती है, आप उससे ज़्यादा भी राइड कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं। बच्चे भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे। याद है वो पुरानी फिल्मों के गाने जहाँ पर हीरो हीरोइन झील में बैठ कर, नाव में बैठ कर झील में अपना जा रहे होते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, वो दूर देखो एक हीरो का हाथ होता है, वैसी फोटो, वो फोटो जरूर खिंचवाइएगा, आइकॉनिक फोटो है वैसे वो, है ना, होती है ना। आपका क्या अनुभव रहा है आकाशवाणी के साथ वो मुझे जरूर मैसेज कीजिए। आज मैं उन सब मैसेजेस को सहेज कर रखना चाहूंगी और आप सबकी जितनी यादें हैं उन सब यादों के साथ मैं भी जीना चाहूंगी। तो जल्दी से मैसेज कर दीजिए 9868107070 पर, 9868107070 पर। मेरे साथ गुनगुनाते रहिए आकाशवाणी पर, ये आप ही की वाणी, स्टेशन ऑफ द नेशन, एफएम रेनबो।

0: और आप भी गुनगुनाते रहिए आकाशवाणी के साथ 90 वर्ष की एक प्यारी सी सेलिब्रेशन, आप भी मनाते रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ आप ही की अपनी मस्त मलंग आरजी श्वेता। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार होंगी और ढेर सारी बातें और बताऊंगी दिल्ली में पुराने किले के अलावा और कहां पर आप बोटिंग का ले सकते हैं मजा।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
6: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
5: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
6: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
5: और विनर्स को क्या मिलेगा?
6: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
7: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
8: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के

0: बजने से।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: FM रेनबो पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट। सिटी लाइट्स में हम लोग बात करते हैं दिल्ली NCR में आखिर कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ पर आप जा सकते हैं और अपने फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको अगली जगह लिए चलती हूँ जहाँ पर आप बोट कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। बोट नहीं, बोट, हाँ बोट मैंने बोला है। तो आराम से ध्यान से ज़रा सुनिएगा और अपना एक्सपीरियंस भी मुझे जल्दी से बताते रहिए कि आपका आकाशवाणी के साथ पहला आखिर कैसा इंटरेक्शन था, आपने पहली बार कब सुना था, या कोई ऐसी याद जिसे आप सोचकर आज भी मुस्कुरा उठते हैं। तो चलिए पुराने किले के से अब जाते हैं दक्षिण दिल्ली की तरफ। यहाँ पर है संजय लेक और यहाँ पर भी बोटिंग के लिए बहुत ही अच्छा जो है ये स्पॉट माना जाता है। यहाँ पर लोग सुबह और शाम के टाइम घूमने के लिए पहुँचते हैं और झील के आसपास खुला माहौल है और हरियाली शहर की भागदौड़ से थोड़ी सी राहत दे देती है। इसके अलावा भलसवा झील भी उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है जो शांत माहौल में कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। अब भाई पूरा मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहता है, बच्चों के अब स्कूल की छुट्टियां हैं तो बच्चे भी पूरा दिन तंग करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि कहीं बाहर जाएं, घूमने जाएं। तो ऐसे में सैटरडे संडे भी आप जा सकते हैं और अगर आपको वीकडेज में भी टाइम मिलता है तो आप यहां पर आराम से जा सकते हैं। यहां बहुत ही शांत माहौल होता है और खुला इलाका है, पानी का नज़ारा लोगों को अपनी ओर एकदम आकर्षित करता है। और वहीं दिल्ली NCR में रहने वाले कई लोग जो है दमदमा झील का रुख भी करते हैं। यहाँ सिर्फ बोटिंग ही नहीं बल्कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ का भी आप मज़ा ले सकते हैं। वीकेंड पर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम बिता सकते हैं और इसमें इन जगहों पर जाकर आप ज़रूर सुकून तो ज़रूर आपको मिलेगा। फिलहाल आपको सुकून देती हूँ एक प्यारे से गाने के साथ। जुड़े रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, स्टेशन ऑफ द नेशन। डांस करते हैं, 90 ईयर्स हो गए हैं पूरे आकाशवाणी के, डांस तो बनता है बॉस।

और ये आकाशवाणी अपनी है, आपकी है, हमारी है, हम सब की है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स, मस्त मलंगार्ड श्वेता के साथ आकाशवाणी। आकाशवाणी एक ऐसी वाणी जहां पर आपकी वाणी भी सुनी जाती है। हमारी वाणी तो आप सुनते ही हैं रेडियो के माध्यम से, और हम आपकी वाणी सुनते हैं मैसेजेस के माध्यम से। चलिए आपको जानकारी दे देती हूँ और दिल्ली एनसीआर में कहाँ क्या क्या हो रहा है। 14 तारीख को चलेगा स्वच्छता अभियान। बिल्कुल, दिल्ली सरकार जो है यमुना के तटों को स्वच्छ बनाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति नागरिकों को और अच्छे से जागरूक करने के लिए 14 जून को यमुना तट स्वच्छता अभियान का आयोजन करेगी। इसमें आप भी भागीदारी कर सकते हैं। देखिए, हम नेचर से बहुत सारी चीजें लेते हैं, उसे लौटाना भी हमारा कर्तव्य होता है। तो बस सभी नागरिक मिलकर स्वच्छ और स्वस्थ यमुना के संकल्प को मजबूत करेंगे। और यमुना सिर्फ नदी नहीं बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय धरोहर है, और इस धरोहर को हमें और अच्छे से रखना है, हमें संभाल कर रखना है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसे स्वच्छ रखना होगा। तो चलिए 14 जून को आप सब लोग यमुना तट पर जरूर पहुंचे और वहां पर स्वच्छता का ध्यान रखें। ना सिर्फ 14 जून बल्कि कि हर रोज अपने आसपास भी स्वच्छता का ध्यान रखिए और उसी के साथ अपना भी ख्याल रखिए। फिर देखिए ना किस तरह से, ना सिर्फ कहते हैं ना, जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तभी तो दूसरों से प्यार कर पाएंगे, तो अपने आसपास सफाई रख पाएंगे तभी तो बाकी पूरे देश में भी सफाई रख पाएंगे।

आकाशवाणी भी इसी तरह से जो है ना आपके सपनों को साकार करती है, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन देती है। इन्फोटेनमेंट का खजाना है आकाशवाणी, स्पेशली एफएम रेनबो, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिलता है। और मैं अब आपके एक दो मैसेज जरूर जरूर जरूर पढ़ूंगी, लेकिन नाम नहीं लिखा इन्होंने। ये बता रहे हैं कि सबसे पहले दादाजी से रेडियो को सुना था और दादाजी के पास एक रेडियो था, सुबह रामचरित मानस की चौपाइयों से उनकी शुरुआत होती थी और उसके बाद कई बार उन्होंने दादाजी के साथ रेडियो का बैंड भी खराब कर दिया था और आज से ये अपने दादाजी को आकाशवाणी सुनाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आपकी दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स और सिटी लाइट्स में मैं आपके साथ हूँ मस्त वलंग आरजे श्वेता, जहां पर हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में आखिर कहाँ क्या हो रहा है। और आज जो है आकाशवाणी अपने 90 दशक जो है उसने पूरा करा है, पूरे करने के उस पर है। और आपके साथ एक और चीज में अब शेयर करने जा रही हूँ। पता है कई बार ऐसा होता है ना, जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना तो आप अटक जाते हैं, आपके पास शब्द नहीं होते हैं। तो ऐसी ही खुशी आज मुझे हो रही है अपने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर। चलिए आपको आगे लेके चलती हूँ और आपके सवालों के अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी जवाब दे तो कैसा लगेगा आपको। हाँ हाँ, सही सुना है, प्रधानमंत्री संग्रहालय में आने वाले दर्शक जल्द ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के एआई अवतार को देख सकेंगे। और यहाँ एआई होलोबॉक्स के माध्यम से वाजपेयी जी का एक डिजिटल 3D अवतार तैयार किया जा रहा है, जहाँ आने वाले दर्शक इस महीने के अंत तक होपफुली अटल बिहारी वाजपेयी जी के एआई संचालित 3D अवतार के साथ बातचीत कर सकेंगे, उनसे सवाल कर सकेंगे और वो उनके जवाब देंगे। इसमें पता है क्या होगा, उनके जीवन और उनसे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित आप कोई भी सवाल कर सकते हैं और एआई जो है वो उन्हीं सवालों के जवाब देगा। तो देखिए कितना बढ़िया सा, एक बहुत अच्छी न्यूज़ मुझे लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी इसे जरूर शेयर की जाए। तो अगर अब आप दिल्ली आने वाले हैं कहीं घूमने के नाते, तो आप आराम से यहाँ पर जरूर जाइएगा, प्रधानमंत्री जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, यहाँ पर जरूर जाइए और फिर बस यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी से बात भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल मेरे और आपकी बात चल रही है, मैं तो हूँ मस्त मिलंग आर्टिस्ट श्वेता, आप भी बताइए ना अपने रेडियो के संस्मरण।

बहुत से लोगों का अपना ही घर है आकाशवाणी, और आकाशवाणी की इतनी सारी बातें हैं कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत सारी हैं। पर आज मैं अपने लिसनर्स की बातें ज़रूर आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। मनीषा नाड़े ने महाराष्ट्र से हमारे पास लातूर से मैसेज भेजा और कहते हैं कि मैं 44 साल की हूँ और मुझे नहीं याद कि मैंने कब रेडियो सुना, और शायद 40 साल से भी ज़्यादा हो गए। हमारे घर में एक बड़ा सा लकड़ी की बॉडी वाला रेडियो हुआ करता था, उसके लिए बैठक खोली में अलग सी जगह थी। हम छोटे थे तब हमें उसे हाथ लगाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। और आपको एक बात बताऊं, मुझे रेडियो में जॉब करने की बड़ी इच्छा थी। मैंने अपना बोलने का स्टाइल, तरीका, जो रेडियो पर बात करना करते हैं ना, उनकी तरह किया था। और बाद में मैंने बीएड किया, वहां पर इसी तरह से बात करती थी तो सब मुझे रेडियो कह के चिढ़ाते थे। ओहो क्या बात है, आपका नाम भी रेडियो हो गया था। पर आज मैं CBSE स्कूल टीचर हूँ, मराठी लैंग्वेज पढ़ाती हूँ। FM जो है ये उस्मानाबाद सुनते थे और इसी पर विविध भारती भी आता था, और पिछले 4 साल से ये FM रेनबो सुन रही हैं। और साथ ही इनके घर के अंगद, दीपक, शुभांगी, आरती, काव्या, गंगा और असवारी, ये सब भी रेडियो सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जोया ने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से मैसेज भेजा है, कहती है आई स्टार्टेड लिसनिंग टू रेनबो इन एंड ऑफ अप्रैल 2026 एंड सिंस देन आई हैव बीन ग्लूड टू इट, कांट रेसिस्ट विदाउट लिसनिंग टू योर चैनल। थैंक यू फॉर सच अ गुड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, थैंक यू सो मच।

वैसे शुक्रिया तो हम हमेशा करते ही रहते हैं आप सभी का, जितने हमारे लिसनर्स हैं, लेकिन एक बार आज फिर से दिल से आभार आप सभी का और शुक्रिया हमारे साथ ये पूरी इतने सालों की जर्नी साथ निभाने के लिए। चलिए आपको एक और खुशखबरी सुना देती हूँ। चिड़ियाघर में अगर आप जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि टिकट की लाइन बड़ी लंबी है तो आप क्या कर सकते हैं, तो चलिए अब आपके लिए एक प्यारा सा इंतजाम करवा दिया गया है। हाँ हाँ, आपने कहा था तो हमने करवा दिया। नहीं नहीं हमने नहीं, लेकिन जो चिड़ियाघर है वहाँ पर वन जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, उन्होंने सेल्फ टिकटिंग कियोस्क का रविवार को उद्घाटन किया, यानी कि कल कर चुके हैं वो उसका उद्घाटन, और साथ ही NJDP साथी ऐप भी लॉन्च किया है। और ये ऐप जितने भी आएंगे वहाँ पर लोग, उन्हें चिड़ियाघर में घूमने और अलग अलग सुविधाओं और जानवरों के बाड़ों के बारे में जानकारी देने के लिए मदद करेगा। और इसका जो मेन मोटो है वो चिड़ियाघर में आने वाले जितने भी दर्शक होंगे, जितने भी आने वाले हैं, उनकी सुविधा को बेहतर बनाना और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है। इससे लोगों को लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, तो कितना अच्छा है ना। अब जब एक अच्छी खबर सुनाई तो एक और आपको सुना देती हूँ। सफदरजंग में अगर हॉस्पिटल में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, वहाँ जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा मौका है। सफदरजंग हॉस्पिटल में अनुबंध के आधार पर 151 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती होगी और इसके लिए 18 जून को वॉक इन इंटरव्यू होगा और 1 जुलाई 2024 या उसके बाद इंटर्नशिप पूरी कर चुके MBBS डॉक्टर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट है vmmc-sjh.mohfw.gov.in, इस पर आप सारी जानकारी दे सकते हैं। यानी आप अपना जाइए वहां पर और वॉक इन इंटरव्यू दीजिए, क्या पता आप वहां पर चुने जाएं। फिलहाल जो है ना, मोहित चौहान कहाँ जा रहे हैं अपना बस्ता उठाए, ये देख लेते हैं इस गाने के जरिए। और मेरे बस्ता उठा के जाने का भी वक्त आने वाला है, लेकिन उससे पहले दो बातें आपको ज़रूर कहूँगी। हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कान रखिए, ना जाने उसे देखकर कौन मुस्कुराना सीख जाए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपने आस पास के माहौल का भी ख्याल रखिए। आप कहाँ घूमने जाने वाले हैं आज, जरा देखिए तैयारी। हाँ जी, गाड़ी में बैठ गए हैं और निकलने की तैयारी है, जरा ध्यान से चलाइएगा गाड़ी।

इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन इस गर्मी में भी अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। बाहर जाते वक्त छाता टोपी पहन के जाइए, या फिर अपने सर पे दुपट्टा ज़रूर रखिए, उसके साथ साथ पानी की बॉटल रखिए, और हो सके तो कुछ मीठा भी लेके चलिएगा। आज तो मीठा खाने का पूरा पूरा मौका है, एक दूसरे को ज़रूर मीठा खिलाइएगा। अगर आप रेडियो के पूरे पूरे दीवाने हैं, उसके हम सफ़र रहे हैं अभी तक। फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन टाटा बाय बाय कहते हुए आप सभी को यही कहूंगी कि आकाशवाणी के 90 दशक पूरे होने की बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मस्त मलंग आरजी श्वेता यहीं पे कहती है टाटा बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान प्रदान किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती

0: शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
3: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
4: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
2: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर खेद व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 180 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी अपनी आकाशवाणी ने पूरे कर लिए हैं 90 शानदार साल। वो जमाना याद है जब घर के कोने में रखा रेडियो पूरे परिवार को एक साथ ले आता था। कभी बिना का गीतमाला, कभी क्रिकेट कमेंट्री, तो कभी रात की फरमाइशी धुने। तो आज ना शेयर करें

107070 is the number for WhatsApp messages. भगवती इंतजार कर रही है आपके messages का message मसाला mix में. ये है आपकी अपनी आकाशवाणी. ये है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक.

मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हर दर्शना बाजार अररिया बिहार से कहते हैं कि आज आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण हुए। 90 वर्षों से आकाशवाणी ने समाचार, संगीत, साहित्य, संस्कृति और जनसेवा के माध्यम से करोड़ों श्रोताओं के दिलों में अपनी अमिट पहचान बनाई है। इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी श्रोताओं, आरजे उद्घोषकों, कलाकारों, टेक्निकल टीम, इंजीनियरों, कार्यक्रम निर्माताओं, संवाददाताओं एवं सभी अधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विश्वास की यह आवाज आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरह प्रेरित करती रहे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। कहती है, नमस्कार, मैं रितु शर्मा गाजियाबाद से। मेरी शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने नए घर आई थी तो सब कुछ नया नया और थोड़ा अजनबी सा लग रहा था। उन दिनों रेडियो ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। सुबह चाय बनाते समय, घर के काम करते हुए और शाम को बालकनी में बैठकर रेडियो सुनना मेरी आदत बन गई। धीरे धीरे वही घर अपना लगने लगा।

इसलिए रेडियो के साथ बिताए वो पल आज भी बहुत खास है। वारे तो सच कहा, आपने कभी कभी ना एक आवाज़ या एक गीत, एक कार्यक्रम अपना सा एहसास दे जाते हैं। नए शहर, नए घर और नई जिंदगी की शुरुआत में रेडियो ने आपका जो साथ निभाया, वही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। रेडियो सिर्फ गाने नहीं सुनाता, इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता, सिर्फ ये अकेलेपन में, मुस्कान और अनजानेपन में अपनापन भी तो देता है। यू आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो, सो स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूँ भगवती। 9868107070 है नंबर, व्हाट्सएप पर मैसेज करने के।

हर्षदा म्यूनिक जर्मनी से कह रही हैं। आकाशवाणी की सबसे खूबसूरत यादें ये हैं कि मेरे मम्मी पापा रोज़ सुबह उठ के आकाशवाणी मुंबई चलाते हैं। बचपन से मैंने आकाशवाणी मुंबई का जो थीम म्यूज़िक सॉन्ग है ना वो सुना है, और मैं लिटरली वो गाना लगता था ना तब डांस करती थी और अभी भी करती हूँ। मुझे लगता है आकाशवाणी स्टेशन के थीम सॉन्ग्स में भी एक अलग ही ग्रूव है, आई लव देम। तभी मैं यहाँ आके भी रेडियो सुनती हूँ, मुझे जैसे रेडियो की आदत ही है। यहाँ पे ऑफिसेज में लोग हेडफोन लगा के बैठते हैं बहुत समय, तो मैं वही रेडियो सुनती हूँ दिन भर काम के साथ, और कहती हैं सभी आरजेस का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हर्षदा इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखने के लिए, इस तरह से जो है रेडियो को याद रखने के लिए। अरुण सिंह जिलाधार मध्य प्रदेश से कहते हैं, मैं पिछले 25 सालों से रेडियो सुन रहा हूँ आकाशवाणी, और आकाशवाणी के जो है 90 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। कहते हैं शुभ संध्या। रविंदर हैं मेरठ से, कह रहे हैं कुछ साल पहले मुझे न्यू दिल्ली में एयर एफएम का स्टूडियो देखने का सौभाग्य जो सुनहरा मौका मिला था, और कुछ आरजेस से मिला था, तो वो पल मैं कभी नहीं भूल पाया। हैप्पी एंड प्रॉस्परस 90 ईयर्स ऑफ आकाशवाणी दिल से दिल तक, थैंक यू जी। गुनौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली कहते हैं कि दिल्ली ए, दिल्ली बी और विविध भारती पर चिट्ठी लिखकर भेजते थे, और 5 दिन का इंतज़ार करना पड़ता था। छोटा रेडियो हर समय पास रहता था, खत और पेन भी साथ में रहते थे मैसेज करने के लिए। अच्छा जी,

कहते हैं मैं शिशिर गुड़गांव से, कहते हैं बात है ईयर 2000 की, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब हमारे कॉलोनी में रात को 8 से 9 बजे जो है पावर कट होता था, जिसका मैं बहुत इंतज़ार करता था क्योंकि लाइट जैसे ही जाती थी ना पढ़ाई बंद और रेडियो चालू हो जाता था, और हर रात को 8 से 8:15 से हवा महल में नाटक सुनना, फिर बिना का गीतमाला मैं अमीन सयानी जी के साथ, और 8:45 से न्यूज़ पूरी फैमिली सुनती थी। संडे को शाम में 4 से 5 एक साइंस पर शो आता था जिसमें साइंस रिलेटेड टॉपिक डिस्कस होते थे, वो भी मुझे बहुत पसंद था। उस शो का नाम मैं भूल गया हूँ, कहते हैं कोई बात नहीं, पर आपको शो याद है और उसमें हुई जो है बातें वो जानकारी याद है, यही तो ख़ास है। गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक। सौरभ अनेजा है ये गाज़ियाबाद से जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो टॉपिक दिया है उस पर भी बताइए ना कुछ, अब कुछ याद कीजिए, आप तो हमारे रेगुलर लिसनर हैं, कोई ख़ास यादगार जो रेडियो से जुड़ी हो वो शेयर कीजिए हमारे साथ, और ये भी बताइए कि वो बात या वो पल ख़ास क्यों थे, वो यादगार ख़ास क्यों है। आकाशवाणी के 90 साल गुजरे और ये मैसेज हमारे पास है अनिल शर्मा जी का, कह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल गुजरे और अक्सर मैं जो है आकाशवाणी में रेडियो सुनता रहा और ज्ञान का भंडार यहाँ पर है, जुबान में मीठापन है, और कहते हैं कि यही जो कशिश है वो श्रोताओं को अपनी ओर खींच लाती है। कहते हैं मैं वरिष्ठ उम्र का हूँ और बहुत पुराना रेडियो श्रोता हूँ, सन 1960 से जब कुछ समय के लिए प्रसारण था तब के अमीन सयानी स्टेशन सीलोन पर हर उम्र की जुबान पर जो है उनका नाम रहता था। कहते हैं कि रेडियो को चाहे 90 साल हो गए, आकाशवाणी को चाहे 90 साल हो गए हों, पर अभी भी प्रोग्राम प्रसारण में वो बिल्कुल युवा है, और उन्होंने बधाई भेजी है जी। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, और इसी तरह रेडियो से जुड़े रहिए, आकाशवाणी से जुड़े रहिए, और हमें इसी तरह से मैसेज करते रहिए। डियर भगवती जी गुड इवनिंग, कहते हैं कि डियर मुझे तो बचपन से ही म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स का काफ़ी शौक था। जानते हैं आप, जब ये डियर वर्ड मैं पढ़ती हूँ ना बार बार, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये मैसेज है मिसेस धर्म भाटिया का रोहतक से। तो कह रही हैं कि मुझे तो जो है म्यूज़िक और सॉन्ग्स का काफ़ी शौक था, पंजाबी एंड ओल्ड सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते थे। तो 1962 में 8th क्लास में थी तो पापा से कहकर रेडियो मंगवाया था, जिसको लेकर घर में सभी इंजॉय करने लगे। कहती हैं कि डियर मैंने तो अपनी मैरिज पे भी पापा से स्पेशल डिमांड की थी, तो देख लो तब

अब तक रेडियो से ही जुड़ी हूँ. कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ 90 इयर्स, कह रही हैं मिसेस धर्म भाटिया जी. आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आकाशवाणी से जुड़े रहने के लिए. और इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, एंजॉय करते रहिए हमारे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स. तो आकाशवाणी के साथ बिताया गया कौन सा पल आपकी यादों की डायरी में आज भी सुरक्षित है, बताइए. उसमें ऐसा क्या खास था? क्या कभी आकाशवाणी ने आपकी किसी सुबह, शाम या सफ़र को यादगार बना दिया? अपना अनुभव साझा कीजिए हमारे साथ. 9868107070 है ना नंबर. 9868107070 इज द नंबर फॉर मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप. और आप तो जानते हैं भगवती इंतज़ार कर रही है आपके मैसेजेस का बड़ी बेसब्री के साथ.

हीरामणि वर्मा दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं। कहते हैं आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी परिवार को शुभकामनाएं व हार्दिक बधाई। युवाणी कार्यक्रम से प्रेरित होकर मैंने अपनी पढ़ाई की और वहीं से सामान्य ज्ञान नोटबुक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। फलस्वरूप आज हम दोनों भाई गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिसका श्रेय आकाशवाणी को जाता है। आकाशवाणी से सभी वर्गों के लिए सभी तरह की प्रसारित कार्यक्रम सभी तरह के कहना चाह रहे हैं प्रसारित कार्यक्रम उपयोगी जानकारी व स्वस्थ मनोरंजक विषय होते हैं। आकाशवाणी रेडियो का वर्चस्व आज भी सुदूर अंचल में जबरदस्त है। रेडियो की दीवानगी इतनी है कि मैं अपने रेडियो के लिए दर्जी से कपड़े सिलवाता हूँ। क्या बात है। नेक्स्ट मैसेज जो हमारे पास है कहाँ से है, किशन वंजनी, नीलम स्वाति और किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से हैं। कहते हैं कि वेलकम टू द शो। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो में। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमें तो सबसे अच्छी आकाशवाणी से जो सिग्नेचर ट्यून सुबह सुबह 6:30 बजे बजती थी ना, वो बहुत ही मन को भाती थी। मंगल ध्वनि जी, आकाशवाणी का और हमारा चोली दामन का साथ है। हम 1970 से आकाशवाणी के कार्यक्रमों से जुड़े हैं। बिना का गीतमाला और इंस्पेक्टर ईगल जैसे कार्यक्रम बेहद सुना करते थे और इन्हें प्रेजेंटेशन पसंद आ रही है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।

0: देहरादून से आलोक पवार और मिनी कहते हैं कि आकाशवाणी हमारे बचपन से लेकर साथ जुड़ा हुआ है और अब उम्र के 50वें पड़ाव पर भी जो है हमारा साथी रहा है। सुबह 5 से FM रेनबो, FM गोल्ड, विविध भारती और अन्य प्रादेशिक प्रसारण काम करने के साथ साथ जो है पूरे दिन भर और देर शाम तक सुनते हैं। समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता। रेडियो के सहारे जो है सभी आरजेज की प्रेरणादायक बातें सुनकर आत्मविश्वास बढ़ता है। सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे प्यार के लिए, सम्मान के लिए।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: और FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स मेरे यानी भगवती के साथ। करूला मुरादाबाद से अयूब खान है, सिंघौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी और इमरान शेख, एक ही मैसेज में जो है सारे नाम है। कहते हैं आवाज़ों का वो सफ़र जो दिलों से जुड़ गया, 90 वर्षों का इतिहास हर श्रोता के संग जुड़ गया। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आकाशवाणी केवल एक रेडियो प्रसारण सेवा नहीं बल्कि करोड़ों श्रोताओं की भावनाओं, यादों और जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसकी मधुर आवाज़ों ने पीढ़ियों को जोड़ा है, दूरियों को मिटाया है और ज्ञान, संस्कृति, संगीत तथा साहित्य की अमूल्य धरोहर को घर घर तक पहुंचाया है। बचपन की सुनहरी यादों से लेकर आज के आधुनिक दौर तक आकाशवाणी ने हर सुख दुख में श्रोताओं का साथ निभाया है। 90 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा समर्पण, विश्वास और जनसेवा का अद्भुत उदाहरण है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आकाशवाणी यूं ही अपनी मधुर वाणी से देश दुनिया को जोड़ती रहे और सफलता के नए आयाम स्थापित करती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शुभकामनाओं के लिए। गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से कहते हैं, मैं 1986 से रेडियो सुन रहा हूं, जब लकड़ी का बड़ा वाला रेडियो था और मेरे दोनों हाथों में उसका वॉल्यूम बटन आता था। आज भी इतनी ही शौक से मोबाइल पर सुनता हूं। अलवर राजस्थान से नरेश शर्मा हैं, कहते हैं कि ये उस दौर 1990 से 95 की बात है जब सुबह के समय पर रेडियो पर सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक प्रायोजित कार्यक्रम आता था और नए फिल्मी गाने बजते थे और हम 4 भाई बहन जो है स्कूल के लिए अपनी तैयारी करते थे और गाने सुनते रहते थे। हमारे पिताजी ऑफिस की तैयारी में रहते थे। आज हम 4 भाई बहन जो है अच्छे से सेटल्ड हैं, लेकिन रेडियो का वो टाइम बहुत याद आता है। सच में वो टाइम अलग था। हर टाइम हर दौर अलग होता है और उसकी अपनी खासियत होती है, उससे जुड़ी अपनी यादें होती हैं और वो यादें उस दौर को खास बनाती हैं। तो आप भी शेयर कीजिए वो यादें जो रेडियो से जुड़ी हैं और जिन्होंने खास बनाया उस समय को।

मनीषा नारे मगर महाराष्ट्र लातूर से कहती हैं कि मैं आज 44 साल की हूँ, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं कब से रेडियो सुन रही हूँ। शायद 40 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे। हमारे घर में बड़ा सा लकड़ी की बॉडी वाला रेडियो हुआ करता था और उसके लिए बैठक खोली में अलग सी जगह थी। हम छोटे थे तब हमें उसे हाथ लगाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। और आपको एक बात बताऊँ, मुझे रेडियो में जॉब करने की बड़ी इच्छा थी। मैंने अपना बोलने का स्टाइल जो तरीका है वो रेडियो पर बात करते है ना, जैसे उस तरह से ही किया था। बाद में मैंने बीएड किया, वहाँ पर इसी तरह से बात करती थी तो सब मुझे रेडियो कहकर चिढ़ाते थे। और आज मैं CBSE स्कूल टीचर हूँ, मराठी लैंग्वेज पढ़ाती हूँ। FM उस्मानाबाद ये हम सुनते थे और इस पर ही विविध भारती आता था। और पिछले 4 साल से मैं FM रेनबो सुन रही हूँ। मेरे साथ मेरे घर के अंगद, दीपक, शुभांगी, आरती, काव्य, गंगा और अस्वारी, ये सभी रेडियो सुनते हैं। शमशुल कमर राय गंजुनवारा से हैं, कहते हैं मेरी ज़िंदगी एक सूनी नदी की तरह थी, न इसमें कोई जोश था न कोई उमंग, बस खामोशी से बह रही थी। लेकिन जब से रेडियो क्या ज़िंदगी में आया, मेरी दुनिया ही बदल गई। तब से आज तक इससे जुड़ा हूँ और मस्त हूँ रेडियो रेनबो के साथ। मैं लक्ष्मी उत्तम नगर से, मुझे म्यूज़िक का बचपन से ही शौक़ है, खासकर पुराने गाने सुनने का। और FM पर नए और पुराने सभी प्रकार के गाने अच्छे सुने जाते हैं। और मैं हमेशा तो रेडियो नहीं सुनती हूँ, लेकिन कभी कभी जब दिल करता है तो रेडियो पर गाने जो है FM पर ज़रूर सुन लेती हूँ। कहते हैं मैं भुवनेश हूँ अशोक विहार दिल्ली से, कहते हैं कि आज के टॉपिक पर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि रेडियो जो है हमेशा से मेरे लिए स्पेशल रहा है, राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड टिल नाउ। और मैंने जो है रेडियो पर कमेंट्री बहुत इंजॉय की है। और अब जब मैं इस शो में पार्टिसिपेट कर पाता हूँ, मैसेज भेजता हूँ, तो फिर मुझे जो है बहुत अच्छा फील होता है। विजय कुमार नामदेव दिल्ली से कहते हैं कि हम रेडियो जब से सुन रहे हैं, जब हम बहुत छोटे थे, हमारे घर पर तब जो है टीवी नहीं था, 1990 की बात है। मेरे पापा के पास दो रेडियो थे, एक लकड़ी वाला बड़ा सा जो कि लाइट से चलता था, इलेक्ट्रिसिटी से

रहना चाह रहे हैं, और एक सेल वाला जिसको हम लेकर घूमते थे, तभी से आदत लग गई और हमको रेनबो बहुत अच्छा लगा। 4 फरवरी 2017 को पहली बार रेनबो से गीतिका उनियाल और सत्या ने गुड मॉर्निंग दिल्ली प्रोग्राम से कॉल की हमें, और फिर 24 फरवरी 2017 को फिर से सुजाता मट्टू और मनीष आज़ाद ने कॉल किया। मतलब कि इन्हें पूरी डेट्स के साथ जो है याद है, और कहते तब पहली बार मेरा फेवरेट सॉन्ग देश मेरा रंगीला सुजाता मट्टू मैम ने जो है सुनाया था। माय फेवरेट रेडियो जॉकी इज़ चंद्रानी मुखर्जी, सुजाता मट्टू, गीतिका उनियाल, भगवती, सबीहा नकवी, बबीता त्रिपाठी, माला नेगी, सुनीता शाहबादी, और कहते हैं कि थैंक यू, आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू सो मच रेनबो को पसंद करने के लिए, इसके शोज को पसंद करने के लिए, हमें पसंद करने के लिए।

प्रोफेसर ए के टंडन माया इनक्लेव से कहते हैं कि 1965 में जब मैं बीटेक स्टूडेंट था उस टाइम मैंने अपने कोर्स के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट के लिए एक ट्रांजिस्टर बनाया, 90 मार्क्स मिले 100 में से जो है, और टीचर्स

बड़े खुश थे। और जब उस पर मैंने जो है विविध भारती सुना तो मेरी खुशी का पारावार ना था, तब से रेडियो फैन हो गया जी। आपकी इस बात से तो हम आपके फैन हो गए ना। जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से कहती हैं कि मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आकाशवाणी, मे यू स्प्रेड द जॉय एज लॉन्ग एज यू लिव, मे यू स्प्रेड द ऑप्टिमिज्म एज लॉन्ग एज यू लिव, मे यू स्प्रेड द नॉलेज एज लॉन्ग एज यू लिव, मे यू कीप अस एंटरटेन्ड एज लॉन्ग एज यू लिव। आकाशवाणी आई लव यू, वी लव यू टू। दानिश कदौली से कहते हैं कि जो है मैं 2003 से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ और बॉलीवुड ट्रेल सुनना जो है मुझे बहुत पसंद आता है, और कहते हैं कि यही मेरा जो है फेवरेट शो भी है, और आकाशवाणी को उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं। थैंक यू जी। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से कह रहे हैं हमारी ओर से आपको और एफएम रेनबो परिवार को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की कोटि कोटि हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू जी। कहते अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए पोस्टकार्ड भेजते थे। रेडियो इज इक्वल टू शिक्षा, सूचना और स्वस्थ मनोरंजन। रेडियो सुनना यानी ज्ञान में अपडेट रहना। आपकी संध्या और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो जी। आपकी भी संध्या बहुत सुखद हो, बहुत शुभ हो, और आपका जीवन भी सुखद और शुभ हो। थैंक यू सो मच। लिसनिंग टू रेडियो इज़ लाइक अ लेगेसी ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन्स। कहते हैं पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सुनते थे, उसके बाद हमारे पेरेंट्स सुनते थे, और फिर जो है उसके बाद हमारी जनरेशन ने भी रेडियो सुनना शुरू किया, उसके बाद हमारे बच्चे सुनते हैं, और कहते हैं कि हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो भी सुनेंगे, उन तक भी जो है नॉलेज इसी तरह से पहुँचती रहेगी, इन्फॉर्मेशन ऐसे ही पहुँचती रहेगी। शैलजा है नीमराना से, गाने इन्हें पसंद आ रहे हैं, कह रहे हैं थैंक यू जी। आकाशवाणी से जुड़ी ऐसी कौन सी याद है जिसे याद करते ही आज भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है? क्या कभी आकाशवाणी पर आपका नाम, संदेश या फरमाइश प्रसारित हुई, उस पल का रोमांच बांटिए ना हमारे साथ। थोड़ा सा ही समय रह गया वैसे भी। सुनते रहिए मैसेज मसाला मिक्स भगवती के साथ।

आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बचपन से रेडियो को गोदी में लेकर खेला हूं। 1995 में पहली बार आकाशवाणी इंदौर से हमारी फरमाइश पूरी हुई। मेरा तो बैंक में खाता भी आकाशवाणी की वजह से ही खुला। कहते हैं 1998 में आकाशवाणी भोपाल पर आपका पत्र कार्यक्रम में समीक्षात्मक पत्र लिखने पर मेरा पत्र सम्मानित हुआ, और जब 200 रुपये का चेक डाक द्वारा मेरे घर के पते पर आया तब उसे भुनाने के लिए बैंक में खाता खुलवाना पड़ा। तब से आकाशवाणी से जो है के साथ जो है जुड़ाव जारी है। भेरूलाल वाकतरिया ढाकर उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं। ये कहते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल बेमिसाल इस ऐतिहासिक मौके पर आकाशवाणी के सभी आरजेस और टेक्नीशियनों को बहुत बहुत बधाई। आपकी जुगलबंदी ऐसी ही बनी रहे और श्रोताओं का मनोरंजन करती रहे। ये हैं अरुण कुमार भटिंडा से। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़ खेड़ा मेरठ से कह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल जो है जिसने पूरे भारत को जोड़ा आज हो रहे हैं पूरे। जी हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं ना। विजय कुमार नामदेव दिल्ली से कहते हैं कि गुड इवनिंग जी, हम रेडियो जब से सुन रहे हैं जब हम बहुत छोटे थे, और ये मैसेज जो है इन्होंने पहले भी भेजा है और दोबारा हमारे उस पर आ गया है स्क्रीन पर मैसेज। समय बहुत कम बचा है हमारे पास।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना है तथा गरीब कल्याण

0: और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: this song, didn't it feel something like rocking chairs, porch lights, a gorgeous evening? Well, that's what it is. They call him the gentle giant, not for any other reason, but for his calm baritone and laid-back style. That was, of course, Dawn Williams. And coming up, a short teeny-weeny break. Stay close, stay tuned. Remember, you tune in live to the Country Carnival only on Akashvani FM Rainbow 102.6, musically yours with me, Pooja Anand.
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल.
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है.
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो.
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एचआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है.
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर. इसका सर देखो जो एचआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा. जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा.
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है.
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है.
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं.
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं.
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या.
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए.
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए.
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए.
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है.
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए.
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं.

0: No, it's not love, but it's not bad. Well, you tuned in live, like I said, to Akashvani, and we are bringing to you something special. At 7:45 p.m. today, we'll bring to you our guest in celebration of 90 years of Akashvani. And who are we today? We have our host, Manoj Mayankar. Well, he is interviewing Rini Simon Khanna. Well, she'll be right here and you'll have a conversation to hear. So don't go anywhere. We've got loads more. And on the other side, more music coming on. But right now, let's take that teeny weeny break I'm talking about. We'll be back in just a couple of seconds.
1: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashvani. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है. दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है.
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल. डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी. अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा.
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए.
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान. रजिस्टर करें आज ही
5: www.delhitalenthunt.com. कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से.
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर.
7: कोयल सी तेरी बोली,
8: आय हाय,
7: तेरी तेरी छी नजर में है जादू.
8: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
7: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था.
8: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो. अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है.
9: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी.

शानदार फिल्म का ये ट्रैक आपने सुना अमित त्रिवेदी की आवाज में, लिरिक्स बाय अमिताभ भट्टाचार्य एंड म्यूजिक बाय अमित त्रिवेदी। और एक और बिल्कुल मस्त वाला ट्रैक आपके लिए प्ले कर रही हूं यहां से, आकाशवाणी एफएम से, आकाशवाणी रेनबो से, इट्स अ रेड लाइट एफएम।

अभी आपने सुना गाना 2013 में आई फिल्म ये जवानी है दीवानी का, सिंगर्स बेनी दयाल एंड शेफाली अलवारेज़।

2007 में आई फिल्म जब वी मेट का ये ट्रैक आपने सुना सोनू निगम और जावेद अली की आवाजें हैं. म्यूजिक कंपोज्ड बाय प्रीतम एंड लिरिक्स बाय इरशाद खामिल.

शाहरुख खान स्टारर फिल्म रावण का ये गाना। एकॉन और हमसिका अय्यर की आवाजें, म्यूजिक बाय विशाल शेखर एंड एकॉन, लिरिक्स बाय विशाल ददलानी एंड निरंजन अय्यंगर। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती भगवती के साथ। यह है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आवाजें आप पहचान ही गई होंगी, उदित नारायण और अलका याग्निक। मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, म्यूजिक बाय विजू शाह एंड लिरिक्स बाय समीर। गोविंदा और रविनाथ टंडन पर पिक्चराइज इस सॉन्ग में अपनी अलग तरह की एक मस्ती है। You are tuned in to Akashwani Rainbow, so stay tuned.

लोग कहते हैं मैं तब भी गाता था जब बोल पाता नहीं था, मैं तब भी थिरकता था जब चलना मुझे आता नहीं था। इसी स्पिरिट की वजह से, इसी स्पिरिट के साथ डिस्को डांसर मूवी के इस ट्रैक में मिथुन चक्रवर्ती के थे कुछ सिग्नेचर इलेक्ट्रिफाइंग डिस्को मूव्स जो सुपर डुपर हिट रहे। आवाज विजय बेनेडिक्ट की, म्यूजिक कंपोज बाय बॉबी लाहिरी एंड लिरिक्स बाय अंजान।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: हिमालय की गोद से लेकर
6: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
5: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
6: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
5: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
6: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
5: तो सुनना ना भूलें
6: रेनबो डेस्टिनेशंस
5: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: ये है आकाशवाणी FM रेनबो और मैं हूँ भगवती। प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती।
9: हाय, सो वी मीट अगेन। अजीब इत्तेफाक है, आई मीन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये हमारी दूसरी मुलाकात है, बट आई हैवंट सीन यू अराउंड योर एनीवे।
8: यू आर मिस्टेकन,
9: इट वाज नाइस टू मीट यू।
8: दूसरी नहीं, बहुत बार मिल चुके हैं हम।
10: कौन है?
9: इस कनीस को, मेरा मतलब है इस नाचीस को, राज चोपड़ा कहते हैं।

0: साल 2000 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है का ये ट्रैक आपने सुना लकी अली की आवाज में। संगीतकार हैं राजेश रोशन और गीतकार विजय अकेला।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
5: ठीक है।
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। कैसे डिपॉजिट करेंगे? डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: गुड इवनिंग।

मिस्टर इंडिया फिल्म का ये ट्रैक, आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति की, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और लिरिक्स जावेद अख्तर साहब के, एंड द सॉन्ग इज कोरियोग्राफ बाय सरोज खान। और इसमें जो कुछ अलग अलग तरह के वर्ड्स आ रहे हैं ना, कहते हैं कि जावेद अख्तर साहब को बैठे बैठे जो जो शब्द जो है सूझते रहे वो सारे उन्होंने इसमें डाल दिए। और इसकी रिकॉर्डिंग के समय जो चैलेंज आया था वो ये था कि इसके लिरिक्स जो इस तरह के फ़नी से लिरिक्स है ना, उनकी वजह से म्यूजिशियंस को और जो गाना गा रही थी उनको बीच में हंसी आ जाती थी।

अब से कुछ समय बाद से यानी 9 बजे से आप सुनेंगे प्रोग्राम आपकी याद आती रही प्रज्ञा तिवारी के साथ। 10:05 से सुनिएगा वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम रेनबो शोकेस। पूजा आनंद रहेंगी इसमें आपके साथ और 11:05

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी के FM रेनबो पर तारों की बारात के बीच समय हो गया है 9:53, यानी हमारे अगले प्रोग्राम के आने का टाइम और मेरा यानी प्रज्ञा तिवारी का अगले एक घंटे के लिए जाने का टाइम। अभी आपसे मिलेंगे पूजा आनंद, प्रोग्राम होगा रेनबो शोकेस। मैं मिलती हूँ एक घंटे बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य से बाहर क्यों न रहें। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कांग्रेस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री खड़गे ने कहा कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता की कमी हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है, ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुनने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का

शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2,00,000 रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। और खेलों में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक पारी और 300 रन से हरा करके अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: You know, this song by Prince, When Doves Cry, well, it didn't have any commercial single release in the US, but the radio airplay was so massive and instantaneous in 1984 that this song shot to the top of the charts. And that's what magic happens. That's the power of radio. We'll be back with more on the other side of the break. Don't go anywhere. You tuned in live to Akashvani FM Rainbow 102.6, musically yours. My name's Pooja Anand. This is the Rainbow Showcase, and we're showcasing the top songs that made it to the top because of radio.
1: मन की परते खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: He Only Lived Twice, Nancy Sinatra out there. This 1967 number, lush, traumatic, and just about gorgeous theme song for the James Bond film of the same name. Well, that's what the magic was of Nancy Sinatra, and she celebrates her birthday today. With that, I think so. We'll go in for a short break. So stay close, stay tuned. Remember, you tune into Akashvani FM Rainbow 102.6. Musically yours, and we're having some great music being played for you only on Rainbow Showcase. So don't go anywhere, we'll be back very soon.
1: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashvani, phir aaya entertainment ka revolution, jab kone kone pahuncha Doordarshan. Kahani nahi badli, style gaya hai badal. जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की
5: धड़ा का सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती.
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है.
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती.
9: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना. 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती.

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने

अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

11:12 यानी वक्त हुआ है दिलकश भावों और खूबसूरत लफ्जों का, वक्त हुआ है प्रोग्राम रंगे महफिल का। मैं आपके साथ हूँ प्रज्ञा तिवारी।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। गजलों का दौर जारी है।

0: और अब बजने को है 12, यानी वो समय जब मैं आपसे लूंगी इजाजत, पर गानों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे फिर होगी मुलाकात, फिर होगी कभी बात। तब तक के लिए आप गुनगुनाते रहिए जिंदगी की गालिबाना धुनों पर। प्रज्ञा तिवारी की तरफ से बाय बाय।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

प्रसंग सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
1: To develop the industrial ecosystem.
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
0: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अधिकारियों के अनुसार इस आपदा से लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए हैं। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से

हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपकी वाणी आकाशवाणी। 12:05:37 हुए हैं, शुरू करते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो और मैं हूं एसएम शरीफ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। ममता बनर्जी ने के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रिक्तव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि रिक्तव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
1: To develop the industrial ecosystem.
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीबी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों के अनुसार इस आपदा से लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए हैं। क्रिकेट में ICC महिला T20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। ब्रिटेन के कार्डिफ में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 153 रन ही बना पाई। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ होगा। भारत इस महीने की 14 तारीख को एडजस्टन में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ महिला T20 विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:05 और 42 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सुहानी रात।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
1: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: बिजनेसेस आरएनडी एंड इनोवेशन ओरिएंटेड बिजनेसेस।
0: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुंच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। क्रिकेट में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड के साथ होगा और 14 जून को एडजस्टन में भारत अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ महिला टी20 विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कर्नाटक में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपकी वाणी आकाशवाणी। 2:05 और 43 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

Goody, goody.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।
2: ला ला ला ला ला।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला। बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला। यस

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।

0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। वहीं केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुंच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। क्रिकेट में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ होगा। भारत इस महीने की 14 तारीख को एजबेस्टन में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ महिला T20 विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कर्नाटक में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:05:24। तो लीजिए श्रोताओं, आइए सुनते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। कार्यक्रम में आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ, आपके साथ ही अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो आनंद लीजिए इन खूबसूरत से गीतों का।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी

की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आनंद ले रहे थे गीतों का कार्यक्रम था मिडनाइट मेलोडी के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 4 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि

गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। वहीं केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुंच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मेक्सिको की खाड़ी में कल देर रात 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप 28 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप का केंद्र क्यूबा के पश्चिमी तट के पास था। भूकंप के झटके क्यूबा, मेक्सिको और अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के कई इलाकों में महसूस किए गए। हवाना और आसपास के क्षेत्रों में इमारतें हिलने लगीं और लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कर्नाटक में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए हैं एफएम रेनबो के जरिए से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, समय हो रहा है सुबह के 4:05:26। और लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सारेगामा। आप इसके अंतर्गत सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक, और मैं हूं आपके साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है।

है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले भी शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी के सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र जैन ने महाराष्ट्र में 18 जून को होने वाले राज्य

सभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। यह उपचुनाव सुनेत्रा पवार के राज्यसभा से इस्तीफे के बाद कराया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुए भीषण आग दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए हैं। इस्पात मंत्रालय के अनुसार अत्यधिक गर्म पिछले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान यह हादसा हुआ। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई है और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों के अनुसार इस आपदा से लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कर्नाटक में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 5:05:24। लीजिए आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अलमास रसा का नमस्कार और साथ ही हार्दिक अभिनंदन।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।